0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगा हर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 12वीं तिथि, तद अनुसार 3 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 हो चुके हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। बस कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक

0: सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों सेमीकंडक्टर महत्वपूर्ण खनिज सूचना और संचार प्रौद्योगिकी स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांधरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आरंभ में सुनिए समूह स्वर में ये मात्र वंदना। रचना है डॉक्टर ललित मोहन की।

समूह स्वर में मातृवंदना अभी आपने सुनी। आइए अर्चना कार्यक्रम में आप सुनते हैं समूह स्वर में अनवर फरूखाबादी का ये भक्ति कलाम।

अभी आपने समीर हुसैन कव्वाल और साथियों की आवाज़ों में ये नात सुनी और आइए कार्यक्रम अर्चना में आप सुनते हैं उषा उत्थुप के स्वर में हलीम शब्बीर की ये रचना।

उषा उत्थुप के स्वर में अभी आपने हलीम शब्बीर की ये भक्ति रचना सुनी, और आइए अर्चना कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में गोस्वामी तुलसीदास जी की ये रचना।

लता मंगेशकर के स्वर में अभी आपने गोस्वामी तुलसीदास जी की ये भक्ति रचना सुनी। इसके साथ ही कार्यक्रम अर्चना अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 6:25 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण में सभी श्रोताओं का स्वागत है। अब से थोड़े ही समय बाद आप सुनेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना श्री रामचरितमानस का संगीत में पाठ। भूले बिसरे गीत, जी हाँ, पुराने जमाने के ये फिल्मी तराने आप सुनेंगे सुबह 6:40 पर। सुबह 6:55 पर संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे और सुबह 7 बजे आप सुनेंगे हमारा दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह। प्रादेशिक समाचार सुबह 7:10 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे और सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। गांधी चर्चा, महात्मा गांधी की आत्मकथा का धारावाहिक वाचन आप सुनेंगे सुबह 7:45 पर। सुबह 8:30 पर हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे रूपक एक दुनिया और वन्य प्राणियों की। आलेख और प्रस्तुति है रामनाथ अवस्थी की। गुलदस्ता, दिलकश गजलों और कव्वालियों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:05 पर। सुबह 10:30 पर सुनेगा फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम आपकी पसंद। सुबह 11 बजे हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग और शाम 5:30 पर हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम लिजा के लव्स और लम्हे। शाम 6:30 पर हमारे स्टूडियो से सुनिएगा सदाबहार फिल्मी नगमे। शाम 6:45 पर आप सुनेंगे बुंदेली गीतों का कार्यक्रम लोकरंग। शाम 7:30 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत और रात्रि 8:15 पर सुनेगा कार्यक्रम संगीत सरिता। रात्रि 8:30 पर हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे कार्यक्रम सागर संवाद। समाचार संध्या रात्रि 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएंगे और रात्रि 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा का समापन होगा। तो ये थी जानकारी आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है।

0: पसंदीदा प्रोग्राम लिजा के लफ्ज और लम्हे सुनिए हर शुक्रवार शाम 5:30 पर।
1: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:30 होने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना श्री रामचरितमानस का संगीत में पाठ। गायक स्वर हैं मिताली भूपेंद्र सिंह का।

पार्वती से विवाह करने की भगवान शिव की सहमति पाकर देवगण पर्वतराज हिमाचल के पास पहुंचे। महादेव के प्रताप का प्रभाव विचार कर अति प्रफुल्लित मन से उन्होंने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला भेजा और शुभ दिन, नक्षत्र तथा शुभ घड़ी आदि विचार कर विवाह लग्न निश्चित करने की विनती की। लग्न पत्रिका तैयार हुई तो उसे सप्तऋषियों के हाथ ब्रह्मा को भिजवाई, जिसे पढ़कर ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। इधर शिव की बारात में जाने के लिए देवतागण अपने भांति भांति के विमान सजाने लगे। शिव जी के सेवकों ने स्वामी का श्रृंगार करना आरंभ किया। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर चढ़ाया गया। सांपों के ही कुंडल और कंकण, शरीर पर विभूति का लेप और वस्त्र के नाम पर व्याघ्र चर्म, सुंदर भाल पर चंद्रमा सुशोभित हुए, सिर पर गंगावतरण, तीन नेत्र, सर्पों का यज्ञोपवीत, गले में विष तथा छाती पर नरमुंडों की माला, ऐसा भयावह और अशुभ दिखने वाला वेश था मंगलकारी महादेव का।

गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना श्री रामचरितमानस का संगीत में पाठ अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत, संगीत मदन मोहन का, फिल्म का नाम जहां आरा।

0: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए तो?
0: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी सागर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फूले बिसरे की। तो आइए इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में अनजान का लिखा गीत। फिल्म का नाम है जाली नोट और इस फिल्म का संगीत दिया है OP नैयर ने।
4: गुस्ताख नजर चेहरे से हटा, हमको न सता, अरे जा चल जा।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम फूले बिस्तरे की ईद, आइए इस कार्यक्रम में अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में नौ शेरवाने आदिल फिल्म से ये गीत। इस गीत को लिखा है परवेज शमशी ने और संगीत है सी रामचंद्र का।

नौशेरवाने आदिल इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना और आइए इस कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं झनक झनक पायल बाजे फिल्म से ये गीत जो गाया है लता मंगेशकर ने, लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है वसंत देसाई का।

जनक जनक पायल बाजे। इस फिल्म में अभी आपने लता मंगेशकर की आवाज को सुना और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब आप संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। बस कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तस्य जापानस्य समकक्षीया साने ताकाइची इत्येषा पाकिस्तानात् सीमापारे आतंकवादं समेत्य सर्वेषु रूपेषु अभिव्यक्तिषु आतंकवादस्य हिंसक उग्रवादस्य च निन्दां कृतवन्तौ। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य संयुक्त वक्तव्ये द्वौ नेतारौ गतवर्षे अप्रैल मासस्य द्वाविंशति दिनांके जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातम् आतंक्याक्रमणं कट्वा लोचितवन्तौ। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ हिन्द प्रशांत क्षेत्रस्य उभयोः देशयोः मध्ये सहयोगं विस्तारयितुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: भारत जापान विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित्वस्य आधारस्तंभेषु अन्यतमार्थिक सुरक्षा प्रधानतायाः विषये भारत जापान देशौ परस्परं प्रतिबद्धतां पुनः दृढ़ीकृतवन्तौ। आर्थिक सुरक्षा सहकार विषये भारत जापान संयुक्त घोषणापत्रे अवदतां यत् आर्थिक सुरक्षा सहभागित्वं परस्पर विश्वासस्य सहभागी मूल्यानां संबद्ध हितानां च आधारेण वर्तते। उभयोः पक्षयोः समृद्धिः सुरक्षा आर्थिक भविष्यं च सुदृढतया परस्परं

0: सम्बद्धमस्ति इति मान्यता अस्ति। अद्यतनीकृतस्य मुक्तस्य च इण्डो पैसिफिक इत्यस्य तथा च म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन्स महासागर इति उपक्रमस्य समन्वयः उभयोः पक्षयोः कृते आर्थिक सुरक्षा सहकारं वर्धयितुम् आवश्यकं प्रोत्साहनं प्रददाति इति घोषिता अस्ति। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला अद्य कोलकातायां पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नवनिर्वाचित सदस्येभ्यः द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं नवनिर्वाचितेभ्यः सदस्येभ्यः समिति व्यवस्था, वित्तीय निरीक्षणं, संसदीय विशेषाधिकाराः, विधायकेषु उदयोन्मुख आंकिकीयोपक्रमाः इत्यादीनां संसदीय विधायी कार्याणां विविधपक्षेभ्यः परिचय प्रदानं वर्तते। पंचायती राज मंत्रालयः षोडश वित्तायोगस्य अनुशंसानां विषये विचारार्थम् अद्य नवदिल्ल्यां राज्यस्य पंचायती राज मंत्रिणां एकां राष्ट्रिय कार्यशालां आयोजयति। कार्यशालायाः अध्यक्षतां केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंहः, केन्द्रीय राज्य मंत्रिणः प्रोफेसर एसपी सिंह बघेलस्य उपस्थितौ करिष्यति। कार्यशालावधौ चर्चा वित्त मंत्रालयस्य व्यय विभाग द्वारा प्रख्यापितस्य षोडश वित्तायोग ग्रामीण स्थानीय निकायानुदानस्य कार्यान्वयनाय परिचालन दिग्निर्देशेषु केन्द्रता भविष्यति। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा अद्य जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम बालटाल मार्गयोः आरभ्यते। सप्तपञ्चाशत् दिवसीयायां तीर्थयात्रायां सम्पूर्णे भारतदेशात् लक्षोपलक्षाः भक्ताः अमरनाथ गुहातीर्थं प्रति पवित्रयात्रां करिष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। तीर्थयात्रिणः भगवतः शिवस्य आशीर्वादं प्राप्तुं, प्राकृतिकरूपेण निर्मितं हिमशिवलिङ्गं द्रष्टुं च प्रायः 88.3 सहस्र मीटर परिमितेषु ऊर्ध्वतायां स्थित पवित्र अमरनाथ गुहायां गच्छन्ति। आईसीसी महिला 20-प्रति-20 विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां इंग्लैंड दलेन साउथ अफ्रीका दलं 40 धावनांक ही पराजितम् इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए हमारा दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह।

सुबह सुबह सुन रहे सभी श्रोता स्वीकार करें हमारा नमस्कार। श्रोताओं, महात्मा गांधी जी ने कहा है कि स्वच्छता को अपने आचरण में इस तरह अपना लो कि वो आपकी आदत बन जाए। गांधी जी के इस विचार के अनुसार स्वच्छता मनुष्य के जीवन और समाज दोनों के लिए बहुत जरूरी है। जब तक व्यक्ति के आचरण में स्वच्छता नहीं आएगी, तब तक स्वच्छता आदत नहीं बनेगी और इंसान की आदत एक दिन उसका स्वभाव बन जाती है। और यदि स्वच्छता किसी इंसान का स्वभाव बन जाए तो वो स्वच्छता, उस स्वच्छता की अनुभूति भीतर और बाहर दोनों तरफ से बहती हुई हमारे मन को निर्मल कर देती है और हमारे समाज को स्वस्थ कर देती है। जब हमारी आत्मा में स्वच्छता का आग्रह होता है तो अंतरात्मा में प्रकाश उत्पन्न होता है। वही प्रकाश एक दिन समाज को आलोकित करता है। मन की पवित्रता के साथ जब हम अपने परिवेश को स्वच्छ रखते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड में संचार होता है उस स्वच्छता और पवित्रता का। श्रोताओं, जैसे हम हर दिन अपने घर के आंगन को साफ सुथरा रखने के लिए उसमें झाड़ू पोछा करते हैं, इसी नियम का पालन सप्ताह में एक दिन हम अगर अपने मोहल्ले, अपने शहर में करें तो निश्चित तौर पर हमारा मोहल्ला, हमारा शहर इस प्रयास से

0: बहुत सुंदर बन जाएगा। और हमारे इस काम से जिस सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे शहर में होगा, उससे हमारा देश भी और अधिक ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा, जिससे पूरी दुनिया को स्वच्छ बनने में मदद मिलेगी। और श्रोताओ, आज हमारे समाज में ही नहीं, पूरी दुनिया में प्रदूषण का एक भयावह चेहरा मानव निर्मित ठोस कार्बनिक यौगिक रूप, जिसे प्लास्टिक कहते हैं, वो सामने आ गया है। पिछले कई वर्षों से सिंगल यूज प्लास्टिक हमारी जिंदगी में कुछ इस तरह शामिल हो गया है कि जहां भी जाओ तो लगता है ये उसी की महफिल है। पानी पीने के गिलास से लेकर चाय के कप, भोजन की थाली और यहां तक कि बाजार से सामान लेकर आने के लिए भी प्लास्टिक बैग का उपयोग होने लगा है। ये सब कुछ हमारे स्वास्थ्य, हमारे पर्यावरण और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि प्लास्टिक जलाने पर भी नष्ट नहीं होता। प्लास्टिक के सामान, प्लास्टिक के थैले जब जमीन के संपर्क में आते हैं तो हमारी जमीन की मिट्टी को बीमार कर देते हैं। आज कई शहरों में ड्रेनेज सिस्टम को खराब करने के लिए प्लास्टिक बैग जिम्मेदार हैं, वो पॉलीथिन जिम्मेदार है, जिनका उपयोग हम बहुत ज्यादा करते हैं। तो श्रोताओ, हमारी आज की सुबह सुबह का लबोलबाब यही है कि आज के दिन पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमारे पर्यावरण और अन्य जानवरों के जीवन को बचाने के लिए प्लास्टिक बैग के निषेध की पहल करता है और एक बार फिर से पुराने दिनों की ओर ले जाता है, जब हमारे बुजुर्ग कपड़े के थैले लेकर बाजार जाते थे और झोले में बहुत सी खुशियां लेकर आते थे। तो क्यों ना हम सब उन पुराने दिनों को वापस ले आएं। सुबह सुबह में आज बस इतना ही। सुबह सुबह हमारे दैनिक वैचारिक क्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:05 होने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम कृषि संकेत। आज का विषय है मानसून पूर्व टीकाकरण से उन्नत पशुपालन। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नीलेश शाह।
1: किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बारिश के दौरान पशुओं में विभिन्न प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है। इनके बचाव के लिए यदि हम समय से इनके टीका लगवा लेंगे तो फिर इन बीमारी होने की संभावना खत्म हो जाती है। तो जो बारिश के पूर्व लगने वाले टीके हैं, उनमें से मुख्य है एक घटरूंदा बीमारी होती है, इंग्लिश में हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया या HS बीमारी होती है, और ये बीमारी जानलेवा होती है। तो इसके बचाव के लिए इसका टीकाकरण बारिश के पूर्व लगना होता है। 6 माह से ऊपर के उनमें ये टीका लगवाना चाहिए। इसके साथ ही एक ब्लैक क्वार्टर बीमारी होती है, जिसको हम चुरका भी बोलते हैं, एक टंगिया बोलते हैं, जिसमें पशु लंगड़ा के चलता है, इसमें भी पशु की मृत्यु हो सकती है। एक टीका ब्लैक क्वार्टर का होता है, जो कि हमें बारिश के पूर्व मतलब 15 जून के आसपास लगवा लेना चाहिए, और अगर किसी ने नहीं लगवा सके हैं तो अभी भी समय रहता है कि वो जुलाई के पहले हफ्ते में भी ये टीका लगवा लें। घटरूंदा का टीका और एक टंगिया का टीका अलग अलग भी लगवा सकते हैं, और ये संयुक्त रूप से भी आते हैं। संयुक्त रूप से लगवाना चाहें तो एक बार में ही दोनों टीके लग जाएंगे। एक बीमारी होती है खुरी की, जिसको हम FMD बोलते हैं, तो इसका टीका वैसे तो सर्दी के पूर्व लगता है, उसका टीका भी HS और BQ के साथ संयुक्त रूप से आता है। तो यदि आप चाहते हैं कि तीनों बीमारियों का टीका एक साथ लग जाए, तो आप HS, BQ, FMD का टीका बारिश के पूर्व संयुक्त रूप से लगवा सकते हैं, जिससे आपको ये फायदा होगा कि बार बार टीका लगवाने की समस्या नहीं होगी, जो तीनों बीमारियों से आप अपने पशु को सुरक्षित रख सकते हैं। एक लंपी बीमारी होती है, तो लंपी बीमारी का टीकाकरण भी हमको बारिश के पूर्व करवा लेना चाहिए। यदि इसकी वैक्सीन शासन स्तर पर भी उपलब्ध रहती है तो आप अपने

0: पशु चिकित्सा विभाग से संपर्क कर लंपी स्किन डिजीज का भी टीका या LSD का टीका लगवा सकते हैं। बारिश के पूर्व हमें एक और बात का ध्यान रखना रहता है कि हमें पशुओं में कृमिनाशक दवाई आवश्यक रूप से देना चाहिए। तो कृमिनाशक दवाई अगर हम टीकाकरण के पूर्व देंगे तो टीकाकरण का असर भी और प्रभावी होता है और पशु कृमि से मुक्त होते हैं। तो बारिश के पूर्व हमें कृमिनाशक दवाइयाँ देना चाहिए। इसमें अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ आती हैं, जेनरिक नेम है जिनके, एल्बेंडाजॉल है, फेनबेंडाजॉल है, आइवरमेक्टिन होती है, या इनके कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। तो आप इसको बारिश के पूर्व पशुओं को कृमिनाशक दवाइयाँ दें। और कुछ कृमिनाशक दवाइयाँ जैसे कि आइवरमेक्टिन, इसमें हम आंतरिक परजीवी या एंडोपैरासाइट्स को या बाह्य परजीवी एक्टोपैरासाइट को, दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइवरमेक्टिन की सहायता से हम अंतर परजीवी और बाह्य परजीवी का नियंत्रण कर सकते हैं, या आप एल्बेंडाजॉल है, फेनबेंडाजॉल है, या इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन भी आते हैं, वो दवाइयाँ भी आप दे सकते हैं। जहाँ तक इन वैक्सीन की या टीका द्रव्य की उपलब्धता का सवाल है, तो आप अपने निकटस्थ पशु चिकित्सा संस्था में जाकर संपर्क कर सकते हैं वहाँ के अमले से, और वहाँ पर जो भी वैक्सीन उपलब्ध होती है वैक्सीनेशन करा दिया जाएगा। और अगर किन्हीं कारण से वैक्सीन उपलब्ध नहीं है उस समय, तो वहाँ के जो विशेषज्ञ हैं वो वैक्सीन आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। इसके साथ में विभाग में एक 1962 चलित मोबाइल यूनिट भी चलती है, 1962 जिसका टोल फ्री नंबर है। इस 1962 टोल फ्री नंबर पर आप अगर फोन करके अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे तो आपके पशुओं का उपचार घर पहुंचकर भी हो सकता है। पशुपालन विभाग की सेवाएं लेना चाहते हैं उपचार के लिए, तो आप 1962 टोल फ्री नंबर के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा के पशुओं का उपचार करा सकते हैं, या आप अपनी निकटस्थ पशु चिकित्सा संस्था में जाके वहां पर जो भी विशेषज्ञ उपलब्ध हैं उनके परामर्श से टीका लगवा सकते हैं या टीका प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। बारिश के पूर्व आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो पशु स्वस्थ भी रहेगा और उससे आप अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद।
1: कार्यक्रम कृषि संकेत अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 102.6 MHz पर। सुबह के 7:10 होने वाले हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुनेंगे। बस कुछ पलों का इंतजार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में कहा, भारत विश्व की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था। स्कूल चले अभियान के दौरान ही संदीप ने विद्यालय भवनों का लोकार्पण और स्कूलों का युक्तियुक्तकरण होगा। श्री अमरनाथ यात्रा आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटल मार्गो से शुरू। और प्रदेश में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, आज हरदा नर्मदापुरम समेत कई जिलों में तेज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषता और निवेश भारत की गति और व्यापकता के साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने आज साझेदारी को और भी गतिशील तथा प्रगाढ़ बनाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे

0: कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा,
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: वहीं जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा है कि सहयोग के कई क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। इस अवसर पर दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के चौथे वाहन निर्माण केंद्र का उद्घाटन किया। प्रदेश में इन दिनों स्कूल चले अभियान चल रहा है। 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान अधिकाधिक सांदीपनी विद्यालय भवनों को लोकार्पण और स्कूलों का युक्तियुक्तकरण कराया जाए ताकि विद्यार्थियों को इसी सत्र में अधिकतम लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल अलग अलग विभागों की हुई समीक्षा बैठक में इस पर जोर दिया। डॉ. यादव ने कहा कि सांदीपनी विद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा उत्कृष्ट नवाचार है। स्कूल शिक्षा विभाग इसकी राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग के लिए कार्ययोजना तैयार करे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के सभी धार्मिक महत्व के तीर्थ स्थलों में धर्मशाला, सराय, अन्य क्षेत्र, प्याऊ, पेयजल टंकी, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माण के लिए धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। ये प्रोत्साहन रजिस्ट्री शुल्क में छूट, अनुदान या अन्य रियायत स्वरूप में किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल मंत्रालय में विभिन्न प्रासंगिक विषयों पर विभागों की प्रगति और आगामी कार्ययोजना के संबंध में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल की भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल को शासन द्वारा दी गई जमीन की भेल के लिए वर्तमान में अनुपयोगी भूमि उनसे वापस लेने के प्रयास किए जाएं। प्रदेश के 18 जिलों में नर्मदा जयंती कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में नर्मदा समग्र की बैठक में अपर मुख्य सचिव ने ये जानकारी देते हुए कहा कि मां नर्मदा की भव्य आरती, नृत्य गायन, प्रदर्शनी, प्रतियोगिता और जागरूकता कार्यक्रम भी किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अब नर्मदा समग्र की बैठक हर महीने होगी। मुख्यमंत्री ने नर्मदा परिक्रमा पथ पर मार्ग संकेतक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी घोषणा की कि अमरकंटक में जैव विविधता प्रबंधन संस्थान और नर्मदा कोष पोर्टल भी बनाया जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देश पर चर्चा होगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू और कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो चुकी है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। श्रद्धालु लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालटल स्थित दोहरे बेस कैंप पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की घोषणा कर दी है। जारी कार्यक्रम के अनुसार 6 जुलाई को गजट नोटिफिकेशन होकर नामांकन भरने की आखिरी तारीख 13 जुलाई होगी। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की छटनी और 16 जुलाई तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को मतगणना की जाएगी। प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। भोपाल समेत 11 जिलों में कल से रुक रुक कर तेज बारिश हुई। सतना और झाबुआ में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। सतना में बालिका स्कूल परिसर में पेड़ गिरने से 2 युवतियां घायल हो गई हैं। दमोह में लगातार बारिश होने से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। इंदौर में भी रात से कई क्षेत्रों में बारिश जारी है। मौसम विभाग ने आज हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, छिंदवाड़ा, पांडुना, बालाघाट समेत 19 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी बारिश की भी आशंका है। इंग्लैंड आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन के कैनिंगटन ओवल में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। पहली बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने निर्धारित ओवर में 5 विकेट पर 169 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 129 रन ही बना सका। रविवार को लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस स्टेडियम में कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले के बमन गांव आखई में कल विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबी जी रामजी योजना का जिला स्तरीय शुभारंभ किया गया। आगर मालवा जिला पुलिस को ई विवेचना प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिले के सभी थाना क्षेत्रों के 153 विवेचकों को टैबलेट दिए गए। अशोकनगर जिले में सभी शासकीय विभाग और संस्थाएं अपने अपने स्तर पर नशा मुक्ति से संबंधित जागरूकता अभियान और गतिविधियां संचालित करेंगी। ये निर्देश कल कलेक्टर ने एक बैठक में दिए। भोपाल ने नगर निगम और फायर विभाग ने कल एमपी नगर स्थित 2 कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की। धार जिले में तेजी से विकसित हो रहे देश के महत्वाकांक्षी पीएम मित्रा पार्क का इंदौर संभाग आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने कल दौरा किया। इंदौर संभाग आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने कल झाबुआ के विभिन्न गांवों का सघन भ्रमण कर कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्थाओं का अवलोकन भी किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल। सुहानी सी भीगी सी सुबह में आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, शिखा जैन के साथ।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 हुए हैं, आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम मंच है गीत। कार्यक्रम मंच है गीत में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए सुनते हैं सबसे पहली फरमाइश। व्हाट्सएप पर ये फरमाइश हमें भेजी है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, हिमलता देवांगन, डिंपल देवांगन ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहान, फरहीन, फारिया और ताहिरा। भूड चौराहा बुलंदशहर से इस गीत की फरमाइश की है पंकज सिंह, चंचल सिंह, रशिका सिंह, आकृति सिंह और वंशराज सिंह ने। इसी गीत को पसंद किया है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। आप सभी सुनना चाहते हैं आज गायक अमित कुमार साहब का जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन के अवसर पर उनकी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ को जीवा फिल्म में सुनना चाहते हैं। साथ में है आशा ताई और इस गीत को लिखा है गुलजार ने, संगीत आरडी बर्मन का।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: कार्यक्रम मंच है गीत में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है और आइए इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर ये गीत। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, शीतल रेडियो श्रोता संघ से ग्राम शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर टैमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समर, राज आर्यन, बेबी आरोही, ऐशिका, अंजलि, श्वेता शर्मा। इसी गीत को पसंद किया है रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, ईशु। आप सभी सुनना चाहते हैं अमित कुमार की आवाज़ में तेरी कसम फिल्म से ये गीत, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत आर डी बर्मन का।

0: अपना पसंदीदा प्रोग्राम लिजा के लफ्ज और लम्हे सुनिए हर शुक्रवार शाम 5:30 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: बढ़ेगा आपका व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297।
1: कार्यक्रम मंचाय गीत में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। और आइए इस कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं ये फरमाइश भेजी है व्हाट्सएप पर हमें नसीब रेडियो श्रोता संघ नागचुन रोड संजय कॉलोनी से अब्दुल गफ्फार डाबर, खुश नसीब अब्दुल हक डाबर, जयाल हक डाबर। इसी गीत को पसंद किया है हमारे इन श्रोताओं ने। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल, निशा इसी गीत को सुनना चाहते हैं। हमारे ये श्रोता ये सुनना चाहते हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंटी शर्मा, सौरव शर्मा, सायना शर्मा, निवान शर्मा। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर, प्रदीप येमेकर। संबलपुरा कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। करणवीर हाउस भूचो कैंचिया बठिंडा पंजाब से परम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन, अभिजोत। आप सभी ने पसंद किया है पूर्णिमा और अमित कुमार की आवाज़ों में देव कोहली का लिखा गीत, संगीत राम लक्ष्मण का, फिल्म का नाम है बहारों की मंजिल।

0: अरे सा तो ठीक से लगाओ।
1: सा सा सा सा सा सा सा
0: सा। हाँ अब गाओ।
2: अरे ये गाएगा क्या, इसके पास बोल तो है नहीं, सिर्फ धुन है।
0: अच्छा तो बोल मैं देती हूँ, जरा धुन तो सुनाओ।

पूर्णिमा और अमित कुमार की आवाज़ों में अभी आपने बहारों की मंजिल इस फिल्म से ये गीत सुना और इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत अब यहीं संपन्न होता है।

0: अपना पसंदीदा प्रोग्राम लिजा के लफ्ज और लम्हे सुनिए हर शुक्रवार शाम 5:30 पर।
1: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए महात्मा गांधी की आत्मकथा का धारावाहिक वाचन।

नमस्कार, आइए सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक वाचन। अभी तक आपने सुना, मैंने मुसलमानों को समझाया कि अली भाइयों को छुड़ाना उनका धर्म है। इसके बाद वे मुझे अलीगढ़ कॉलेज में भी ले गए थे। वहां मैंने मुसलमानों को देश के लिए फकीरी अख्तियार करने की दावत दी। अली भाइयों को छुड़ाने के लिए मैंने सरकार से पत्र व्यवहार शुरू किया। उसके निमित्त से इन भाइयों की खिलाफत संबंधी हलचल का अध्ययन किया, मुसलमानों के साथ चर्चाएं की। मुझे लगा कि अगर मैं मुसलमानों का सच्चा मित्र बनना चाहता हूं, तो मुझे अली भाइयों को छुड़ाने में और खिलाफत के प्रश्न को न्यायपूर्वक सुलझाने में पूरी मदद करनी चाहिए। खिलाफत का सवाल मेरे लिए सरल था। मुझे उसके स्वतंत्र गुण दोष देखने की जरूरत नहीं थी। मुझे लगा कि अगर उसके संबंध में मुसलमानों की मांग नीति विरुद्ध ना हो, तो मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। धर्म के प्रश्न में श्रद्धा सर्वोपरि होती है। यदि एक ही वस्तु के प्रति सबकी एक सी श्रद्धा हो, तो संसार में एक ही धर्म रह जाए।

के लिए ही करना था। और अब इससे आगे, क्योंकि मैंने खिलाफत के मामले में मुसलमानों का साथ दिया था, इसलिए इस संबंध में मित्रों और आलोचकों ने मेरी काफी आलोचना की है। उन सब पर विचार करने के बाद जो राय मैंने बनाई और जो मदद दी या दिलाई, उसके बारे में मुझे कोई पश्चाताप नहीं है, ना उसमें मुझे कोई सुधार ही करना है। मुझे लगता है कि आज भी ऐसा सवाल उठे तो मेरा व्यवहार पहले की ही तरह होगा। इस प्रकार के विचार को लेकर मैं दिल्ली गया। मुसलमानों के दुख की चर्चा मुझे वायसराय से करनी थी। खिलाफत के प्रश्न ने अभी पूर्ण स्वरूप धारण नहीं किया था। दिल्ली पहुंचते ही दीन बंधु एंड्रयूज ने एक नैतिक प्रश्न खड़ा कर दिया। उन्हीं दिनों इटली और इंग्लैंड के बीच गुप्त संधि होने की जो चर्चा अंग्रेजी अखबारों में छिड़ी थी, उसकी बात कहकर दीन बंधु ने मुझसे कहा, यदि इंग्लैंड ने इस प्रकार की गुप्त संधि किसी राष्ट्र के साथ की हो तो आप इस सभा में सहायक की तरह कैसे भाग ले सकते हैं। मैं संधियों के विषय में कुछ नहीं जानता था। दीन बंधु का शब्द मेरे लिए पर्याप्त था। इस कारण को निमित्त बनाकर मैंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा कि सभा में सम्मिलित होते हुए मुझे संकोच हो रहा है। उन्होंने मुझे चर्चा के लिए बुलाया। उनके साथ और बाद में मिस्टर मैफी के साथ मेरी लंबी चर्चा हुई। उसका परिणाम यह हुआ कि मैंने सभा में सम्मिलित होना स्वीकार किया। थोड़े में वायसराय की दलील ये थी, आप ये तो नहीं मानते कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो कुछ करे उसकी जानकारी वायसराय को होनी ही चाहिए। मैं ये दावा नहीं करता कि ब्रिटिश सरकार कभी भूल ही नहीं करती। कोई भी ऐसा दावा नहीं करता, किंतु यदि आप ये स्वीकार करते हैं कि उसका अस्तित्व संसार के लिए कल्याणकारी है, यदि आप ये मानते हैं कि उसके कार्यों से इस देश को कुल मिलाकर कुछ लाभ हुआ है, तो क्या आप ये स्वीकार नहीं करेंगे कि उसकी विपत्ति के समय उसे मदद पहुंचाना प्रत्येक नागरिक का धर्म है। गुप्त संधि के विषय में आपने समाचार पत्रों में जो देखा है, वही मैंने भी देखा है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं जानता, ये मैं आपसे विश्वासपूर्वक कह सकता हूं। अखबारों में कैसी कैसी गप्पें आती हैं, ये तो आप जानते ही हैं। क्या अखबारों में आई हुई एक निंदा सूचक बात पर आप ऐसे समय राज्य का त्याग कर सकते हैं? लड़ाई समाप्त होने पर आपको जितने नैतिक प्रश्न उठाने हों उतने उठा सकते हैं, और जितनी तकरार करनी हो उतनी कर सकते हैं। ये दलील नई नहीं थी, लेकिन जिस अवसर पर और जिस रीति से ये पेश की गई, उससे मुझे नई जैसी लगी और मैंने सभा में जाना स्वीकार कर लिया। खिलाफत के बारे में ये निश्चय हुआ कि मैं वायसराय को पत्र लिखकर भेजूं। मैं सभा में हाजिर हुआ। वायसराय की तीव्र इच्छा थी कि मैं सिपाहियों की मदद वाले प्रस्ताव का समर्थन करूं। मैंने हिंदी हिंदुस्तानी में बोलने की इजाजत चाही। वायसराय ने अनुमति तो दी, किंतु साथ ही अंग्रेजी में भी बोलने को कहा। मुझे भाषण तो करना ही नहीं था, मैंने वहां जो कहा सो इतना ही था। मुझे अपनी जिम्मेदारी का पूरा ख्याल है और उस जिम्मेदारी को समझते हुए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। तो अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक वाचन, और आइए अब सुनते हैं ये भजन।

0: पसंदीदा प्रोग्राम लिजा के लफ्ज और लम्हे सुनिए हर शुक्रवार शाम 5:30 पर।
1: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी के महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।

का व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770 43

का व्यापार आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने

0: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता रणब्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श वर्ष से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जट्टा आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
3: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4-9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
5: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमेरिका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मेक्सिको से होगा। अमेरिका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15-27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। यह श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास से रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान की प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्ता की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
3: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं बुंदेली गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं उर्मिला पांडे और सखियों का गाया ये वर्षा गीत।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: कार्यक्रम लोक संगीत में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है और आइए इस कार्यक्रम में अब सुनते हैं मालती विश्वकर्मा का गाया ये बुंदेली गीत।

आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए।

0: सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से। अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार तक। समय होता है 11:30 से 11:30 बजे तक।

0: अपना पसंदीदा प्रोग्राम लिजा के लफ्ज और लम्हे सुनिए हर शुक्रवार शाम 5:30 पर।
1: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार तक, समय होता है सुबह 11 से 11:30 बजे तक।

0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रूपक, एक दुनिया और वन्य प्राणियों की। आलेख और प्रस्तुति है रामनाथ अवस्थी की। तो आइए सुनते हैं रूपक, एक दुनिया और वन्य प्राणियों की।
1: Oh, my God.

0: अन्य पशुओं की दुनिया हमारी दुनिया की अपेक्षा अधिक शांत है। आखिर वो कौन सा कारण है कि आर्थिक, नैतिक, वैज्ञानिक और मानसिक प्रगति के बावजूद मनुष्य अपने आप में बहुत अकेला, भयग्रस्त और अशांत है?
1: इसका कारण है, मनुष्य का संसार यदि नितांत मानवमय हो उठे और उससे प्रकृति का साथ छूटता चला जाए तो उसके कर्म और विचार स्वाभाविक रूप से कलुषित और व्याधिग्रस्त होंगे। विराट प्रकृति में जिसकी जो जगह है, अगर वो इधर उधर न की जाए तो मनुष्य की जीवन दृष्टि भी प्रकृति की तरह ही विराट और कलात्मक होगी। जन्मजात रूप में मनुष्य के मन में सदा की तरह आज भी पशु पक्षियों के प्रति प्रेम और भय दोनों ही हैं। प्रेम के कारण ही शायद मनुष्य ने तमाम पशु पक्षियों को पालतू बनाकर उनसे उनकी नागरिकता ही छीन ली।

0: न जाने कितने पशु पक्षियों को मनुष्यों ने उसके परिवेश से अलग करके उन्हें पिंजरों में कैद किया, बैलों के कंधों पर हल रखे और बेचारे गधे की पीठ पर बोझ, विश्वास पात्र कुत्ते को मात्र अपनी सुविधा के योग्य बना दिया और नीली चमकीली आंखों वाली बिल्ली को पालतू बनाकर उसकी चमक धुंधली कर डाली।
1: इन सभी पशु पक्षियों के बंधु बांधव आज भी जंगलों में निवास करते हैं, जिन्हें मनुष्य जंगली कहता है। शायद वो भूल गया कि कभी वो खुद ही जंगलों में निवास करता था।
2: महाकवि कालिदास के रघुवंश काव्य में तपोवन का पवित्र वर्णन इस प्रकार है।
1: जंगल से तृण काष्ठ फल एकत्रित करके तपस्वी गण आते हैं। तपोवन के हिरण ऋषि पत्नियों को संतान की तरह प्रिय हैं। नीवार धान्य के दाने पाकर हिरण कुटिया के दरवाजे निसंकोच पड़े हैं। मुनि कन्याएं वृक्षों को पानी देती हैं। जब थाले भर जाते हैं तो पक्षीगण निशंक होकर पानी पीने के लिए आते हैं और पास ही हिरण लेटे लेटे घास चबा रहे हैं।
0: इसी प्रकार राम का वनवास बीता, कभी रमणीय वन में, कभी पवित्र तपोवन में। उस समय भी वन और वन्य प्राणी राम के सहभागी थे। हमारी संस्कृति और साहित्य के अतिरिक्त वन और वन्य प्राणी हमारी धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय भावनाओं से भी जुड़े हैं। जैसे हमारा राष्ट्रीय पशु शेर है और पक्षी मोर है। कवि और लेखक डॉक्टर कैलाश वाजपेयी ने बताया कि किस प्रकार ये हमारे आदरणीय देवताओं के वाहन हैं।
3: प्रकृति के एक एक उपादान को हमने आकृति दी, उसे दिव्य कहा, इस तरह शुरू हुई देव पूजा। क्योंकि हम समष्टि के प्रति सस्पंद थे, इसलिए हमने जिन्हें पूजा के योग्य चुना उन्हें वाहनों पर अधिष्ठित किया। शिव को नंदी, कार्तिकेय को मयूर, लक्ष्मी को उलूक, गणेश को मूषक, विष्णु को गरुड़ और यम को महिष पर अधिष्ठित किया। इसके पीछे गहरी कल्पना थी। कितना विराट था यह दृष्टिकोण और कितना वैज्ञानिक, इसका रहस्य आज समझ में आ रहा है, जब प्रकृति के असंतुलन से घबराकर हमें फिर अपने वन और वन्य बंधुओं की याद हो आई है, जिनके अस्तित्व में हमारा अस्तित्व भी शामिल है।
0: मौलाना मोहम्मद यूसुफ ने वन्य प्राणियों को खुदा की नियामत बताया।
4: तमाम जानवर जो हैं, ये भी खुदा की नेमत हैं। इन नेमतों से फायदा उठाओ, लेकिन इस तरह फायदा उठाओ कि उनको दुख मत दो, तकलीफ मत दो। चुनाचे कुरान करीम में साफ तौर पर हक ताला शारू फरमाते हैं, वल्लाहु जाला लकुम अनआम लतरकबू मिनहा व मिनहा ताकुलून वलकुम फीहा मुनाफिउ कसीरतुन व मिनहा ताकुलून। कुरान पाक में साफ तौर पर आयत।
0: गांधीवादी लेखक श्री यशपाल जैन ने प्राचीन ग्रंथों के संदर्भ में पशु पक्षियों को स्मरण किया है।
5: पंचतंत्र की कहानियां, हितोपदेश की कहानियां, इन सब में पशु पक्षी आते हैं और उन पशु पक्षियों के माध्यम से मनुष्य को बहुत सी शिक्षाप्रद बातें कही गई हैं। उसके साथ साथ कुछ और भी मानव विकास के लिए पशु पक्षियों को माध्यम बनाया गया है।
0: ये तो निर्विवाद है कि पशु पक्षी मानव जीवन की विकास यात्रा के अंतरंग सहचर हैं, पर कालांतर में भौतिक सभ्यता की चकाचौंध ने मनुष्य को वन और वन्य प्राणियों से दूर कर दिया। परिणाम स्वरूप वन्य पशु पक्षी मनुष्य से प्रेम के बजाय भय पाने लगे। मनुष्य उनकी चिंता छोड़कर सिर्फ अपनी ओर देखने लग गया। शौक या स्वयं के निजी लाभ के लिए वो उन्हें मारने लगा।

0: इस प्रकार इंसान पशु पक्षियों की कमी का कारण बना। मध्य प्रदेश के श्री नरोना ने इसकी पुष्टि की।
1: जानवरों का संख्या तो घट रहा है, लेकिन आदमियों का संख्या उससे चौगुना ज्यादा बढ़ रहा है। जमीन से घास पैदा होता है तो जानवर खाते हैं, उन जानवरों को कटीले जानवर अपने वक्त पर खाते हैं। अब उसी जमीन में अगर आपने फसल बोया तो अनाज पैदा होता है तो आदमी खाते हैं। तो या तो आपके पास घास हो सकता है या तो अनाज हो सकता है। जब अपने देश में संख्या इतनी तादाद से और इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो मैं समझता हूँ कि घास तो नहीं उगाएंगे, आप अनाज ही उगाएंगे। और अगर आप अनाज उगाएंगे तो जंगल कटेंगे, और जब जंगल कटेगा तो जानवर को रहने का जगह नहीं मिलेगा, और जब जगह नहीं मिलेगा तो जानवर मरेंगे।
0: एक महत्वपूर्ण पक्षी सोन चिरैया के नष्ट होने का कारण दिया है सुपरिचित पक्षीवेत्ता बंबई के डॉक्टर सलीम अली ने।
2: ये सबसे जो प्रोमिनेंट है वो तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे तुकदार कहते हैं, एक बड़ा करीब 3 फुट ऊंचा परिंदा होता है, और का वजन करीब 10 किलो या ज्यादा। तो वो ऐसे खुले मैदान, घास के मैदान और खेतियों वगैरह के अंदर रहता है, लेकिन खेती को कुछ नुकसान नहीं करता बल्कि बहुत फायदा करता है, क्योंकि वो कीड़े मकोड़े ज़्यादा खाता है। ये परिंदा पहले बहुत तादाद में मिलता था यहाँ, लेकिन अब बिल्कुल मार मार के उसे ख़त्म कर दिया। और मारने के अलावा जो उसकी रहने की जगह थी वो भी जाती रही, क्योंकि हमारे इंसान इतने बढ़ गए हैं हिंदुस्तान में कि उनको हर एक को खेती वगैरह की जरूरत, जमीन चाहिए।
0: कस्तूरी मृग का नाम हम सभी जानते हैं, ये कश्मीर में होता है। इंसान उसके प्रति कितना बेदर्द है सुनिए। सुना रहे हैं महा के वन्य प्राणी विभाग के एक अधिकारी मीर इनायत उल्लाह।
3: मारखोर और मस्ट डियर है, जिसे रूसा कहते हैं। ये मस्ट डियर एक इतना पाक जानवर है साहब, और बेदर्दी से
4: जिसे नाफा लिया जाता
3: उस नाफे के लिए, और नाफे की कीमत बहुत बढ़ गई है, तो उस नाफे के लिए इसको बेदर्दी से ख़त्म कर दिया। एक गुरेज इलाका था हमारा दलेल, ये बहुत ही फेमस था ये हमारे मस्ट डियर के लिए। और दूसरा इलाका इसका है टंगमा गुलमग इलाका, जहाँ पे इतनी तादाद नहीं थी जितनी कि हमारे गुरेज में थी, लेकिन अब जब से ये कॉन्शियसनेस शुरू हो गई है लोगों में भी है। और वो बिल्कुल ऐसा इलाका है जो साल के कोई 5 महीने बिल्कुल बर्फ़ से ढका रहता है, बंद रहता है। और उस वही एक मौका है जब हमारे

0: मामा जी, मामा जी।
1: अरे निधि, ओ आधिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?
2: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है
0: जी। उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले, ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
1: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ, यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो। बता सकती हो कि ये क्या है?
2: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
1: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है, जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
0: अच्छा, भोज वृक्ष।
1: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
2: पांडुलिपि, ये हमें कहाँ मिली है?
1: निधि, ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है, कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
2: अच्छा।
1: और बेटी, मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
0: ये किस भाषा में है?
1: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
0: मामा जी, अब आगे भी बताइए ना।
1: हाँ, बताता हूँ बताता हूँ, अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
0: अच्छा।
1: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
0: अच्छा।
1: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
2: अच्छा।
1: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं, और शिलालेख को
2: एपिग्राफ।
1: शाबाश निधि।
2: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
1: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं, लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
2: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
1: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
0: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
1: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं, और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
0: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
1: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है, इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को।

0: तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर लीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
1: आशा है श्रोता मित्रों आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
0: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
1: जी,
0: लेकिन आज श्रोताओं आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रहीं
1: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
0: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
2: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कालंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

0: शाबाश शाबाश मोती शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करूं, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं, इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछिए तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस वहीं खड़े रहो, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा अखा, तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं, इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। ज़हे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूँ, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका था

0: ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
1: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
0: अच्छा वाह, अरे
1: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
0: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
1: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
0: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
1: चल बेटा मोती।
0: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
2: एक बार दलपरचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपरचाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
3: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं।
4: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कायरों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
3: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए, कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
4: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
2: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु
4: रेवती

0: गढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
1: अलख निरंजन।
2: साधु बाबा।
1: अब अच्छा,
2: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
1: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं।
2: क्या?
1: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
2: है?
1: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
2: अच्छा?
1: हाँ,
2: बहुत बड़ी फौज है।
1: और नहीं तो क्या बच्चा, अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है, बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
2: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
1: अच्छा,
2: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
1: हैं? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
2: बिल्कुल है।
1: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो?
2: उसका भी इंतजाम है।
1: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
2: देखो है? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
1: नहीं नहीं बच्चा, किसी से नहीं कहेंगे।
2: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
1: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
2: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूँ, बदन सिंह, रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।

0: पुरुष वेश में लड़ रही रानी के बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे। उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
1: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
2: ओ मेरा ध्यान छोड़ गनू, तू हाथी को संभाल।
1: हाथी को क्या संभालू रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप कितना खून बह रहा है।
2: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनू।
3: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
2: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
3: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
2: अच्छा तो गनू बेटा, तू अपनी कटार मुझे दे।
3: रानी माँ
4: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।

0: और श्रोताओं, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
3: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.6 MHz पर। सुबह के 11:30 होने वाले हैं। अब आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से सुनेंगे। बस कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।
4: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
5: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की।

0: छाया गांगुली की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूर नहीं रह सकता एक बिन, तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्ष में भारत और फ्रांस के बीच व्यापार दोगुना हो गया है। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर और इंडिया स्टैक जैसी डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकायचे ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकायची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कारागार में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने स्पष्ट किया है कि विजिंगम बंदरगाह में हिस्सेदारी में कोई भी बदलाव सरकार की अनुमति के बिना संभव नहीं है। श्री सतीशन ने यह भी बताया कि एक विदेशी कंपनी द्वारा 49% हिस्सेदारी के निवेश की घोषणा राज्य सरकार को सूचित किए बिना की गई थी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के सत्र में 0.5% की बढ़ोतरी हुई। सेंसेक्स 511 अंक बढ़कर 78,013 पर, जबकि निफ्टी लगभग 160 अंक की वृद्धि के साथ 24,336 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल।
1: मिलो न तुम तो हम।
0: फिल्म है हे राजा, लता मंगेशकर की आवाज, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: जैसे इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय की अंधेरी गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: देखो प्यार में ऐसा नहीं करते।

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. होटल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, अमित कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में. इंदिवर के बोल थे, उषा खन्ना का संगीत था. इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है.

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, ना हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, विविध भारती पर रोजाना दिन में 1 बजे आप सुनते हैं सुरीला सफर। इस कार्यक्रम में विविध भारती और उसके श्रोता सोशल मीडिया का हाथ पकड़ कर तय करते हैं एक सुरीला सफर। जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज से नहीं जुड़े, उनके लिए ये खास जानकारी है। सुरीले गाने, दिलचस्प पहेलियां और बहुत सारी बातें। हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं। इस एक पैराग्राफ में वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं। आपको पढ़कर अंदाजा लगाना है कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम का मजा तो इस बात में ही है कि गानों की आपकी और हमारी लिस्ट मैच कर जाए। आज वैसे हमारी लिस्ट मैच कर रही है, क्योंकि हम विविध भारती के फेसबुक पेज पर सैर कर रहे हैं इस समय। तो ध्यान से आप पढ़ लीजिए आज की इबारत, हम पढ़कर सुना देते हैं। रिमझिम बरसता सावन, सावन की एक शाम थी, बाहर रिमझिम सावन की फुहारें बरस रही थी और भीगी फिजाओं में कहीं दूर तराने गूंज रहे थे। सावन में पड़ते हैं झूले, झूले में पवन ने उड़ाया आंचल, घिरे थे बादल, दिल ने कहा घर आजा घेराए बदरा सवरिया जोड़ लीजिएगा। तभी निगाहें मस्ताना लिए वो परदेसी सामने आकर खड़ा हो गया। निगाहें मस्ताना से कौन सा गाना याद आया? देव आनंद वाला वो गाना याद आया जिसमें नूतन भी है और साइकिल पे चले जा रहे हैं। कौन सा है, फिल्म याद कीजिए। वैसे हमें तो याद है। मेरी धड़कनें रुक सी गईं, लगा जैसे उसने पुकारा हो और मैं अनजाने में ही उसकी ओर खींची चली आई। यहाँ पर कौन सा गाना याद आया, लिखिए फटाफट विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अभी हम जाकर वहां पढ़ेंगे। उसी पल लगा जैसे परदेसी मेरा दिल लग गया, तब से हम उसके प्यार में सारा आलम खो बैठे। यहाँ कौन सा गाना याद आया? मुझे लगता है आप सबको वही गाना याद आया होगा जो मैंने चुना है, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे। फिर लगी लगन ऐसी गहरी कि ये नाता जन्म जन्म का बन गया, अब इतना तो कह दो कि तुमसे ही प्यार है। यहाँ पर बहुत ही मशहूर गाना आप विविध भारती से अक्सर सुनते हैं, याद आ गया होगा। कौन सा है जरा बताइएगा। इस एक इकरार की खातिर मैंने बड़ी शिद्दत से मैंने रंग ली आज चुनरिया अपने प्रेम के गहरे रंग में, हुस्न का वो सारा नूर आज आंखों में उतर आया है जो केवल उसी के लिए है। उसी के लिए भी बहुत सारे गाने हैं, बताइए आप। तो कौन से गाने हो सकते हैं और कौन से वो शब्द हैं जिन पर गाने आपने चुने हैं, और आपको क्या लगता है इन शब्दों पर कौन से गाने सुनवाए जाएंगे? तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला, लेकिन उससे पहले हम जरा आपको याद दिला दें, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, आज जाने माने अभिनेता राजकुमार की याद का दिन है। कुछ गाने उनकी याद को भी समर्पित हैं। तो बताइए उनकी कौन सी फिल्म आपकी बेहद पसंदीदा फिल्में हैं? और हाँ, झूला, सावन, घटा, बादल कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके लिए हमारे श्रोता टिप्पणी कर चुके हैं और आप सबने गाने भी लिखे हैं, तो इबारत भी लिखी है बहुत सारे लोगों ने। तो आप भी इबारत लिख सकते हैं, झूला, सावन, घटा, बादल, जो भी शब्द आज की इबारत में शामिल किए हैं, और साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। हाँ, साथ में ये भी साझा कीजिए, झूले वाली कौन सी यादें हैं, झूले की पींग वाली कौन सी यादें हैं, और झूला कौन से पेड़ पर अब लगता है, डाला जाता है? पहले तो नीम का पेड़ होता था, मजबूत पेड़ की, टूटने का डर नहीं होता था, लेकिन अब बड़े कमजोर तने वाले पेड़ हैं आसपास। तो नीम का पेड़ पता नहीं आपके इर्द गिर्द है भी कि नहीं। वैसे गांव में अभी भी ये परंपरा है कि सावन आने से पहले ही झूले डाल दिए जाते हैं। तो सावन की याद महिलाएं खासतौर से, ससुराल में पहला सावन कैसा था, तो आप यादें साझा कीजिए। हम सुनवा रहे ये गाना, क्या यही गाना सोचा था आपने कि हम सुनवाएंगे, या कोई और गाना आपने सुना था, सोचा था? राजकुमार फिल्म का गाना है, हीरोइन का नाम जरा बता दीजिए आप।

0: राजकुमार फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत था और हमने हीरोइन का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही लिखा है साधना और बहुत सारे श्रोताओं ने तुरंत तुरंत लिख डाला कि इबारत में कौन से गाने थे। किसी ने लिखा है रिमझिम की गिरे सावन, सावन के झूले पड़े, कौन परदेसी मेरा दिल ले गया, और एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर बारिश के आगमन पर आधारित है, सचमुच गर्मी के दिन हटने का संकेत बारिश का आना देता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीले सफर में शायद रिमझिम बरसात, सावन के झूले इन्हीं शब्दों के साथ सजने वाली है, और एक श्रोता ने टिप्पणी की है कि रिमझिम फुहारें जब धरती को भिगोती हैं तो मन भी अनगिनत मधुर यादों में भीग जाता है, झूलों की मस्ती, पवन का शीतल स्पर्श और घिरते बादलों के बीच किसी अपने के आने की आस दिल में नई धड़कने जगा देती है, फिर एक परदेसी मुस्कान के साथ दिल चुरा लेता है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें झूले की याद तो ननिहाल के साथ ही छूट गई, ननिहाल की याद आती है, और एक श्रोता ने लिखा है कि 28 तारीख से सावन लग रहा है, और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि बारिश की भीगी फुहारों के बीच सावन का सुहाना मौसम, प्रेमी से पहली मुलाकात, दिल का इकरार, जन्म जन्म का साथ, प्रेम के रंग में रंगी चुनरिया, यही पूरी इबारत का भाव है। इसलिए आज का सुरीला सफर में अधिकतर गीत सावन, रिमझिम, बारिश, बादल, परदेसी, दिल, प्यार, इकरार, चुनरिया, नूर जैसे शब्दों पर आधारित होंगे। वही बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह लिखा है, बहुत सारे गाने लिखे, क्या करें हम, कौन सा वाला गाना सुनवाएं, कौन सा छोड़ें, लेकिन आज खास बात यह है कि आपकी लिस्ट में जो गाने हैं हमारी लिस्ट में भी है।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: गीतकार का नाम जरा बताइए।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: संगीतकार का नाम भी बता सकते हैं तो बताइए।

घराना फिल्म का गाना था मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार रवि। और ये हमारा सवाल भी था, सभी श्रोताओं ने सही लिखा है, एक आध श्रोता ने गीतकार का नाम गलत बताया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, बचपन में हम जहाँ रहते थे वहीं एक नीम का पेड़ था जिस पर झूला बांधा जाता था। एक बार मैं झूल रहा था और झूले को बहुत ऊपर तेज करता हुआ झूल रहा था, तभी पटिए से रस्सी सरक गई और मैं सर के बल नीचे गिर गया। वो तो भगवान की दया से कोई अनहोनी नहीं हुई। ऐसी घटनाएं पहले हुआ करती थी लेकिन तब इम्यूनिटी लोगों की बहुत मजबूत थी, चोट जल्दी से ठीक हो जाती थी, चोट ठीक जल्दी से ठीक हो जाया करता था। और वो चोट भी ऐसी होती थी कि कई बार माँ पिता साथ में होते थे, भाई बहन साथ में होते थे, उनके जो प्यार का फाहा होता था ना, उससे भी चोट हरण हो जाती थी। लेकिन ये जो घटना घटित हुई ये थोड़ी रिस्की थी, तो जब भी कभी आप झूले पर झूलें तो इतनी ऊंचाई तक मत जाएं कि गिरने का डर हो। वैसे भी इतनी ऊंचाई पर अमूमन नहीं जाना चाहिए कि गिरने का डर बना रहे। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि तभी उस मस्ताने परदेसी ने सामने आकर दस्तक दी, मेरी धड़कनें थम गई और मैं अनजाने ही उसकी ओर खींची चली गई। मेरी इबारत से इन्होंने हेर फेर करके लिखा है कुछ। एक श्रोता ने लिखा है कि रिमझिम बरसे बदरवा फिल्म रतन, गायिका जोराबाई अंबाले वाली। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ सावन में झूले का चलन नहीं है, अतः चौखट में ही रस्सी बांधकर बच्चों को हम झुलाते हैं। और अब तो आप बालकनी में, बरांडे में, आंगन में, जो घरों में छत होती है, छतों में कुछ लोहे की छड़ लगाकर झूले डाल लिए जाते हैं, लेकिन वो जो पेड़ के नीचे के झूले की बात होती है वो निराली होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि सचमुच ही तुमने पुकारा और हम इस सुरीले सफर में चले आए, कुछ यादों की बारात लेकर आए और कुछ मौसम का अंदाज लेकर आए। घनघोर छाए बादल कुछ बरस रहे हैं, कुछ गरज रहे हैं, कुछ लुका छिपी खेल रहे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुबह जब मैं जागा तो मुझे ऐसा लगा कि रात को हमारे शहर अजमेर में झमाझम बारिश हुई है और मैं सोता रहा। सुबह छत पर छतरी लगाकर पहुंचा तो भीगा मौसम, रिमझिम बरसता सावन, खुशी से झूमते पेड़ घर के गार्डन में और आसपास के घरों में, और सामने मनमोहक पहाड़ों का नजारा। क्या बात है भाई। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि हवाएं, बहारें, फूल और खुशबू, रंग, उमंग, संगीत, सावन का मौसम सच में जादूगर है। कोयल का पंचम महक रहा है और धरती सुगंध की सरगम से गुनगुना उठी है। वैसे तो बसंत के मौसम को ऋतुओं का सिरमौर कहा जाता है, मगर सावन की ऋतु भी कुछ कम नहीं है। ये मौसम अपने रंग भरी कूची से पूरी

प्रकृति को सजा देता है। मौसम से बंधे हम मौसम से बिंधे मन लिए घूमते हैं, आंखें ऋतु निहारती हैं और मन उसके मुताबिक शब्दों के मोती चुन गीत गुनगुनाने लगता है। जैसे ऋतु वैसा मन और वैसे ही गीत। लीजिए सुनिए फिल्म मंजिल, बताइए कौन है हीरो कौन है हीरोइन।

मंजिल फिल्म का गाना था और हमारे सभी श्रोताओं ने लिखा है मौसमी चटर्जी और अमिताभ बच्चन होते हैं। फिल्म मंजिल रिमझिम गिरे सावन मुंबई के बेहतरीन दृश्य में है। मरीन ड्राइव पर फिल्माया गया था ये गाना और बहुत ही सुंदर दृश्य है। मरीन ड्राइव से जो ऊंची ऊंची समंदर की लहरें आती हैं उसी में भीग रहे थे और इस समय तो बारिश के मौसम में वैसा ही नजारा है, बिल्कुल सड़कों तक पानी आ जाता है। लेकिन हाँ, खतरा भी होता है, इसलिए हम बार बार श्रोताओं से कहते हैं कि जो भी मुंबई में हैं या घूमने आते हैं, मरीन ड्राइव पर जाते हैं, तो जब ऊंची लहरें उठें और चेतावनी हो तो बहुत नज़दीक ना जाएं, समंदर के नज़दीक ना जाएं, वो खतरा बहुत ज़्यादा होता है। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, बारिश की हर एक बूंद दिल की सूखी ज़मीन पर प्यार का एहसास बनकर उतरती है। बारिश की रिमझिम में भी एक अलग ही सुकून छुपा होता है। भीगी हवाएं होती हैं, झूमते पेड़ और बरसती फुहारें। एक श्रोता ने लिखा है कि इबारत सावन की रिमझिम फुहारों के बीच जन्म लेने वाले उस प्रेम की कोमल अनुभूति है, जहां प्रकृति, संगीत और मन के भाव एकाकार हो जाते हैं। रिमझिम फुहारें जब धरती को भिगोती हैं, तब मन के सूने कोने में भी अनकहे भाव अंकुरित होने लगते हैं। ये उसी भीगे एहसास की कहानी है, जहां बादलों की गूंज, झूलों की मस्ती और मधुर तरानों की मिठास मिलकर प्रेम को एक शाश्वत स्वर देते हैं। जहां सावन की हर बूंद मानो प्रिय के स्पर्श का आभास कराती है और हर धड़कन एक ही नाम का संगीत बन जाती है। प्रेम का ये रंग ऐसा है, जो एक बार मन पर चढ़ जाए तो हर सावन उसी प्रिय की याद और प्रतीक्षा का उत्साह बन जाता है। तो बताइए, झूले के दौरान जब कभी आपने झूला झूला हो तो क्या प्रिय की याद आई है या प्रिय साथ में रहे हैं? कोई याद है तो जरूर साझा कीजिए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर ये झूले वाला ही गीत, बहु बेगम फिल्म, बताइए कौन है हीरोइन, गीतकार का नाम भी बताइए जरा। लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजें हैं। बूझिए हीरोइन का नाम और गीतकार का नाम। है बहु बेगम।

बहू बेगम फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजें थी। गीतकार का नाम नहीं बता सकते अभी क्योंकि आपकी ओर से जवाब नहीं आया है और हीरोइन का नाम पूछा था, वो भी अभी हमें नहीं मिला है। तो जब आप जवाब बताएंगे तब हम बताएंगे कि सही जवाब क्या था। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में झूलों का बड़ा शौक था, अभी भी झूला देखने पर तो एक बार जरूर ही बैठ जाते हैं। पींग ऊंचा उड़ाने में गिर गई और हाथ

जुड़ गया तब से थोड़ा डर लगता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि ओ निगाहें मस्ताना सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, इतना तो कह दो तुमसे ही प्यार है, मतलब गाने के बोल इन्होंने लिखे हैं जो हमने इबारत दी थी। और जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर नहीं है उन्हें बता दें कि हम इस प्रोग्राम में एक इबारत लिखते हैं और उस इबारत से श्रोता शब्द ढूंढकर गाने हमें सुझाते हैं, और हम भी पहले से गाने कुछ ढूंढ के रखते हैं और फिर उसी अनुरूप टिप्पणियां आती हैं और श्रोताओं की टिप्पणियां हम इसमें शामिल करते चलते हैं। तो आज की इबारत जरा एक बार हम दोहरा देते हैं जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े नहीं उनके लिए। रिमझिम बरसता सावन, सावन की एक शाम थी, बाहर रिमझिम सावन के फुहारें बरस रही थी और भीगी फिजाओं में कहीं दूर तराने गूंज रहे थे। सावन में पड़ते हैं झूले, झूले में पवन ने उड़ाया आंचल, घिरे थे बादल, दिल ने कहा घर आजा घिराए बदरा डैश डैश डैश। तभी निगाहें मस्ताना लिए वो परदेसी सामने आकर खड़ा हो गया, मेरी धड़कनें रुक सी गईं, लगा जैसे उसने पुकारा हो और मैं अनजाने में ही उसकी ओर खींची चली आई। उसी पल लगा जैसे परदेसी मेरा दिल ले गया, तब से हम उसके प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, लगी ऐसी लगन गहरी की ये नाता जन्म जन्म का बन गया, अब इतना तो कह दो कि तुमसे ही प्यार है, बस एक इकरार की खातिर मैंने बड़ी शिद्दत से रंग ली आज चुनरिया अपने प्रेम के गहरे रंगों में, हुस्न का वो सारा नूर आज आंखों में उतर आया है जो केवल उसी के लिए है। और अब देख रहे हैं कि हमारे श्रोता कौन सी टिप्पणी लेकर आए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत साल पहले हमारे गांव में गांव के बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ होता था जिसमें सावन के आते ही झूले पड़ जाते थे, औरतें झूलती और गीत गाती थीं। तो अब आगे बढ़े और अगला गीत सुनवाते हैं आपको, ये जरा बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम।

घर आ जा घिर आए। कभी आपने किसी के इंतजार में ये गाना गाया है? फिल्म थी छोटे नवाब। अगर गाया है तो जरूर बताइएगा। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और अब हमारे श्रोताओं की टिप्पणियों की तो बहुत तादाद है, लगभग यूँ कहें कि बाढ़ तो नकारात्मक हो जाता है, लेकिन हाँ बहुत लंबी तादाद में टिप्पणियाँ आ रही हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से हम पढ़ते जाएं। ज़रा संक्षेप में लिखिए तो ज़्यादा तादाद में टिप्पणी शामिल हो सके। एक श्रोता ने लिखा है कि मदमस्त मौसम की मादकता को मधुमेह बनाती इबारत है, हुस्न इश्क को ऊर्जा उत्सर्जित करती शीतल बयार, और रिमझिम फुहार मानो प्रकृति प्रदत्त प्रेमांजलि हो और प्रेमी युगल को आवाहन कर रहा हो। इस प्रेम रस में सराबोर हो, सर्वस्व लुटा प्रेम में हो जाओ, रिमझिम के तरानों के सुरीले सरगम सफर का इंतजार है। भाई इंतजार तो खत्म हो चुका है और अब ये सुरीला सफर जारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई आहा आज तो गजब के गाने हैं और हमने आपको देखा था मुंबई में बारिश में भीगते हुए। आप सब भी भीगते हैं बारिश में। आप अपनी यादें भी साझा करते चलिए और कोई ख़ास याद है, कोई ख़ास बात है तो ज़रूर बताइए। कौन सी वाली बारिश आपको याद आती है, बचपन वाली बारिश या बड़े हुए तब की बारिश? अब तो बारिश से डरते भी होंगे, भीग जाएंगे तो कहीं सर्दी ज़ुकाम हो जाएगा। बचपन में वो डर नहीं था, खौफ नहीं था, क्योंकि ये पता नहीं होता है कि बीमार होने के नुकसान क्या होते हैं। चलिए बहरहाल आगे बढ़ें। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीत तो इबारत में ही छुपे हुए हैं, फिर हम नहीं बताते, पर हाँ शब्द तो बता ही सकते हैं ना। तो सावन झूला, बदरा तराना, परदेसी दिल प्यार और नूर मस्ताना इकरार, और भी बहुत कुछ है। एक श्रोता ने लिखा है क्योंकि आज सुरीला सफ़र बेहद सुरीला होने वाला है, क्योंकि रिमझिम के तराने लेकर बरसात जो हो रही है और एक परदेसी आकर मेरा दिल ले गया है जिसके प्यार में हम सारा आलम खो बैठे। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यार भरा नमस्कार और गानों के बोल लिखे हैं, पड़ गए झूले सवन ऋतु आए रे, एक परदेसी मेरा दिल ले गया। दरअसल आज आपके गाने और हमारे गाने बहुत मैच हो रहे हैं तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो गाने हम आप सुनना चाहते हैं वो हम लेकर आए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये मौसम भीगा भीगा, हवा भी ज़्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल, तुमको पाने का इरादा है। और हम घर से छाता लेकर निकलते हैं तो बारिश नहीं होती और कभी कभी इतनी जोर से होती है कि छाता होकर भी भीगना पड़ता है और कई बार हवा के कारण छाता उल्टा भी हो जाता है। लेकिन भीगने में क्या मज़ा होता है ये तो आप बताएंगी, रेडियो सखी बताएंगी आज के सुरीला सफ़र प्रोग्राम में। वो तो भाई आप सभी बता रहे हैं ना, और हम तो आपकी बातें आप तक पहुँचा रहे हैं। और एक उन्होंने आगे लिखा है कि आज जाने माने अभिनेता राजकुमार का स्मृति दिन है। राजकुमार संवाद बोलने के उनके विशिष्ट ढंग से जाने जाते थे और जानी आज उनकी फिल्म के भी कुछ गीत शामिल हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं और पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं जिसके लिए हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। तो ज़रा आप बताइए कि कौन है।

0: हीरो हीरोइन शुरू में हम बता चुके हैं वैसे।
1: एक समा है सुहाना तीर दिल पे चला के।

0: सितना।
1: पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना था किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत था, देव आनंद और नूतन होते हैं इस फिल्म में, और बहुत सारे श्रोताओं ने दरअसल इस गाने का जिक्र किया था, इसलिए ये गाना यहाँ पर बिल्कुल प्रासंगिक था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने सुरीले सफ़र के शुरू में ही फिल्म जगत के ऐसे महाराजा को याद किया जिन्हें दुनिया राजकुमार के नाम से जानती है। सचमुच अद्भुत शख्सियत थी उनकी, गले में स्कार्फ, बात करने का रौबदार तरीका, सफ़ेद जूते पहनकर जब वो जानी कहते थे तो सिनेमा घरों में तालियां रुकने का नाम नहीं लेती थी। यूं तो उन्होंने कई यादगार किरदार निभाए हैं, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है उनकी फिल्म वक्त का राजा का किरदार। फिल्म में वो एक चोर थे लेकिन उनका रौब किसी महाराजा से कम नहीं था। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने राजकुमार जी से जुड़ी हुई लिखी हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस बात के लिए। एक श्रोता ने लिखा है, सावन के झूले सिर्फ झूला नहीं है, मन की उड़ान और भावनाओं का उत्सव है, आनंद है, और ये आनंद स्वयं के अकेले प्राप्त करने से नहीं दूसरों को देने से भी है, तभी आनंद की अनुभूति सार्थक है। सावन के आते ही हरियाली छाती है,

धरती को झुलसती गर्मी से राहत मिलती है। हवाओं में कोमल और रेशमी ठंडक के साथ मिट्टी की सौंधी महक घुलती जाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी टिप्पणी तो सिर्फ एक लाइन की है, तो शामिल नहीं हुई भाई, लेकिन आगे तो आपने कुछ लिखा ही नहीं, सिर्फ इतनी सी शिकायत लिखी तो कैसे शामिल हो सकती है। बहरहाल, एक श्रोता ने लिखा है कि इतने दिन से मौसम और बारिश के गीत बज रहे हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम हमारे शहर के मौसम से मैच हुआ है। शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप सभी का। सुनिए अब ये गीत और याद कीजिए अपनी कोई ख़ास बात। संगीतकार का नाम ज़रा बताइए और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई ख़ास बात भी बताइए। बारिश का मौसम और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई बात है बताइएगा ज़रा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। गीतकार कौन है ये भी बताइए। फिल्म है दुल्हन एक रात की,

हमने आपसे पूछा था कि कौन है संगीतकार और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई ख़ास बात है। बहुत सारे श्रोताओं ने, कुछ श्रोताओं ने जवाब सटीक दिया है। संगीतकार मदन मोहन, और ये जो जुलाई का भीगा मौसम है बार बार मदन मोहन की याद दिलाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो भीगे मौसम से हमारे मन से जुड़ जाते हैं। 14 जुलाई मदन मोहन साहब की याद का दिन है, उनका स्मृति दिवस है। कुछ श्रोताओं ने सही सही लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन के झूले केवल डालियों पर नहीं पड़ते, वे तो हर बरस हमारे मन में भी बचपन की मीठी यादों को फिर से झूला झुलाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं चेरापूंजी से लिख रहा हूँ, मेरा यहाँ पर उठना बैठना सोना जागना सब कुछ बरसात में ही होता है, और विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा मेरे साथ रहती है। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में नाजायज़ फिल्म का गीत सुनवाइए। एक श्रोता ने लिखा है, सावन के झूले सिर्फ झूले नहीं, मन की उड़ान और भावनाओं का उत्सव है, आनंद है, और ये आनंद स्वयं के अकेले प्राप्त करने से नहीं, दूसरों को

देने से भी है, तभी यह आनंद की अनुभूति सार्थक है। सावन के आते ही हरियाली छाती है, धरती को झुलसती गर्मी से राहत मिलती है। भाई अभी जो चेरापूंजी से जो श्रोता लिख रहे हैं कि विविध भारती सुन रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है ये जानकर कि उतनी दूर से विविध भारती से जुड़े हुए हैं। ज़रा वहाँ के कुछ आबोहवा के बारे में, वहाँ के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, और ये भी बताइए कि जब हमेशा बरसात होती है तो आपको एहसासात कैसा होता है, क्योंकि जब लगातार बारिश हो तो कई बार ऊब भी होती है एक ही मौसम से। जैसे मुंबई में भी तकरीबन 4-5 महीने बारिश होती रहती है, तो बारिश की शुरुआत तो बड़ी सुखद लगती है लेकिन धीरे धीरे ऊब सी होने लगती है। तो बहुत सारे इलाके हैं जहाँ घनघोर बरसात होती है, तो आप अपने बारिश से जुड़े हुए अनुभव साझा करते रहिए। और जो आप जिन श्रोता ने चेरापूंजी से लिखा, उनसे खास अनुरोध कि आप अपने अनुभव लिखिए। हाँ तो दोस्तों, हमने आपसे ये पूछा था कि संगीतकार का नाम मदन मोहन और फिल्म थी दुल्हन एक रात की, इसी फिल्म का गाना हमने अभी सुनवाया लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्दकार थे राजा मेहदी अली खां। और जब बात चलती है मदन मोहन की, तो लगता है कि जुलाई के इस महीने में उनकी याद का दिन है और जून में उनका जन्मदिन, तो फिर क्यों न एक गाना और हो जाए। तो मदन मोहन साहब के नाम ये गाना, और ज़रा फिल्म का नाम आप बूझिए, क्या है फिल्म का नाम।

मेरे मित्र उनके पिताजी दोनों अपने बेटों के साथ जा रहे थे कार से, और जब लौटे तो एक नदी थी जो भर आई थी, जिसकी वजह से गांव के उस पार जाना मुश्किल था। कुछ इन्होंने अलग भाषा में लिखी है जिसको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अगर गलत हो तो भाई माफ़ कीजिएगा। आगे इन्होंने लिखा है कि हम गांव तो चले गए, खाना खाकर लौटे, सड़क पर पानी भर गया था। ये बारिश धीमे धीमे बरस रही थी लेकिन पानी उतर नहीं रहा था, मतलब पानी ज़्यादा हो गया था। तब तक तो पूरी रात रोड पर ही बितानी पड़ी थी। एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश और पानी की बातें हैं, मुझे दो बूंद पानी फिल्म का शीर्षक गीत याद आ रहा है, राजस्थान का खाली नहर, और बारिश होने पर नहर भरे, वहाँ के लोगों को जीवन मिले। अब सुनते हैं सारंगा फिल्म का ये गाना, ज़रा आपको बताना है गीतकार और संगीतकार का नाम, देखते हैं कौन श्रोता सही जवाब दे पाते हैं, गीतकार संगीतकार, फिल्म सारंगा, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें हैं।

सारंगा फिल्म का ये गाना था। लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ें, गीतकार भरत व्यास, संगीतकार सरदार मलिक। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में 2 महीने की छुट्टियों के बाद जुलाई के पहले हफ्ते में स्कूल खुलते थे और एक परदेसी सामने आकर खड़ा हो जाता था। वो परदेसी कोई और नहीं था बल्कि एक रिक्शा वाला था जो स्कूल ले जाने के लिए किसी यमराज से कम नहीं लगता था। भाई अगर स्कूल नहीं गए होते, पढ़ाई नहीं की होती तो आज क्या होते, ये याद कीजिए। और बचपन का संसार बड़ा अलग ही होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। बहरहाल अब तो बहुत ही कम वक्त है कि हम आपसे कहें कि यादें साझा कीजिए। बस प्रोग्राम का आखिरी गीत है जिससे पहले हम ये टिप्पणी पढ़कर सुना दें। एक श्रोता ने लिखा है कि बादल मेरे शहर में है, बारिश होगी कि नहीं कह नहीं सकती, पर आज मुझे खुशी है कि सब्जेक्ट के रूप में मैं पास हो रही हूँ, जवाब दे रही हूँ सही। और एक श्रोता ने, मैंने रंगली आज चुनरिया

के प्रेम के समर्पण की बात की है कि मन के उल्लास का बेहद मधुर गीत है, और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज मेरे सुझाए चार गाने शामिल हुए, कुछ ने लिखा है कि तीन गाने शामिल हुए, किसी ने लिखा है मेरे छः गाने मेरी पसंद के शामिल हुए। बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लग रहा जानकर। सुनिए, एक श्रोता ने इस गाने का भी जिक्र किया है, और आप सब में से कितने लोगों ने सोचा था ये गाना बजेगा अभी। फिल्म है फागुन। कोई सवाल नहीं है, आप चाहें जो जानकारी दे सकते हैं। कमर जलालाबादी के बोल, आशा भोसले, मोहम्मद रफी की आवाजें, प्रोग्राम का आखिरी गाना।

फागुन फिल्म का गाना था और बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि हमने सुझाया था ये गाना, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी पसंद और हमारी पसंद एक हो गई। और एक श्रोता ने जानकारी दी, एक या कई श्रोताओं ने, कि फिल्म फागुन मधुबाला और भारत भूषण संगीतकार ओपी नैयर, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें, कमर जलालाबादी के बोल। अब प्रोग्राम का सफ़र आज बस इतना ही। प्रोग्राम का सफ़र आपने पूरा किया अपने रेडियो से ममता सिंह के साथ।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम।
1: गीत लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में लीजिए सुनिए फिल्म त्रिशूल का गीत। गीत साहिर का है और संगीत है खयाम का।

जूली। इस फिल्म का गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज में। गीत आनंद बख्शी का है और इसे संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: rivers have risen.
1: शिवपुरी में 5 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य 2500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे। लिए प्रदेश के ऊर्जा और जिला प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कल कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद प्रभारी मंत्री ने शहर भ्रमण कर नागरिकों को पीले चावल भेंट करते हुए इस कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया। पन्ना टाइगर रिजर्व के धुंधुआ सेहा क्षेत्र में बाघिन P652 ने 2 शावकों को जन्म दिया है। टाइगर रिजर्व के उप संचालक वीरेंद्र पटेल ने बताया कि दोनों शावकों की उम्र लगभग 10 दिन है और मां व शावक पूरी तरह स्वस्थ है। वन विभाग की विशेष टीम 24 घंटे उनकी निगरानी कर रही है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मानसून कल उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज खंडवा और हरदा के लिए मानसून सीजन का पहला रेड अलर्ट जारी किया है, जहां अगले 24 घंटों में

4 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है। वहीं धार, बड़वानी, खरगोन, देवास, बुरहानपुर और बैतूल में भी अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के जनजाति संग्रहालय में आज से भील चित्रकार सुनीता परमार के चित्रों की शलाका प्रदर्शनी शुरू हुई। शिवपुरी के नरवर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 6 स्थानों से 400 ट्रॉली अवैध रेत जब्त की गई। बुरहानपुर के निर्माण रेंज के डीआईजी ने अपराध समीक्षा की बैठक ली और महिला अपराधों तथा साइबर क्राइम पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। पन्ना जिले के अजगर थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 मासूम बच्चों सहित एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से झुलस गई हैं। और भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। बोलो
1: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
2: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
1: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेशवाक शाह।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया।

0: दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीषा।
1: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कैराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो जबरदस्त भूकंप आए जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कैराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और यह सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
2: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
1: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट

0: तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
1: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुड़ी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
2: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

पाकीज़ा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। कैफ भोपाली के बोल थे, गुलाम मोहम्मद का संगीत था। आइए अब सुनते हैं काजल फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। साहिर लुधियानवी के बोल हैं, रवि का संगीत।

0: की बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: ऊंचे लोग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार चित्रगुप्त।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: हमराज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में। रचना थी साहिल लुधियानवी की, संगीतकार थे रवि। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई गांवों में खिली गलियां,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। ये प्रोग्राम का आखिरी गाना है, फिल्म है नूर महल, सुमन कल्याणपुर की आवाज, सबा अफगानी के बोल हैं, जानी बाबू कव्वाल का संगीत है।

नूर महल फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: अनुभव किए सुख के वास्तविक आनंद को समझा ही नहीं जा सकता। तपती धूप में चलने के बाद ही पेड़ की ठंडी छांव का असली सुख मिलता है। उसी तरह जीवन की कठिनाइयों और दुख से गुजरने के बाद जब सुख का आगमन होता है तो उसका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। सुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन का आनंद लेना सिखाता है, जबकि दुख एक मार्गदर्शक है जो हमें भीतर से मजबूत और समझदार बनाता है। तो सुख और दुख की लहरें लिए उसमें गोता खाते हुए आज अपनी सहेलियों से इन्हीं यादों इन्हीं बातों को साझा करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, तो देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, कैसे हैं आप?
0: हम बिल्कुल ठीक हैं। और बताइए आज किस सखी से बात हो रही है हमारी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम है हर्षा खन्ना। वैसे मैं बॉम्बे से हूँ, आजकल मैं अजमेर आई हूँ अपने ससुराल, और मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरा फोन लगा है आपको।
0: क्या बात है, तो बताइए हर्षा जी क्या करती हैं आप?
1: देखिए वैसे तो मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैं ट्यूटर भी हूँ
0: जी।
1: मैं कविताएं लिखती हूँ और मैं ट्रांसलेटर भी हूँ। मैं इंग्लिश हिंदी मराठी में ट्रांसलेशन करती हूँ
0: जी। ये तो एक बिल्कुल अलग तरीके का काम हो गया। ये उन्हीं के लिए संभव है जो ये दो तीन भाषाओं को बहुत अच्छे से लिख पढ़ सकता है ना?
1: जी जी।
0: तो ये किस तरह से आपने ये सोचा कि मैं ये काम भी कर सकती हूँ, मुझे ये काम करना चाहिए?
1: मुझे ना वैसे भी शब्दों से बहुत प्यार है, और आपको पता है जो हमारा भारत है वो एक बहुत सारी भाषाओं का देश है
0: जी।
1: तो जैसे मैं खुद दिल्ली से हूँ, मेरी शादी जिनसे हुई है वो राजस्थान से है, बॉम्बे में रही हूँ, गुजरात के पास है, तो मैं काफी सारी भाषाएं बोलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है।
0: जी जी।
1: इसी तरह से मुझे किसी ने एक बार कहा था कि प्लीज सर मुझे कुछ ट्रांसलेशन चाहिए, तो इंग्लिश हिंदी करते करते मैंने मराठी भी शुरू किया
0: जी।
1: तो मराठी टू हिंदी इंग्लिश भी करती हूँ मैं
0: जी। रेडियो सुनना पसंद करती हैं आप?
1: रेडियो ने तो मतलब बचपन से लेकर अब तक हमें वो रखा है कनेक्टेड सारी दुनिया से, खुशी में भी दुख में भी यही याद आता है।
0: बिल्कुल, और यही सवाल भी मैं आपको करना चाह रही थी कि सुख और दुख को आप कैसे देखती हैं?
1: देखिए अगर फिलोसॉफिकल उससे कहा जाए तो सुख और दुख जो है वो रात और दिन की तरह है, एक के बाद दूसरा आता ही है, और आपके नजरिए पे भी डिपेंड करता है आपका नजरिया क्या है। आप महलों में भी दुखी हो सकते हैं और झोपड़े में भी सुखी हो सकते हैं।
0: ये तो बहुत सटीक बात की आपने, और हर वक्त जो भी परिस्थिति सामने आए तो उसको खुशी खुशी अपनाना चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: और एक पॉजिटिव नजरिया रखते हुए हर्षा जी बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे? हमें बेहद खुशी है आपसे बात करके।
1: मुझे ना फिल्म खिलौना का एक गीत जो है सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए
0: जी,
1: वो मैं सुनना चाहूंगी।
0: जी जी, तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: आलिया भानो बोल रही हूँ, गुजरात से। हाँ,
0: आलिया बानो गुजरात से। जी आलिया बानो, कैसी हैं आप?
1: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी है? टंकी
0: बिल्कुल अच्छे हैं। और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों?
1: नवाते पड़ती हूँ और घर पर ही रहती हूँ, और घर के जो काम होते हैं ना छोटे मोटे वो सब करवा देती हूँ।
0: तो कभी ऐसे बाहर जाना होता है कहीं घूमने फिरने, आप परिवार के साथ भी जाती हैं?
1: हाँ, जाती हूँ ना परिवार के साथ ही।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात
1: हाँ
0: है।
1: लेकिन, हाँ लेकिन मेरा हाथ पकड़ना पड़ता है,
0: हाँ वो
1: मुझे
0: तो है।
1: दिखाई नहीं देता है ना।
0: जी, ये तो सहयोग
1: हाँ
0: परिवार का मिलता ही होगा आपको। और ये
1: हाँ मेरी
0: मुझे
1: अम्मी,
0: जी
1: मेरी अम्मी है, मेरी दीदी है, मेरी दीदी है ना, तो मेरी अम्मी वो मेरा बहुत साथ देती है, मेरा हाथ पकड़ती है मुझे सबसे काल, मतलब घर में तो मैं खुद ही चल लेती हूँ, मुझे वॉशरूम मालूम है, सब मालूम है, कहाँ
0: जी
1: जाना है, कैसे जाना है, मैं घर का तो सब जानती हूँ, लेकिन बाहर कहीं जाना होता है ना तो मुझे ये लोग हेल्प कर देते हैं।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। तो जब आप घर में चलना फिरना कुछ काम करना होता है तो आप कैसे अंदाजा लगाती हैं, यानी कि आप कदम गिन लेती हैं, या आपको एक रोजमर्रा में आपको एक अंदाज हो गया है कि भाई बाईं तरफ ये है दाईं तरफ ये है, किस तरह से कर पाती हैं आप?
1: नहीं, मुझे तो रोजमर्रा की जिंदगी में जो मैं रहती हूँ ना, तो मुझे अंदाजा हो गया है कि किस तरफ क्या है,
0: जी
1: मतलब आना जाना होता है ना मेरा। अभी जैसे कि मैं आपसे जो बात कर रही हूँ ना,
0: जी
1: ऊपर वाले फ्लैट में कर रही हूँ,
0: अच्छा।
1: हमारा एक माले का घर है ना, वहां कर रही हूँ, तो
0: जी
1: मैं
0: जी
1: नीचे से यहाँ भी आ जाती हूँ। चल
0: अच्छा, मतलब आप पहली
1: चल,
0: मंजिल नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और ऊपर ऊपर की मंजिल अपने आप कर पाती
1: हाँ
0: हैं ये सब?
1: अब थोड़ा आप कर लेती हूँ, एक बार मुझे अगर अंदाजा हो जाए ना कि किस तरह जाना है, किस तरफ जाना है, किस तरफ आना है, तो मैं अपना आप ही सब कर लेती हूँ।
0: बहुत सुंदर बात है। मुझे ये बताइए आलिया जी कि सुख और दुख जीवन में तो सबके आते हैं, है ना? कठिनाइयां भी आती हैं, गम भी आते हैं, खुशियां भी आती हैं, आप इसको किस
1: बहुत
0: तरह
1: खुश,
0: से लेती हैं?
1: मैं तो बहुत खुश रहती हूँ। वैसे तो ऊपर वाले ने मेरी आंखें छीन ली है मैडम, मुझे बहुत बुरा लगता है कभी कभी, पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि जिस हाल में खुदा रखे है उस हाल में ही रह लेना चाहिए। मैं ऊपर वाले से शिकवा भी करूंगी तो क्या हासिल होगा मुझे शिकवा करके भी। हाँ
0: जी
1: लेकिन ऊपर वाले से मैं दुआ जरूर मांगती हूँ, कभी कभी मुझे रोना भी आ जाता है ईद त्योहार पर, जब सब लड़कियां बॉयफ्रेंडों के साथ सहेलियों के साथ घूमती है तो मुझे रोना भी आ जाता है कि मेरे साथ
0: जी
1: ही क्या हो रहा है, लेकिन
0: जी
1: फिर मैं अपने आंख में आंसू नहीं आने देती, ऊपर
0: देखिए
1: वाले से शिकवा नहीं करती, मैं ऐसा सोचती हूँ कि ऊपर वाला जिस हाल में रखे उस हाल में ही ले
0: जी
1: लेना
0: जी
1: चाहिए।
0: तो ये देखिए कितनी हिम्मत की बात है कि आपके पास आंखें नहीं है
1: हाँ
0: फिर भी हमेशा खुश रहने की कोशिश

0: करती हैं। आपकी बातें सुन के
1: हाँ
0: हमें बहुत अच्छा लगा और हमें उम्मीद है कि हमारी सारी सखियां जो सुन रही होगी ये कार्यक्रम, अगर जिंदगी में छोटी मोटी कठिनाइयां आएंगी तो अब शिकायत तो नहीं करेंगी। लेकिन हम आलिया जी आज जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं।
1: मैडम, बारिश का मौसम आया है तो मुझे बारिश का गाना सुना दीजिए, अंदाज फिल्म का।
0: अंदाज फिल्म का
1: है ना?
0: जी
1: हाँ, आएगा मजा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का।
0: बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ पहुंचे आपके पास कॉल का इंतजार करते हुए कार्यक्रम हेलो सहेली में। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं अमिता बोल रही हूँ, मतलब मेरा कॉल लग गया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है।
0: जी हाँ अमिता जी, आपका कॉल लग गया है।
1: जी
0: तो बताइए कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मैं पटना से बात कर रही हूँ।
0: पटना से आप क्या करती हैं, कैसी हैं, क्या जीवन में क्या करती हैं, गृहिणी हैं या कुछ और काम करती हैं?
1: मैं एक लेखिका हूँ,
0: क्या
1: एक
0: बात
1: शायरा
0: है
1: हूँ
0: जी।
1: जी, एक कवित्री हूँ।

0: मेरी किताब भी है लहरी कशिश, मेरा पेन नेम है लहरी,
1: पेन नेम है आपका लहरे
0: लहरे, और मेरी किताब जो प्रकाशित हुई है उसका नाम है लहरी कशिश।
1: ये बताइए कि किस तरह से शुरुआत हुई आपकी लिखने की?
0: मैं जब 5-6 स्टैंडर्ड में थी तो मुझे कविता पढ़ने का बहुत शौक था और मैं लिखती भी थी
1: जी,
0: थोड़ा बहुत लिखती थी। शुरू में चिड़िया पे, कौवे पे, सब पे लिखती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, बढ़ती गई, तो थोड़ी और ज्यादा कविता में, शायरी में रुझान आता गया। फिर कुछ शायरों को पढ़ा और फिर धीरे धीरे फिर मेरी डायरी, मेरी कलम और मैं, तीनों शुरू हो गए, साथ बैठ गए। मगर आजकल ये मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सब कुछ है, तो फिर एक दो कविताएं मैंने डाली तो लोगों को पसंद आने लगी, तो फिर मैं और लिखने लगी, कविताएं भी लिखना चालू की मैंने, शायरी भी, फिर प्रोग्राम में भी जाना चालू किया, होस्टिंग भी करना चालू किया।
1: अरे वाह, तो आपकी रचना तो हम जरूर सुनेंगे। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सुख और दुख, इसे आप किस तरह से लेती हैं जीवन में?
0: देखिए दीपा जी, जैसे हम शुरू से स्कूल में तब हमें पढ़ाया जाता था, तब हम रटते थे सिर्फ सुख और दुख सिक्के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं
1: जी।
0: लेकिन अब जब उसे अनुभव में मैं लेती हूँ तो मैं ये मानती हूँ कि दुख एक ऐसी सीढ़ी है ना जो हमें अंदर से बहुत मजबूत बनाती है, संवेदनशील बनाती है, और जब हम इस सीढ़ी को पार कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा एक नया जन्म होता है। मैं कहना चाहूंगी कि दुख जो है ना वो अध्याय जो इंसान को एक नया जन्म देता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब आपसे हम एक आपकी रचना भी सुनना चाहेंगे।
0: अब जैसे कि आप मुंबई से हैं और मुंबई की तीन चीजें बहुत फेमस हैं,
1: तो बताइए वो क्या क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि मुंबई की प्रसिद्ध हैं?
0: जी, मुंबई की लहरें, मुंबई का वड़ा पाव और मुंबई की बारिश।
1: ये बात
0: क्या मैं सही बोल रही हूँ?
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: तो
1: जी,
0: क्या मैं आपकी मुंबई की बारिश पर कुछ सुना सकती हूँ?
1: बिल्कुल।
0: और उसके बाद आप कुछ बूंदे यहाँ भी भेज दीजिए हमारे पटना में।
1: हम तो चाहते हैं हर तरफ बारिश और ये रिमझिम फुहारे हो, पटना में भी बिल्कुल बहुत जल्द आ जाएगी, लेकिन तब तक आपकी रचना को आप विविध भारती की स्टूडियो तक पहुंचाइए।
0: जी बिल्कुल। मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी एक बारिश है।
1: जी,
0: जिंदगी एक बारिश है, झूम कर इसे प्यार कर, मुट्ठी में क्या कैद करेगा, बस बूंद बूंद का एहसास कर। महज तू ही नहीं गिरफ्त गमों से, महज तू ही नहीं गिरफ्त गमों से, हर दिन को यूं दुश्वार न कर, मुकम्मल होंगे तेरे भी ख्वाब, इतना तू इस पे एतबार कर। क्यों दूर से ही तू तक रहा, क्यों दूर से ही तू तक रहा, हाँ छुपे हैं लहरों में कई भंवर, पर साहिल तू है, किनारा भी तुझ में, अपनी मौजों से बस तू प्यार कर। नींद ही तो टूटती है हरदम, नींद ही तो टूटती है हरदम, ख्वाबों से प्यार बेशुमार कर, लफ्ज बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, लफ्ज बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, थम थम के चल पर और इंतजार न कर, पर और इंतजार न कर।
1: बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही प्यारा। हमें उम्मीद है कि जितनी भी हमारी सखियां सुन रही हैं उन्हें भी ये आपकी रचना बेहद पसंद आई होगी, हमें भी बहुत अच्छी लगी, और एक प्रेरणा भी मिल रही है कि हाँ ये लहरें कभी सुख की आती हैं, कभी दुख की आती है। और अब बताइए अमिता जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: एक पुरानी फिल्म है छोटी सी बात, उसका ये गाना है, न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, ये वाला गाना सुनना चाहूंगी।
1: ये सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम सुनीता अशोकराव देशमुख है। मैं अमरावती जिले से बात कर रही हूँ।
0: अमरावती से सुनीता जी, बताइए सुनीता जी, क्या करती हैं आप?
1: मैं मैम खाना बनाने का काम करती हूँ।
0: अच्छा, यानी टिफिन
1: घर में,
0: सर्विस।
1: हाँ घर में खाना बनाने को जाती। मैं रोटी बनाती सिर्फ, 4-5 घर के खाना बनाती दिन में, फिर बाद में दोपहर में आने के बाद में सिलाई काम करती।
0: अच्छा, यानी आप घर में जाती हैं, दूसरों के घर जाती हैं और वहाँ पे
1: हाँ,
0: जाके।
1: दूसरे के घर जाकर रोटी बेल के आती, फिर
0: अच्छा,
1: बाद में घर का सिलाई काम करती, घर के काम।
0: यानी कि घर में जो लोग व्यस्त हैं वो नहीं अपना समय उतना दे पाते हैं, तो आप ये मदद कर
1: हाँ,
0: देती हैं कि
1: सब
0: आप
1: जॉब करने
0: जाकर।
1: वाले हैं ना यहाँ पे,
0: जी
1: टीचर
0: जी
1: है तो टीचर क्या ही, सब काम करती मैं।
0: जी और घर पे आकर के भी आप आराम नहीं करती हैं, आप फिर से बिजी हो
1: नहीं
0: जाती हैं।
1: रुके,
0: जी
1: हाँ बिजी है, पूरा शेड्यूल बिजी है।
0: तो व्यस्त रहना अच्छा रहता है ना। और हमें ये भी बताइए कि दुख और सुख, ये इन दोनों चीजों को आप जीवन में कैसे देखती हैं?
1: मेरे पीछे तो दुख ही दुख है मैडम। अभी कैसा, मेरा भाई और मैं दोनों ही रहते हैं, ज्यादा नहीं टेंशन लेते हम काम का, थोड़ा वो जितना अपने को है, जितने लगते अपने को रोजी
0: जी
1: उतनी कमाते, बस ज्यादा करके भी अपने तबीयत देखने वाला कोई नहीं है ना पीछे। मेरा भाई और मैं, हम दोनों ही रहते हैं, माँ पिताजी नहीं है, मेरे घर वाले गुजर गए। हाँ तो भाई की ही रहती मैं।
0: तो देखिए, कठिन से कठिन परिस्थितियां सामने आती हैं, फिर भी आप बिल्कुल खुशी के साथ और
1: खुशी
0: सकारात्मक
1: के साथ
0: सोच रख
1: गुजारते
0: के
1: हैं।
0: आप आगे बढ़ रही हैं, अपने आप को व्यस्त रखती हैं और खुश रहती हैं, दूसरों की भी मदद करती
1: मैम,
0: हैं।
1: मैं मेरी सहेली के नाम लेती।
0: जी ले लीजिए।
1: हाँ, बबीता ठाकुर और एक शहनाज शेख है।
0: जी, उन्हें भी हम नमस्कार करते हैं और चाहेंगे कि अगली बार वो भी हमें कॉल करें। अब बताइए सुनीता जी कि आप कौन
1: हाँ
0: सा
1: हाँ
0: गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैंने साउथर्न फिल्म का कौन सा भी गीत सुना मैम।
0: चलिए तो सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: अंतराल हुआ खत्म, तो जानते हैं अब किस सखी का लगने वाला है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं गुजरात बड़ौदा से सुहाना बात कर रही हूँ मैडम।
0: सुहाना, क्या बात है, गुजरात से अभी एक और कॉल आया था। आप बताइए क्या चल रहा है जीवन में, कैसी हैं आप?
1: जी मैडम, अभी तो जीवन में सब ठीक ठाक है। बरसात आता है नहीं आता है, बरसात नहीं आ रहा है अभी, गर्मी बहुत है।
0: सुहाना जी देखिए, प्रकृति का नियम है, इतनी गर्मी हमने सही है ना, तो बरसात तो अवश्य आएगी, है ना?
1: मुझे बहुत पसंद है लेडी, और मुझे आपसे बात करने की भी बहुत खुशी लग रही है मैडम। पहली बार बात कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैडम।
0: जी हम आपकी खुशी
1: बयां
0: को,
1: नहीं कर सकती
0: जी आपकी खुशी को हम बिल्कुल समझ रहे हैं, और हमें भी उतनी ही खुशी है जितनी सुहाना आपको खुशी है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैडम, आपके पसंद का कोई भी गीत सुना दीजिए।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं सुशीला महेश्वरी बोल रही हूँ भोपाल से।
0: सुशीला महेश्वरी भोपाल से?
1: जी
0: जी सुशीला जी, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल अच्छे हैं, और आपसे बात हो पाई है तो और अच्छे हो गए हम। अपने बारे में कुछ बताइए सुशीला जी।
1: हाँ मैं घर में रहती हूँ, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ।
0: तो विविध भारती के कार्यक्रम पसंद हैं आपको?
1: हाँ जी, और आप लोग की सबकी आवाजें बहुत अच्छी लगती है मुझे।
0: जी, विविध भारती से ये प्रेम ही है कि आप और हम जुड़े हुए हैं।
1: सबसे
0: और
1: पहला प्यार विविध भारती हमारे लिए, बचपन से सुनते आ रहे हैं और अभी तक सुन रहे हैं।
0: जी तो बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे प्यार से शुरू तेरे प्यार से खत्म,
0: जी
1: ये वाला गाना सुनना है मुझे।
0: जी बहुत सुंदर गीत है, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते, किस सहेली से हमारी बात हो रही है?
1: मैं अंजू बोल रही हूँ, वाराणसी से।
0: वाराणसी से अंजू जी। अंजू जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: वैसे मैं जयपुर की रहने वाली हूँ, शहर मेरा जयपुर है, शादी मेरी बनारस हुई है
0: जी।
1: बनारस में हूँ और एक तरह से गृहिणी
0: हूँ। तो देखिए ना, गृहिणी का काम भी कोई कम नहीं होता। सब तो अपने काम को लेकर के घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन पीछे घर को संभालना, घर को देखना, हर चीज की व्यवस्था करना, ये गृहिणी का काम होता है। अब ये भी बताइए मुझे अंजू जी, रेडियो सुनना पसंद है? आप विविध भारती सुनती हैं?
1: हाँ बिल्कुल, विविध भारती ही सुनती हूँ ज्यादा।
0: एक मुझे बात बताइए, सुख और दुख, इसको आप किस तरह से लेती हैं?
1: सुख और दुख तो आना जाना लगा ही रहता है हर की जिंदगी में, लेकिन हाँ मैं एक पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ कि हाँ जब दुख आया तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा, ये पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ
0: जी
1: जिंदगी
0: जी। तो ये बात हम सबको समझने की और सीखने की है कि भाई अगर एक चीज आई है तो दूसरा भी आएगा, यानी कि दुख अगर आया है तो सुख भी आएगा, है ना जी। और अब जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनना चाहती है आज?
1: मैं दिल एक मंदिर का गाना है, हम तेरे प्यार में सारा आलम को भेजे।
0: चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, कौन सी सहेली से हमारी बात हो रही है आज?
1: वैष्णवी पांडुरंग मोरे।
0: कहाँ से बात कर रही हैं वैष्णवी आप?
1: वारंगा फाटा, जिला हिंगोली।
0: वारंगा फाटा से। तो बताइए वैष्णवी, क्या करती हैं आप?
1: मैं पढ़ती हूँ।
0: वैष्णवी, आपने अभी कौन सी कक्षा की एग्जाम दी? सेवेंथ की।
1: हाँ।
0: कैसी हुई परीक्षा आपकी?
1: बहुत अच्छी हुई।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। आपने जितने कॉन्फिडेंस से ये बोला ना, बहुत अच्छी थी। मतलब कि सारे पेपर्स आपने बहुत अच्छे से लिखे हैं, है ना? तो रेडियो
1: हाँ
0: सुनती हैं आप?
1: हाँ सुनती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। और पढ़ाई के अलावा मतलब रेडियो भी सुनती हैं? और क्या करती हैं,
1: हाँ,
0: क्या क्या शौक है आपके?
1: गाने गाने का भी शौक है, खेलने का भी शौक है।
0: कौन सा खेल पसंद करते हो आप?
1: खो खो।
0: खो खो खेलते हो? तो और भी आपकी सखियां होती होंगी जिनके साथ आप खेलती होंगी खो खो, है ना?
1: हाँ।
0: फिर घर आकर के शाम को अपना होमवर्क खत्म करना, पढ़ाई करना, ये सब चलता होगा।
1: हाँ।
0: तो वैष्णवी बताओ, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हो आप?
1: छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी।
0: तो चलिए सुनते हैं अनाड़ी फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत।

0: बात हो रही है हमारी?
1: विजया रानी से।
0: कहाँ से बात कर रही हैं विजया जी?
1: अभी तो मैं हैदराबाद में हूँ, लेकिन रहती हूँ मैं पूर्णिया बिहार में, बेटे के पास आई हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। तो विजया जी अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी में एचओडी के पोस्ट पर मैंने काम किया है। अब मैं 5 साल पहले, आज अब 5 साल पूरा हो जाएगा मेरा, मैं रिटायर हो चुकी हूँ, दर्शन शास्त्र की अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर आप रही हैं?
1: हाँ, और मैंने 42 वर्षों तक महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी की सेवा की है, बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों के साथ रही हूँ।
0: तो विजया जी मैं ये जानना चाहूंगी, आपने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया होगा, आपने बहुत सारे अनुभव उस वक्त लिए होंगे, तो आपका क्या अनुभव रहा उस वक्त जब आप पढ़ाया करती थी, जब आप कार्यरत थी?
1: तो मेरा अनुभव ये रहा कि मैंने सिर्फ विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट नहीं समझा, उनको मैंने अपनी बेटी की तरह पढ़ाया, जितने बच्चे आते गए सबको, और मैं उनसे हृदय से जुड़ जाती थी। ये मेरी कमजोरी कहिए या जो कहिए
0: जी, ये तो कमजोरी हो नहीं सकती, ये तो ताकत है एक टीचर
1: और
0: की।
1: इतना उनको शिक्षा देने के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ मैं उनका पर्सनल प्रॉब्लम भी सुनती थी,
0: क्योंकि आप टीचर,
1: और उनका जो सॉल्व कर सकती थी मैं कोशिश करती थी उसके प्रॉब्लम को सुनूं और उसको उस तरह से मुक्त रखूं जो उनके दिमाग में चल रही है बातें, घर को लेके, अपने माता पिता को लेके, ताकि उसका पढ़ने में मन लग सके, वो अपने आप को कंसंट्रेट कर सके पढ़ाई। हाँ, ये हुआ मेरे साथ। मैंने बच्चों को समय भी दिया, सिर्फ पढ़ाया नहीं
0: जी,
1: और मुझे इसका संतोष है कहीं ना कहीं।
0: बहुत अच्छी बात है, संतोष ही परम धन कहिए या सुख कहिए। साथ में मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप दर्शन शास्त्र की शिक्षिका हैं, तो सुख और दुख को आप किस तरह लेती हैं?
1: तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग ज्यादातर संवेदनाओं के स्तर पर जीते हैं
0: जी,
1: खुशियों के क्षण में भी हम अपना आपा खो देते हैं और दुखों के पल हमें छिन्न भिन्न कर डालते हैं
0: जी,
1: इतना तोड़ डालते हैं कि ताउम्र हम उसके आघात से उबर नहीं पाते
0: जी।
1: सुखों के क्षणों को तो हम भुला देते हैं लेकिन दुख हमारी अंतरात्मा तक झकझोर जाता है
0: जी।
1: अब यहाँ पर मैं रुक कर सोचती हूँ कि सुख दुख के झंझावातों में हम खुद को कैसे नियंत्रित रख सकें।
0: जी, यही हम जानना चाहते हैं और हमारे सखियां भी अवश्य जानना चाहती होंगी कि जब अति कठिन परिस्थितियां आए या बहुत ज्यादा खुशी के पल आ जाएं, तो अपने आप को एक बैलेंस बना के कैसे रखें, और जो आप बताना चाह रही है ना कि नियंत्रण कैसे करें, वो भी बताइए।
1: हाँ, नहीं ठीक है। तो मेरा मानना है हम लोग सब स्थित प्रज्ञ तो नहीं हो सकते ना, लेकिन हमारा अनुभव कहता है कि न सुख शाश्वत है और न दुख
0: जी।
1: थोड़ा सा हम तटस्थता का अभ्यास करें, न्यूट्रलिटी का, पर न्यूट्रल हो जाएगा कुछ क्षण के लिए, और यह समझ लें कि सुख और दुख हमेशा नहीं रहेंगे। आज दुखों की घड़ी आई है तो कल सुख भी हमारे द्वार पर आएगा
0: जी, यानी ये पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना चाहिए।
1: अपनाना होगा, और जीवन तो निर्झर की तरह बहता ही चला जाएगा और सुख दुख तो उसकी हिलोरे हैं
0: जी। बिल्कुल सही, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में सुख और दुख की परिभाषा समझाने की कोशिश की है विजया जी। तो विजया जी बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज आप?
1: ममता फिल्म का, रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके गली बनके सभा बागे वफा में।
0: तो चलिए सुनते हैं ये आप ही की पसंद का सुंदर गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: किससे बात हो रही है हमारी?
1: शांति राजपूत से जी।
0: कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: जबलपुर।
0: जी शांति जी, बताइए कैसी हैं आप?
1: ठीक है जी मैम, आप कैसी हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। और क्या चल रहा है इन दिनों, क्या कर रही हैं आप?
1: बस नहीं मैम, घर में रहते हैं, घर ही का काम, खाना पीना, घर हाउस वाइफ से घर ही रहते हैं, कुछ
0: जी।
1: नहीं। हाँ
0: हमारी कई सखियां कहती हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं, हाउस वाइफ हैं, लेकिन हाउस वाइफ का भी काम बहुत अहमियत वाला होता है। हर काम, हर चीज़ आपको देखना होता है, हमें देखना होता है ना जी। घर के काम के अलावा और क्या करना पसंद है आप?
1: और मैं जब विविध भारती के रात में भी सुनती हूँ, 12-1 बजे लोग सब कार्यक्रम, दोपहर में भी सुनती, सुबह भी सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे को।
0: यानी कि घर के काम करते करते आपका रेडियो चलता
1: हाँ
0: रहता है।
1: मैं, हाँ मैं चालू कर लेती हूँ मोबाइल से और सुनती रहती, काम भी करती रहती
0: हाँ,
1: हूँ।
0: तो मन प्रसन्न रहता है और काम भी होता रहता है ना
1: हाँ जी।
0: जी। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, निकाह पिक्चर का
0: चलिए सुनते
1: जी।
0: हैं आपकी पसंद
1: हाँ
0: का ये गीत।

0: हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। सखियों, आज हमने जाना जीवन के दो पहलुओं के बारे में, यानी सुख और दुख के बारे में। कई सारे जज्बात यहाँ पे साझा हुए, कुछ हुई मन की बातें, आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबान। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02240024662, अंग्रेजी में 02240024662। एक और नंबर है 02228670288, अंग्रेजी में 02228670288, 022 मुंबई का STD कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं उनसे अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज के हेलो सहेली में तकनीकी रूप से हमारी सहयोगी रही भावना सिंदल, संपादन में हमें सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मनीष वैद्य की कहानी सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी। वाचन स्वर ममता सिंह का है।
1: प्रेम परछाई है, नहीं वो नदी के तटों की तरह है, कभी ना मिल पाने को अभिशप्त। प्रेम हमारे भीतर के नमक की तरह है, नहीं प्रेम तेजाब की तरह है, भीतर तक सब कुछ खत्म कर देने वाला। प्रेम कोमल अनुभूति है, नहीं वो विद्रोह का उद्घोष नाद है। लड़की के मन में खलबली मची है, उसके चारों तरफ घुप अंधेरा है। भीतर के अंधेरे में घुल रहा है बाहर का अंधेरा। वो उस अंधेरे की आदी थी, वो इसे जानती थी। वो अंधेरे से नहीं डरती थी, वो किसी से नहीं डरती थी। वो नदी से मछलियां ले आती, शिकार करती और गोफन तान कर ऊंचे पहाड़ों से फल गिरा लेती। नदी की धार के खिलाफ तैरती हुई मछलियां उससे पीछे छूट जाती। वो अलबेली अल्हड़ चुलबुली और अपनी ही धुन की थी, बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग। उसकी सहेलियां भी उसकी तरह नहीं थीं, थोड़ी थोड़ी करीब, फिर भी उनकी आपस में दोस्ती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्ती अपनी नानी से थी। नानी थी भी ऐसी, उम्र का फासला उनकी दोस्ती में कभी बाधा नहीं बनता। कभी नानी उसकी उम्र की हो जाया करती तो कभी वो नानी की उम्र में दाखिल हो जाया करती। वो बचपन से ही नानी के पास रहती थी। उसके माँ पिता कई साल पहले चल बसे थे, तब वो बहुत छोटी थी, इतनी कि उसे ठीक से अपने माँ पिता का चेहरा भी नहीं याद। नानी के गांव के ठीक पीछे पहाड़ था, इतना पास कि जैसे गांव उसकी गोद में हो। पहाड़ से कूदती फांदती नदी गुस्से में बहुत तेजी से बहती तो कभी मंद मंथर सी थकी मांदी किसी बुढ़िया की तरह। वो एक पहाड़ी नदी थी, पहाड़ों से फिसलकर मैदानों में बड़ी नदियों से मिल जाने वाली। जंगल के बीच चारों ओर गांव कुछ इस तरह ढका था कि बहुत पास आने पर भी उसका कोई चिन्ह नजर नहीं आता था। सागवान, पलाश, तेंदू, महुआ, शीशम के

0: बड़े बड़े पेड़ों और झाड़ी नुमा रास्तों के बीच से यहाँ तक एक पगडंडी पहुँचती थी। यहाँ लोगों को रात बेरात चीते नाहर की गुर्राहट भरी दहाड़ सुनाई देती, तो कभी रीछ की आवाज़ें, पर ये लोग उन आवाज़ों से डरते नहीं थे। वो गांव भी नहीं था, गांव जैसा कुछ था। गांव में बहुत से मकान होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं और वे खेती या दिगर काम करते हैं। वहाँ कुछ दुकानें होती हैं, स्कूल अस्पताल जैसे सुविधाएं भी हो सकती हैं, पर वो ऐसा नहीं था। वो छोटी सी बस्ती, कुल 20-22 टपरियाँ होंगी और 100 के करीब लोग। किसी फलिए की तरह गांव बाकी दुनिया से खोया हुआ था। हाँ, सरकारी नक्शे में ज़रूर जंगल के बीच सुई की नोक की मानिंद था। नदी से कुछ दूरी पर पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटे से ओटले पर पत्थर की एक मूर्ति थी। गांव के मंदिरों और दीगर जगहों पर अमूमन कई मूर्तियां हुआ करती हैं, पर ये उन मूर्तियों से बिल्कुल अलग थी। ये एक औरत का बुत था, वो देवी की तरह नहीं थी। देवी की मूर्तियों के हाथों में हथियार या फूल जैसी चीज़ें होती हैं। ये पत्थर की औरत उसी तरह थी जैसे यहाँ की दूसरी औरतें। बुत में वो मुस्कुराती हुई दिखती, मानो कुछ ही पलों में खिलखिला कर हंस पड़ेगी। किस राम के इंतजार में है ये पत्थर की अहिल्या? उस लड़की के लिए वो बुत बचपन से ही किसी रहस्य की तरह था। गांव में कोई शादी करके लौटता है तो नए जोड़े को सबसे पहले यही लाया जाता। लाल ध्वजा, घी का दिया, ताजे फूल, अगरबत्ती का धुआं, लोबान का धुआं, नारियल, दानी चुनरी, ढोल ढमाकों के साथ सब यहाँ पूजा करते हैं। उनके साथ औरतों का हुजूम होता। उसने नानी से कई बार पूछा था, नानी हमेशा ही उसे टाल दिया करते। उसे नानी ने कई कहानियां सुनाई, पर ऐसा क्या था इस कहानी में कि उस बुत की बात आते ही वो डरने लगती। किसी अनहोनी की आशंका में उसकी आंखें फटने लगती। नानी उसे बच्चों की तरह अपने अंक में भर लेती और उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाती रहती जब वो डरती। वे शायद तब किसी तूफान से गुजर रही होती, सूखी नदी में तपती रेत का दरिया पार कर रही होती। चंदा नाम था उसका। नानी ने पहली बार उसे देखा था तो सहसा ही ये नाम उसके मुंह से निकल आया था, उसके लिए अतखिला चांद का टुकड़ा। इस तरफ काले लोगों और अंधेरों के बीच रहने वाली नानी को उसकी कंचन सी देह से नया उजाला दिखा था। तब नानी उसकी कंचन काया से डरी थी। उसकी माँ को कहा था, ज्यादा अटोपनी पड़ेगी इसे, सुंदर लड़कियां माँ बाप के लिए परेशानी का सबब होती हैं। हाँ, उसके आने पर आधी रात पीतल की थाली बजाई गई थी। अंधेरी रात में दूर तक थाली की आवाज गूंजती रही। नानी को तब क्या मालूम था कि आगे चंदा को उसे ही अटोपना पड़ेगी और उसे ही अतिरिक्त सावधानी भी रखनी होगी। चंदा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसके अनुपात में नानी की चिंताएं भी बढ़ने लगी थीं। नानी कहती, ये दूसरों की अमानत है, इसका शादी ब्याह हो जाए तो मेरी चिंता खत्म, फिर मैं चैन से मर सकूंगी। उसने बचपन से बस नानी को ही देखा था, वही उसके लिए माँ बाप थी। उसने अपने बचपन की सारी चाहतें नानी को ही पूरे करते देखा था। नानी कभी उस पर चिढ़ जाती तो कुढ़ने लगती, तार सी लंबी हो चली है पर अक्कल बच्चों जैसी, जब देखो घोड़ी जैसी दांत पिलकाती रहती है, उलल बछेरी कहीं की, सारा दिन यहाँ वहां घूमती रहती है। अरे जमाना बहुत खराब है, कल को कुछ हो गया तो कहाँ मुझ पाऊंगी मैं। पर नानी की डांट जैसे ठंड की धूप, भीतर ही भीतर उसमें अपनेपन की गुनगुनी आँच होती।
1: नानी

नानी को जैसे तैसे मना ही लेती। कुछ ही पलों में नानी भी भूल जाती तो उसे कब याद रहता। उम्र बढ़ने के साथ लड़की की देह से चंदन की खुशबू का सोता फूटने लगा। वो चंपा की तरह लरजती थी, तितलियों की तरह हल्की होकर फूलों के कानों में कुछ कहती तो वे खिलखिलाने लगते। वो नदी के पास जाती तो नदी उससे अटखेलियां करने लगती। पहाड़ की ओर जाती तो उसकी घाटियों में रंग बिरंगे फूलों का गुलिस्ता खिल उठता। वो खिलखिलाती और हर सिंगार झड़ने लगते। उसकी सांस की लय पर पेड़ सरसराने लगते। वो पूरब की ओर देखती तो धूप खिल उठती। वो जंगल की भाषा जानती थी और जंगल उसकी भाषा पहचानता था।

नानी से कहानी सुने बिना कोई रात वो सोती नहीं थी। नानी गजब की किस्सा गो थी। किस्सा गो उनकी तासीर में थी। वो ऐसे सुनाती कि चित्र चलने लगते। वे उस समय में दाखिल हो जाया करती मानो किरदार खुद अपनी बात कह रहे हों। नानी की कहानियाँ जैसे उसकी लोरी थी। नींद की घाटियों में वो उन किरदारों के बीच बहती रहती, घूमती रहती। वे किरदार सपनों में अक्सर उससे बातें किया करते। कई बार ये भी होता कि किरदार उसके भीतर इस तरह बस जाते कि वो उनके प्रभाव से बहुत दिनों तक बाहर ही नहीं आ पाती। तब वो बेचैन सी नदी के तट पर जा बैठती, जैसे नदी से कुछ पूछ रही हो, गुमसुम सी, अनमनी और उदास। भीतर ही भीतर सुलगती हुई घंटों तक इसी तरह बैठी रहती। नानी की कहानी सुनने से पहले दो शर्त होती। शर्त नहीं तो कहानी नहीं। चंदा हर बार ये शर्तें मानती। पहली शर्त थी हुकारा, मतलब हाँ में हाँ मिलाते चलो। जब वे कहानी कहती तो जरूरी था कि सुनने वाला कुछ देर में हाँ हाँ कहता रहे। वे कहती कि हुंकारा टूटा तो कहानी की डोर भी टूटी।

छोटी कहानी सुनाती थी, पर कभी कभी कहानी लंबी हो जाती। नानी कहती कि ये उसके हाथ में नहीं है कि किसी कहानी को कहाँ खत्म करें, ये तो किरदार ही तय करते हैं, कहने वाले का उन पर कोई जोर नहीं चलता। कहानी सुनते हुए वो अक्सर नानी के देह के स्पर्श की आँच महसूस करती और इस आँच में नानी की तरह वो भी घुलने लगती। नानी की देह में नमक सी खुशबू थी जो उनके किरदारों में से उनमें आई होगी। लोक कथाएं हो या सीता, उर्मिला, मंदोदरी, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, गांधारी, राधा और मीरा की कहानी, इनके प्रेम और इनसे किए छल की कहानियाँ नानी इस अंदाज में सुनाती कि जैसे इनके दुख उसने अपने ही कलेजे में छुपा रखे हैं। वे कहती किसी समय में स्त्री मुक्त नहीं रही, न तब और न अब, हर दौर में उसे आग से ही गुजर कर परीक्षा देनी पड़ी। हाँ, यही उसका भाग है, उसे हमेशा प्रेम की जगह छल ही मिला, फिर भी उसने प्रेम का अंकुर कभी सूखने नहीं दिया। अपनी आत्मा को आंसुओं की नमी और दुखों के ताप से उर्वर बनाए रखा। आषाढ़ के आखिरी दिनों की कोई रात रही होगी, ताप और उमस से भरी हुई, हवा जैसे कहीं थम गई थी, आंगन के ऊपर आसमान में तारे ही तारे थे। नानी उस रात उसे उर्वशी पुरुरवा की कहानी सुना रही थी, ईसा से 1600 साल पुरानी कहानी, पुराणों की पहली कहानी, आज से करीब 3500 साल पुरानी। नानी कहानी सुना रही थी। स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी उर्वशी। उर्वशी के पास सब कुछ तो था, लेकिन ऐसा सरल जीवन और मनोरम प्रकृति कहाँ। स्वर्ग में नृत्य, संगीत और आकर्षण के स्थिर सपनीली दुनिया से अलग, यहाँ धरती पर राग रंग, जीवन संघर्ष, मौसमों की आवाजाही और प्रकृति का पल पल बदलना। उर्वशी को धरती हमेशा लुभाती थी। एक दिन वो धरती की सुंदरता देखने आई और जंगल की झील में अपना अक्स देखने में ऐसी खो गई कि शाम से पहले वापस स्वर्ग लौटना ही भूल गई। धरती के जंगल है ही इतने सुंदर कि कोई भी रम जाए इनमें। चंदा ने हुंकारा भरा, हाँ ये बात तो है, जंगल है ही इतने सुंदर। नानी ने कहानी को आगे बढ़ाया। तो शाम घिर आई, चांदनी रात में झील का सौंदर्य और बढ़ गया। उर्वशी के रूप गंध से जंगल महकने लगा। इससे केसी नाम के राक्षस का पुरुषत्व जाग उठा। उसने उर्वशी का हाथ पकड़ा और उसे जबरन ले जाने लगा। उर्वशी ने सहायता के लिए पुकारा। रात के नीरो सन्नाटे को चीरते हुए स्त्री का आर्तनाद जंगल में दूर दूर तक फैल गया। चंदा ने दोनों हथेलियां अपनी ठोड़ी पर रखते हुए पूछा, अरे फिर क्या हुआ नानी, कोई आया उसे बचाने? नानी ने अपनी आवाज को और भीतर तक ले जाते हुए कहा, हाँ थोड़ी दूरी पर पुरुरवा शिकार के लिए गुजर रहे थे। पुरुरवा एक प्रतापी राजा था, स्त्री और गरीबों का रक्षक। प्रतिष्ठानपुर का राजपाट होते हुए भी एकदम एकाकी। ओशिन सहित कई रानियां थीं, पर मन की बात कोई नहीं समझ पाती। राग रंग में मन नहीं लगता तो वो रात को शिकार पर निकल जाता। प्रेम से रीता इंसान कई बार लक्ष्यहीन हो जाता है। केसी राक्षस से भिड़ जाते हैं पुरुरवा और बचा लेते हैं उर्वशी को। चंदा ने चहकते हुए हुंकारा भरा, हाँ ये हुई ना बात नानी। नानी को इस तरह कहानी की शुरुआत में ही चंदा का फैसला देने वाला अंदाज ठीक नहीं लगा, पर वो भी आखिर के सागो थी। उसने अगले ही पल चंदा को फिर से बेचैन कर दिया। नानी ने आवाज बदली और वे कहने लगी, लेकिन यही आता है एक नया मोड़ जो बदलता है पुरुरवा और उर्वशी की जिंदगी को। केसी से छुड़ाने में कई बार पुरुरवा और उर्वशी का एक दूसरे से स्पर्श हुआ। दोनों के भीतर स्पर्श से तरंगित सितार के कई तार छिड़ गए। चांदनी रात के दूधिया उजाले में दोनों की आंखें मिली
तो वे एक दूसरे

दूसरे की आंखों में कुछ ढूंढने लगे। बरसों की आस घुमड़ आई, अनायास बारिश होने लगी। उस रात दोनों की बरसों से तपती अतृप्त देह अंधेरे और बारिश में एक होने को आतुर थी। दोनों की देह उस बियाबान में अकथ प्रेम की कहानी लिखती रही। चंदा ने हुंकारा देते हुए पूछा, हाँ तो फिर शादी हो गई दोनों की? नानी ने डपटते हुए कहा, अरे ऐसी आसान कहाँ होती है कहानियाँ चंदा। उर्वशी यहाँ धरती की नहीं, वो तो स्वर्ग की थी ना। नानी फिर शुरू हो गई तो सुबह पुरुरवा ने भारी मन से उर्वशी को स्वर्ग भेज दिया। दोनों रीते रह गए, भीतर ही भीतर कुछ खो गया। न पुरुरवा का मन धरती पर लग रहा था और न ही उर्वशी का मन स्वर्ग में। एक का धरती पर राजसी ठाठ बाट तो दूसरे का स्वर्गिक आनंद, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रेम में झुलस रहे थे। दोनों अनमन

अनमनी उर्वशी, नानी कुछ कहती इससे पहले ही एक तारा टूटकर जमीन पर आने लगा और नानी ने कहानी वहीं रोक दी। चंदा शर्त से बंधी थी, वो कहानी के इस तरह अचानक बीच में रुक जाने से उदास हो गई, पर कहा कुछ नहीं। उसे पता था कि नानी अपनी शर्त कभी नहीं तोड़ती। अधूरी कहानी उसके भीतर देर तक घुमड़ती रही। नानी को तो नींद आ गई, पर उसकी आंखों में नींद कहाँ। वो सोने की जितनी भी कोशिश करती हर बार निष्फल ही रहती। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चांदनी रात में पीपल के नीचे ओटले पर वो औरत बुत की तरह मुस्कुरा रही थी। उसने सोचा, हर औरत एक बुत ही तो है। महज मुस्कुराती हुई, क्या सांस लेना और दिल का धड़कना ही जीवन है। चंदा सोचती तो सोचती रहती देर तक। कोई भंवर उठता उसकी आंखों की झील में, कोई बवंडर उठता उसके मन में, गीली लकड़ी सी धू धू करके उसकी देह सुलगने लगती।

इस वक्त आकाश की याद में है बड़ी शिद्दत से, मानो बीता हुआ सच अभी गुजर रहा हो उसकी आंखों के सामने। वो कहाँ होगा? क्या वो भी उसे याद करता होगा? पता नहीं। यही नदी के किनारे उन्होंने एक दूसरे को पहली बार देखा था। दोनों को नदी ने देखा था, पीपल की बुत वाली औरत ने देखा था, पहाड़ ने देखा था और जंगल ने भी। उसने उसे देखा तो वो देखती रह गई। ऐसा कोई इधर उसने कभी देखा नहीं। उसे लगा कि ये जंगल की कोई परी है, किसी ने तन्मय होकर तराशी है उसकी देह। बड़ी बड़ी आंखें, सुतवा नाक, लरसते से नाजुक होठ, सुराही का गला, काले बालों का लहरदार जूड़ा, लाल ओढ़नी, धानी घाघरा, जैसे वन देवी हो या राह में भटकी हुई कोई राजकुमारी। वो खो गया था। वो अब महसूस कर रही थी उसकी आंखें उसे भेद रही हैं, शायद भीतर आत्मा तक। उसकी आंखों में भी इंद्रधनुष तनने लगा था। सपनों से उसके जीवन में उतर रहा था प्रेम, धीरे धीरे अपने अंक में लेती हुई आज थी वहां। वो उस ताप से अपने में ही बिखर रही थी और वो फैल रहा था उसके वजूद में हौले हौले। चंदा तिल तिल आकाश के वजूद में समा रही थी। उसका अपना सब कुछ विलीन हुआ जा रहा था। प्रेम में दो हो ही नहीं सकते, वहां अद्वैत है। आकाश की तरह उसने भी चंदा को अपने में समेट लिया था। आकाश के बिना चंदा तो चंदा के बिना आकाश कैसा? वे प्रेम में थे या उनके साथ

0: आकाश जिसके वजूद में चंदा तिल तिल समा रही थी, वही आकाश दरअसल यहाँ जंगल बचाने आया था। कुछ लोग जंगल को ख़त्म कर देना चाहते थे। वो जंगल को उसी तरह रखना चाहता था जैसे जंगल बरसों से था। वो नदी में मछलियों की आवाजाही देखता रहा। चंदा के पैरों को छूते हुए नदी का पानी अपनी धार में बह रहा था। तब से अब तक न जाने कितना ही पानी बह गया होगा इस धार में। वो सोचने लगता है, स्मृतियां दुख से भर देती हैं, जख्म हरे हो जाते हैं। क्यों नहीं भूल पाते हम दुखद स्मृतियों को, मानो कहीं भीतर फंसी रह जाती हैं ये दुखद स्मृतियां। सपनों से जीवन में आया प्रेम कब फिर सपनों में लौट जाता है, हम समझ भी नहीं पाते। प्रेम दुर्लभ है, शायद हवा के वर्जित फल की तरह। कुसुम जो चंदा की प्रिय सहेली थी, शुरू से ही इसके खिलाफ थी, पहले दिन से। वो कहती थी, प्रेम कुछ भी नहीं है, बस छलावा है, एक भरम है, एक बहाना है। दोनों नदी के तट पर इसी जगह बैठी थीं। चंदा ने कुसुम से हंसते हुए कहा, कुसुम तुझे वो कहावत याद है ना, झड़त पान हसत पीपली, झड़त पीपली हसत पान। मतलब, कुसुम ने पूछा था। चंदा बोली, अरे जब पतझड़ में सारे पेड़ पौधों के पत्ते गिरते हैं तो पीपल उन नंगे दरख्तों पर हंसता है, और जब सारे पेड़ पौधे पर नई कोपले आने लगती हैं तो छोटे छोटे पत्ते आने लगते हैं, तब पीपल के पत्ते झड़ने लगते हैं और सारे उस पर हंसते हैं। चंदा ने हंसते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया। आज मैं प्रेम में हूँ तो तू मुझे ऊंच नीच समझा रही है। कल जब यही तेरे साथ होगा तब मैं। कुसुम ने बीच में ही बात काट दी। ऐसा कभी नहीं होगा चंदा, मैं नहीं पढ़ने वाली तेरी तरह प्रेम रेम के चक्कर में, चंदा ने चहकते हुए कहा था। पगली, कोई सोच समझकर थोड़े ही प्रेम करता है, ये तो बस हो जाया करता है। प्रेम दिमाग से परे होता है, वो तो मन की किताब में कैद होता है। प्रेम मन में होता है, अनजाने में, जानबूझकर नहीं। चलो चलो, प्रेम अंधा होता है, कुसुम ने कहा। नहीं कुसुम, प्रेम तो आंखें खोल देता है, चंदा बोली। प्रेम संकीर्ण कर देता है, कुसुम बोली। नहीं रे, प्रेम तो संकीर्णता को तोड़ता है, प्रेम सारी हदें तोड़ देता है। प्रेम निसीम है, निसीम, चंदा बोली। प्रेम समझ को ही खत्म कर देता है, ये एक तरह का पागलपन ही है चंदा। प्रेम जीवन को नए अर्थ देता है, वो दो दिलों को जोड़ता है, ये तो एक अलग अनुभूति होती है। प्रेम हमारे पागलपन का उपचार है, दवा है, प्रेम दवा है। चंदा, प्रेम आग है, आग। कुसुम, आग भी तो जरूरी है ना जीवन के लिए, आग से ही तो अनाज पकता है, आग से ही लोहा ढलता है, आग से ही सोना तपता है। आग नहीं तो जीवन कैसा, हर सर्जन आग की भट्टी से ही तो उपजता है। चंदा, प्रेम अपनों से तोड़ देता है, समझी? नहीं रे, प्रेम किसी को नहीं तोड़ता। कुसुम, जो प्रेम को नहीं समझ पाते वे खुद टूट जाते हैं, प्रेम तो हमेशा जोड़ता ही है। चल हट, तुझसे तो बात करना ही व्यर्थ है चंदा। अरे सिर्फ प्रेम की बात पर ही ना कुसुम, बाकी बातों में तो नहीं। ऐसा इसलिए है कि तूने प्रेम को अब तक सिर्फ दूर से ही देखा है, दूसरों की नजरों से ही ना, उसमें डूबना तो दूर, तूने तो छुआ तक नहीं है, फिर उसके बारे में कैसे जान सकती है भला। चंदा उन पलों को शिद्दत से याद करती है तो उसके भीतर यादों की नदी मचलने लगती है। उसे अपने ही तन की खुशबू अब पराई सी लगती है। उसका पुरुरवा भी क्या उसे इसी तरह कहीं याद करता होगा? याद करता होता तो लौट आता अब तक। कभी कभी लगता है कुसुम सही कहा करती है, कभी लगता है उसका मन सही कहता है, अपने ही द्वंद्व में उलझी है वो, पर उसे भरोसा है अपने प्रेम पर, पूरा भरोसा है कि एक दिन लौट आएगा आकाश भी। चंदा और आकाश जब मिलते तो देर तक बातें करते रहते, उनकी बातें कभी ख़त्म नहीं होती थीं। उनके पास बातों का ख़जाना था, कभी वे बातें करते हुए जंगल में खो जाते तो कभी पहाड़ से उतरती नदी को देखते रहते। नदी का ये तट उन्हें सबसे अच्छा लगता, उनके पैर नदी के पानी में होते और इस तरह नदी प्रेम को सींचती थी। उनकी बातें नदी में गिरती रहती, नदी उन बातों के टुकड़ों को सहेज लेती। वे चिड़ियों से शब्द लेते, वे पपीहे से प्यास लेते और अपने प्रेम को गाढ़ा होते देख रहे थे।
1: ये रातें

आकाश को बुत वाली औरत की कहानी उसने ही सुनाई थी। आकाश का हाथ पकड़कर वो उसे बुत के पास ले गई थी। बुत वाली औरत मुस्कुरा रही थी। आकाश, ये बुत देख रहे हो ना? ये बुत नहीं है, सच की औरत है, इसी गांव की। करीब 400 साल पहले यही इसका घर था। हर दिन नदी के पास की पगडंडियों से पहाड़ की ओर बकरियां लेकर ये निकल जाया करती थी। कभी वो बहुत मीठा गाती थी, पहाड़ पर गाती तो गांव सुनता रहता। उसके गाने में ताकत थी कि गीत सुनते हुए कोई दूसरा काम नहीं कर पाता, जो सुनता वहीं ठहर जाता। उसकी आवाज में दर्द था, उसके दर्द से भीगे गीत पहाड़ की घाटियों में गूंजते रहते देर तक। नदी के साथ बहते हुए गीत बहुत दूर तक चले जाते। आकाश हतप्रभ था, ऐसा गीत, ऐसा गला कहाँ से सीखा था उसने? अपने ही दुखों से, अपने ही भीतर से। यह कौन किसको सिखाता है, सब अपने ही भीतर सीखते हैं। कहते हैं वो गले से नहीं गाती थी, अपने कलेजे को ही चीर लेती थी वो, वहीं से फूटता था गीत। चंदा की आंखें बुत पर टिकी थी। ऐसा क्या दर्द था उसका, प्रेम का दर्द, जिसका कोई उपचार उसके पास नहीं था, कोई दवा नहीं थी उसके पास। फिर क्या हुआ, आकाश बेताबी से पूछ रहा था। उसने भी किसी से प्रेम किया था, कहीं से सौदा बेचने यहाँ आया और प्रेम लेकर चला गया, फिर बरसों तक इधर नहीं लौटा। वो उसका इंतजार करती रही। इंतजार का दर्द सिमट आया था उसके गीतों में।

तो क्या वो फिर कभी नहीं लौटा? क्या वो उसे भूल गया? नहीं, वो उसे अपने देश, अपने गांव ले जाने को लौटा था, पर वो उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। उसे इस जंगल से इतना प्यार था कि कहीं जाने की बात कभी सोच भी नहीं पाती। हार कर सौदागर ने भी यहीं रहने का फैसला कर लिया। वो बहुत खुश हुई। वो संकोच में थी कि घर वालों को ये सब कैसे बताए। तभी एक किस्सा हो गया। किस्सा? कैसा किस्सा? एक रात नदी के तट पर ठीक यही वे दोनों अपने सपनों में खोए हुए थे। तभी गांव के कुछ लोगों ने उन्हें यहाँ इस तरह देख लिया। थोड़ी ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इस तरह किसी गैर पुरुष के साथ? गांव वालों में से किसी एक ने किसी ने पहला पत्थर उछाला। फिर तो इतने पत्थर चले कि वहीं दोनों लहूलुहान हो गए। इतने पत्थर खाकर वे बचे नहीं। वे तो नहीं बचे, लेकिन उनका प्रेम जीत गया था जमाने से, अपने समय से।

उसके बाद गांव में जैसे मुर्दान की छा गई, संकट पर संकट, गांव वाले परेशान। संकट में ही याद आते हैं अपने किए हुए बुरे कर्म। ये उसी औरत की वजह से तो नहीं, पूरे गांव ने नाक घिसी यहां आकर। किसी मूर्तिकार ने उसकी मूर्ति गढ़ी पत्थर में, तब से अब तक इसे लोग देवी की तरह पूजते हैं। लेकिन कुंवारी लड़कियों को यहां नहीं आने देने के पीछे क्या वजह है? डर, प्रेम से। उन्हें लगता है कहीं वे भी प्रेम में न पड़ जाएं। कोई माँ अपनी बेटी को ये किस्सा तक नहीं सुनाती कि कहीं उसकी बेटी भी प्रेम न करने लगे। आकाश ने कहा था, तो क्या इन 400 सालों में कुछ भी नहीं बदला? बिल्कुल नहीं। शायद ये दुनिया का पहला ऑनर किलिंग रहा होगा। बहुत देर तक दोनों के बीच सन्नाटा सा रहा। वे भी धीरे धीरे पत्थर के शक्ल में ढल रहे थे। दूसरी रात नानी ने फिर शुरू की थी उर्वशी की कहानी, वहीं से जहां तारा टूटने पर छोड़ी थी। नानी कह रही थी, अनमने से उर्वशी नृत्य नाटिका में लक्ष्मी का अभिनय कर रही थी। उसके ध्यान में पुरुरवा थे। उसने नाटिका में जैसे ही विष्णु की जगह पुरुरवा कहा तो स्वर्ग में खलबली मच गई। नृत्य नाटिका के निर्देशक भरत मुनि ने उसे शाप दे दिया, तू जिसके प्रेम में है जा उसे ही वरण कर। वो प्रेम में थी तो उसे ये शाप भी वरदान ही लगा। उसने पुरुरवा के पास संदेश भेजा। पुरुरवा ने उसे धरती पर बुलवा लिया। गंधमादन की रमणीक पहाड़ी पर दोनों प्रेम में रहने लगे। अच्छा, इस तरह तो प्रेम जीत गया नानी, चंदा बोली। नानी ने कहा, सरल नहीं होती जिंदगी की राह बेटा, वो कई मोड़ मुड़ती है। हाँ, प्रेम को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अब आगे सुन। पुरुरवा उर्वशी के लिए फल लेने जा रहे थे कि जंगल में उसकी आंखें पल भर के लिए नदी से झुककर पानी भरती हुई एक युवती पर ठहर गई। पुरुरवा को बिना बताए उर्वशी भी थोड़ी दूर पर उनके पीछे चल रही थी। एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है पर अपनी उपेक्षा नहीं। वो डाह से भर उठी और वहीं एक बेल में बदल गई। पुरुरवा परेशान, सब तरफ देखा ढूंढा पर कहीं नहीं। पुरुरवा विरह से बहुत दुखी हुए। एक मुनि ने देखा तो दया से भरकर उन्होंने पुरुरवा को एक मणि दी, जिसके छूते ही उर्वशी फिर से स्त्री बन गई। वो बेल में नहीं बदली थी, शायद वो बेलों के पीछे अपने में ही छुप गई थी। नानी कहे जा रही थी, बहुत मनाने पर उर्वशी उसके साथ रहने को तैयार तो हो गई, पर उस बार उसने पुरुरवा के सामने शर्त रख दी। कैसी शर्त नानी? प्रेम में शर्त? भला कैसे? चंदा के माथे पर बल पड़ गए थे। नानी की कहानियां ऐसे ही कई मोड़ों से भरी होती हैं, उसकी अपनी जिंदगी की तरह। ऐसा लगता कि बस अब कहानी का सुखांत तो होता ही है और तभी कोई एक नया मोड़ आ जाता उसमें। सुनने वाला अचरज में पड़ जाता है। नानी कहती, अरे मोड़ नहीं तो कहानी क्या? नानी ने कहा, हाँ प्रेम में शर्त। ये उसकी प्रेयसी बनकर तभी तो उसके साथ गंधमादन पहाड़ पर रहेगी, जब तक कि उनमें से कोई एक दूसरे को निर्वस्त्र नहीं देख लेते। जिस दिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को बिना कपड़ों के देखा, उसी पल उर्वशी उससे संबंध तोड़कर वापस स्वर्ग चली जाएगी। तो क्या पुरुरवा ने शर्त मान ली? चंदा कहानी के भंवर में धंसती जा रही थी। नानी ने कहा, अरे वो क्या करता, वो तो उर्वशी के प्रेम में था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था शर्त मानने के सिवा। उसने शर्त मान ली। अब वे दोनों उजाले में

सामने नहीं पड़ते, पर रात के अंधेरे में दोनों एक दूसरे में खोए रहते। दोनों सुख से रहने लगे। राजपाट का काम भी पुरुरवा वहीं से देखते थे। वे बरसों तक अपनी राजधानी ही नहीं लौटे। फिर क्या हुआ नानी? क्या किसी ने उनके राज्य पर हमला कर दिया? चंदा की बेचैनी अब चरम पर थी। नानी ने कहा, अरे नहीं रे, पुरुरवा जैसे प्रतापी राजा के राज्य पर हमला करने की हिम्मत भला कौन करता? दूसरी बात हुई। उर्वशी के चले आने से स्वर्ग में उदासी फैल गई थी। नृत्य और संगीत बिना अधूरे हो गए थे। वहाँ नृत्य में चपलता नहीं, संगीत में सुर नहीं, लय ताल आरोह अवरोह सब भूलने लगे। वहाँ और भी अप्सराएं थीं, लेकिन नृत्य और संगीत की आत्मा तो जैसे उर्वशी में ही बसती थी। इंद्र के साथ बाकी देवता भी चिंता में पड़ गए। गंधर्व तो बिना आत्मा के शरीर की तरह हो गए थे। तभी उन्हें कहीं से उर्वशी की शर्त के बारे में पता लगा। उन्होंने एक खेल रचा, छल किया पुरुरवा से। नानी ने एक ठंडी सांस भरी। एक पल को अंधेरे में कुछ सोचती रहीं, फिर कहानी में लौट आईं, जैसे वो भी अपने अतीत से लौट रही हूँ। नानी ने कहा, उर्वशी ने बहुत ही सुंदर सफ़ेद फर वाले दो मेमने पाले थे। उर्वशी उनका बहुत ध्यान रखती, उन्हें हमेशा अपने साथ रखती थी। एक रात जब वो पुरुरवा के अंक में आराम कर रही थी, तभी गंधर्व ने छल से एक मेमना चुरा लिया। चोरी करते हुए उन्होंने जानबूझकर कुछ खटर पटर किया, जिससे उर्वशी की नींद उछट गई। उसने पुरुरवा को उठाया कि कोई उसका मेमना चुरा कर ले जा रहा है। वे नींद से नहीं जागे तो उर्वशी उन्हें भला बुरा कहने लगी। छल की योजना पूरी होते न देखकर उन्होंने दूसरा मेमना चुराने का साहस किया। फिर उर्वशी ने उन्हें उठाया। इस बार पुरुरवा अपने आप को रोक नहीं सके और बिस्तर से खड़े हो गए। तभी देवताओं ने बिना मौसम की आसमानी बिजली चमका दी। पल भर को उर्वशी ने पुरुरवा को और पुरुरवा ने उर्वशी को निर्वस्त्र देख लिया। शर्त टूट गई थी। उर्वशी को फिर स्वर्ग लौट जाना पड़ा। पुरुरवा अकेला रह गया, अनमना और उदास। वो बिछोह की आग में जल रहा था और उर्वशी भी जल रही थी बिछोह में।

पुरुरवा का राजकाज में मन नहीं लगता था। रह रहकर उर्वशी की याद सताती। कई महीनों बाद उर्वशी एक बार फिर पुरुरवा को किसी निर्जन झरने में स्नान करते हुए दिखी। देर तक दोनों एक दूसरे को विछोह की कहानियां सुनाते रहे। पुरुरवा के प्रेम में उर्वशी को पिघलना ही पड़ा। उसने कहा, वो स्वर्ग के नियम से बंधी है, लेकिन हर साल के आखिरी दिन उससे मिलने धरती पर ज़रूर आएगी, और वो आती रही हर साल इसी तरह एक रात के लिए। चंदा ने फिर हुंकारा भरा, अच्छा फिर क्या हुआ नानी? नानी ने आगे कहा, एक बार देव और दानों का जोरदार युद्ध हुआ, बहुत बड़ा। देवता जितनी भी कोशिश करते, दानों फिर उन्हें पीछा कर देते। ऐसे समय उन्हें धरती पर रहने वाले पुरुरवा की याद आई। पुरुरवा ने युद्ध में देवताओं की मदद की। इंद्र ने लौटते समय उर्वशी को भी उनके साथ भेजा। उर्वशी स्वर्ग से मुक्त होकर हमेशा के लिए धरती पर आ गई। फिर जिंदगी भर दोनों हमेशा साथ साथ रहे। उनके कई पुत्र हुए, फिर प्रेम की जीत हुई। स्वर्ग और धरती का मिलन हुआ हमेशा के लिए गंधमादन की पहाड़ियों पर।

नानी की कहानी तो पूरी हो गई थी, पर चंदा के भीतर बवंडर घुमड़ रहा था। वो सोच रही थी कि दुनिया की खिलाफत, नफरत और छल के बाद भी प्रेम किसी भी समय ख़त्म नहीं हुआ। कोई तो बात है कि हजारों साल के बाद भी प्रेम बार बार बचा रह जाता है। उसे लगा कि प्रेम उस अमर पंछी की तरह है जिसके बारे में उसे आकाश ने बताया था, सुनहरी पूंछ वाला रंग बिरंगा फिनिक्स पक्षी। सैकड़ों साल जीता है फिनिक्स, और आखिर में वो टहनियों और लकड़ियों से अपने आसपास घोंसला बनाता है, खुद अपनी चिता बनाता है और उसी में जल जाता है। इसी राख से एक नया पक्षी जन्म लेता है।

0: शायद प्रेम भी फिनिक्स की तरह अपनी ही राख से बार बार उग आता है और इसी तरह उगता रहेगा प्रेम हमेशा हमेशा।
1: सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखक थे मनीष वैद्य, संपादक स्नेहल भिसे, वाचन स्वर ममता सिंह, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।

0: सरकार ने बेट बीएमएस, इपोक डाईआयन और लॉसगी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्लीकेशन का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद बीएआरसी को समाचार और गैर समाचार दोनों श्रेणियों में टेलीविजन रेटिंग जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। नई व्यवस्था के अनुरूप पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित होने और लाइसेंस के नवीनीकरण के बाद ही टेलीविजन रेटिंग का प्रकाशन फिर से शुरू किया जा सकेगा। इस्पात मंत्रालय इस माह की 9 तारीख को नई दिल्ली में इस्पात आयात से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए एक ओपन हाउस सम्मेलन आयोजित करेगा। मंत्रालय ने कहा कि कंपनियां और संगठन इस दिन इस्पात आयात से संबंधित अपनी समस्याओं की चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत अब तक हुए कार्यक्रमों की मंत्रालय में समीक्षा करते हुए कहा कि किसानों का कल्याण राज्य सरकार का कर्तव्य है। खेती की लागत कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए गतिविधियों को प्राथमिकता पर लिया जाना आवश्यक है और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा पर्यटन क्विज 2026 का आयोजन किया जा रहा है। जिला स्तरीय इस क्विज में भाग लेने के लिए विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन 1 जुलाई से 25 जुलाई तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं युवाणी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर का योगदान है।

साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे युववाणी कार्यक्रम में। आज मैं हूँ आपके साथ पारुल पटेरिया, तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, स्वास्थ्य मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इसलिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और अच्छी जीवन शैली अपनाकर हम लंबे समय तक निरोगी और

ऊर्जावान जीवन जी सकते हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे संतुलित आहार के बारे में कि संतुलित आहार किस प्रकार हमारे अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। साथियों, संतुलित आहार शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, इससे शरीर स्वस्थ और मजबूत बना रहता है। संतुलित आहार बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इससे उनकी सीखने की क्षमता भी बढ़ती है। साथियों, संतुलित आहार मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग जैसी समस्याओं के जोखिम को कम करता है। ये स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देता है। हरी सब्जियाँ, फल, दालें और दूध शरीर को आवश्यक विटामिन और खनिज प्रदान करते हैं। ये शरीर के सभी अंगों के लिए लाभकारी होते हैं। साथियों, पर्याप्त मात्रा में पानी और रेशेदार भोजन पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। साथियों, संतुलित आहार त्वचा, बाल और आंखों के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। इससे व्यक्ति अधिक स्वस्थ और आकर्षक दिखाई देता है। साथियों, संतुलित आहार स्वस्थ जीवन की कुंजी है। संतुलित आहार अपना कर हम स्वस्थ, सक्रिय और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। ये अच्छे स्वास्थ्य की सबसे सरल और प्रभावी आदत है। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी स्वास्थ्य सुझाव से संबंधित। कार्यक्रम श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और दे देते हैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। साथियों, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून सन 2020 को की गई। ये योजना शहरी सड़क विक्रेताओं के लिए शुरू की गई थी। साथियों, इसका मुख्य उद्देश्य छोटे व्यापारियों को बिना गारंटी के आसान ऋण उपलब्ध कराना है, इससे वे अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चला सकें। साथियों, ये योजना रेहड़ी पटरी वाले, फल सब्जी विक्रेता, चाय नाश्ता विक्रेता और अन्य छोटे व्यापारियों के लिए है। इससे लाखों लोगों को लाभ मिलता है। साथियों, इस योजना के तहत पहली बार 10,000 रुपए तक का कार्यशील पूंजी ऋण दिया जाता है। समय पर भुगतान करने पर अधिक राशि का ऋण भी मिलता है। साथियों, समय पर ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को 7% तक ब्याज सब्सिडी दी जाती है, इससे उनकी आर्थिक बचत होती है। साथियों, ये योजना डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करती है। डिजिटल लेन देन करने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलती है। साथियों, ये योजना छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनने और अपने व्यवसाय का विस्तार करने में सहायता करती है, इससे उनकी आय में वृद्धि होती है। साथियों, ये योजना छोटे व्यापारियों को साहूकारों के ऊंचे ब्याज से बचाती है, उन्हें बैंकिंग व्यवस्था से जोड़कर आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। इस योजना से छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलता है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। साथियों, ये योजना गरीब और छोटे व्यापारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये समावेशी विकास और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत करती है। साथियों, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना छोटे सड़क विक्रेताओं के लिए एक प्रभावी और लाभकारी योजना है। ये उन्हें आर्थिक सहायता, सम्मानजनक आजीविका और आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करती है। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम करवा देते हैं आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म सनम रे से ये गीत, जिसमें आवाज थी अरमान मलिक और पलक मुछाल की, गीतकार थे मनोज यादव और संगीत से सजाया था अमाल मलिक ने। साथियों, कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम सुनवा देते हैं आपको वार्ता मानसिक स्वास्थ्य और युवा विषय पर, जिसमें वार्ताकार होंगी अदिति शुक्ला।
1: नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में चर्चा तो बहुत कम होती है, लेकिन इसका प्रभाव हमारे जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। हमारा आज का विषय है मानसिक स्वास्थ्य और युवा। जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में शारीरिक स्वास्थ्य का विचार आता है। हम संतुलित भोजन, व्यायाम और बीमारी से बचाव की बात करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य केवल शरीर तक सीमित नहीं है। हमारा मन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा शरीर। यदि शरीर स्वस्थ हो और मन परेशान हो तो जीवन में खुश रहना कठिन हो जाता है। आज का युवा पहले की तुलना में अधिक शिक्षित, अधिक जागरूक और तकनीक से अधिक जुड़ा हुआ है। उसके पास अवसर भी अधिक हैं और सपने भी बड़े हैं, लेकिन इसके साथ साथ चुनौतियां और दबाव भी बढ़ गए हैं। पढ़ाई का दबाव, करियर की चिंता, कंपटीशन, पारिवारिक अपेक्षाएं, आर्थिक समस्याएं और सोशल मीडिया का प्रभाव, ये सभी बातें युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ केवल मानसिक बीमारी का ना होना नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना। ये हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। हम तनाव से कैसे निपटते हैं, दूसरों के साथ कैसे संबंध बनाते हैं और जीवन के फैसले कैसे लेते हैं, ये सब हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। दोस्तों, युवा अवस्था जीवन का एक ऐसा चरण है जहाँ व्यक्ति कई बदलावों से गुजरता है। ये वह समय है जब सपने आकार लेते हैं, पहचान बनती है और भविष्य की दिशा तय होती है। लेकिन यही समय कई बार भ्रम, असुरक्षा और तनाव का कारण भी बन जाता है। आज का युवा सफलता पाना चाहता है, लेकिन सफलता की दौड़ इतनी तेज हो चुकी है कि कई बार वह स्वयं को ही भूल जाता है। हर जगह प्रतियोगिता है, स्कूल और कॉलेज में अच्छे अंक लाने की, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता लाने की और भविष्य को लेकर अनिश्चितता युवाओं के मन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। कई युवा ये महसूस करते हैं कि उन्हें हर हाल में सफल होना है। वो अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। जब अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते तो निराशा और आत्मविश्वास की कमी पैदा होने लगती है। धीरे धीरे ये तनाव चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं का भी रूप ले सकता है। दोस्तों, सोशल मीडिया आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारकों में से एक शामिल हो गया है। इसने पूरी दुनिया को हमारी उंगलियों की पहुंच में ला दिया है और इसके अनेक सकारात्मक पहलू हैं, लेकिन इसके कुछ दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं।

युवा लगातार सोशल मीडिया पर दूसरों की उपलब्धियां, खुशहाल पल और सफल जीवन शैली देखते हैं, तो अनजाने में वे अपनी तुलना उनसे करने लगते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि बाकी लोग उनसे अधिक सफल, ज्यादा खुश और बेहतर जीवन जी रहे हैं। जबकि सच ये है कि सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली तस्वीरें और वीडियो किसी व्यक्ति के जीवन का केवल एक हिस्सा होती हैं, पूरी कहानी नहीं। हर चमकती तस्वीर के पीछे संघर्ष की एक लंबी यात्रा होती है। हर उपलब्धि के पीछे कड़ी मेहनत और कई चुनौतियां छिपी होती हैं। किसी के जीवन में सब कुछ हमेशा खुशहाल नहीं होता, इसलिए सोशल मीडिया पर दिखने वाले हर पल को अपनी वास्तविकता का पैमाना बनाना या उसके आधार पर अपने जीवन का आकलन करना उचित नहीं है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और वास्तविक जीवन सोशल मीडिया की दुनिया से कई अधिक अलग होता है। श्रोताओं, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग इसके बारे में खुलकर बात नहीं करते। यदि किसी व्यक्ति को बुखार हो जाए तो वो डॉक्टर के पास जाने में संकोच नहीं करता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मानसिक तनाव, चिंता या अवसाद महसूस करे तो वो अक्सर इसे छुपाने की कोशिश ही करता है। हमारे समाज में अब भी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कई गलत धारणाएं मौजूद हैं। कुछ लोग इसे कमजोरी समझते हैं, जबकि कुछ लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन सच ये है कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। कभी कभी युवा अपनी परेशानियां किसी से साझा नहीं करते। वो सोचते हैं कि लोग उन्हें नहीं समझेंगे या उनका मजाक उड़ाएंगे। परिणाम स्वरूप वो अकेलापन महसूस करने लगते हैं। ये अकेलापन धीरे धीरे मानसिक तनाव को और बढ़ा सकता है। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति कठिन दौर से गुजरता है। उदासी, निराशा या चिंता महसूस करना सामान्य बात है, लेकिन यदि ये भावनाएं लंबे समय तक बनी रहें और हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करने लगें, तो हमें सहायता लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। याद रखिए, मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि साहस की निशानी है। यदि आप तनाव महसूस कर रहे हैं तो सबसे पहले किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। अपने माता पिता, भाई बहन, मित्र, शिक्षक या किसी ऐसे व्यक्ति से अपनी बात साझा करें जिस पर आप विश्वास करते हो। कई बार केवल अपनी बातें कह देने से भी मन का बोझ हल्का हो जाता है। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए कुछ छोटी छोटी आदतें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें, पर्याप्त नींद लें। विशेषज्ञों का मानना है कि युवाओं के लिए प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की नींद आवश्यक होती है। नींद की कमी मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। दूसरा, नियमित व्यायाम करें। व्यायाम केवल हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे मन को भी स्वस्थ रखता है। सुबह की सैर, योग, खेल कूद या कोई भी शारीरिक गतिविधि तनाव को कम करने में मदद करती है। तीसरा, संतुलित भोजन करें। हमारा खान पान भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। पौष्टिक भोजन शरीर को ऊर्जा देता है और मन को भी स्वस्थ रखने में सहायता करता है। चौथा, सोशल मीडिया और मोबाइल के उपयोग पर नियंत्रण रखें। दिन का कुछ समय डिजिटल उपकरणों से दूर बिताइए। परिवार के साथ समय बिताइए, किताबें पढ़िए, संगीत सुनिए या प्रकृति के बीच कुछ समय गुजारिए। अपनी उपलब्धियों और क्षमताओं को पहचानिए। हर व्यक्ति अलग है और हर व्यक्ति की यात्रा भी अलग है, इसलिए अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। श्रोताओं, आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता तो बढ़ रही है। स्कूल, कॉलेज और विभिन्न संस्थानों में इस विषय पर चर्चा अब होने लगी है। ये एक सकारात्मक बदलाव है। जितना अधिक हम इस विषय पर खुलकर बात करेंगे, उतना ही अधिक लोग सहायता के लिए आगे आएंगे। युवाओं को ये समझना होगा कि जीवन केवल उपलब्धियों का नाम नहीं है। जीवन में असफलताएं भी आती हैं, चुनौतियां भी हैं और कठिन परिस्थितियां भी आती हैं, लेकिन इन सब के बीच स्वयं को संभाल कर आगे बढ़ना ही

0: जीवन की सबसे बड़ी कला है। सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन मानसिक शांति उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने मन का ध्यान नहीं रखेंगे, तो बाहरी उपलब्धियां भी हमें सच्ची खुशियां नहीं दे पाएंगी। दोस्तों, याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। यदि कभी आपको लगे कि जीवन कठिन हो रहा है, तो सहायता मांगने में संकोच न करें। अपने मन की बात कहिए, अपने भावनाओं को स्वीकार कीजिए और स्वयं को समय दीजिए, क्योंकि एक स्वस्थ मन ही एक स्वस्थ समाज और एक उज्जवल भविष्य की नींव रखता है।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता मानसिक स्वास्थ्य और युवा विषय पर, जिसमें वार्ताकार थी अदिति शुक्ला। कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आपका करवा देते हैं मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म खामोशियां से ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी अरिजीत सिंह की, गीतकार थी रश्मि सिंह और संगीत से सजाया था जीत गांगुली ने। साथियों, इसी के साथ कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम दे देते हैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी ताजमहल ऐतिहासिक स्थल विषय पर। साथियों, ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में करवाया था। ये सच्चे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। साथियों, ताजमहल का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया है। इसकी सुंदर नक्काशी और कलाकारी दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। इस स्मारक का निर्माण लगभग 22 वर्षों में पूरा हुआ। इसमें हजारों कारीगरों और कलाकारों ने योगदान दिया। साथियों, ताजमहल की वास्तुकला मुगल, फारसी और भारतीय शैलियों का सुंदर संगम है। इसकी भव्यता देखने योग्य है। साथियों, वर्ष 1983 में यूनेस्को ने ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ये भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथियों, हर वर्ष लाखों देसी और विदेशी पर्यटक ताजमहल देखने आते हैं। इससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। साथियों, सूर्योदय और चांदनी रात में ताजमहल का सौंदर्य और भी मनमोहक दिखाई देता है। इसकी चमक सभी को आकर्षित करती है। ताजमहल भारतीय कला, संस्कृति और इतिहास की समृद्ध पहचान है। ये विश्व में भारत की गौरवशाली छवि प्रस्तुत करता है। साथियों, ताजमहल का संरक्षण और स्वच्छता बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य धरोहर है। साथियों, ताजमहल केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि प्रेम, कला और भारतीय संस्कृति का अमर प्रतीक है। इसकी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व इसे विश्व के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में स्थान दिलाते हैं। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी ताजमहल ऐतिहासिक स्थल विषय के बारे में। साथियों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको बता देते हैं हमारी आज की रोजगार सूचना। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है प्रोविजनरी ऑफिसर। पदों की संख्या है 1500। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियम अनुसार दी जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 8 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट www.sbi.bank.in पर विजिट करें। साथियों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने का, तो दीजिए अपनी मित्र पारुल पटेरिया को इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाणी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है अंतराल का।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 MHz पर। शाम के 5:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम लिजा के लफ्ज और लम्हे।
1: हिल इंडिया हाइड्रो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करता है लिजा के
2: लफ्ज और लम्हे।
3: मैं नासिर
2: और मैं साहिबा
3: सामाइन का खैर मकदम करते हैं।
2: हमारे साथ हैं लिजा जी। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि तकल्लुफ क्या शय है। कुछ को तकल्लुफ बहुत पसंद आता है और कुछ को नागवार गुजरता है, आप क्या कहती हैं?
4: साहिबा जी, तकल्लुफ एक ऐसा जज्बा है जो इंसान में कुदरती तौर पर होता है, मगर जैसे जैसे आपसी रिश्ते गहरे होते जाते हैं तकल्लुफात कम होते जाते हैं, और अगर करीबी रिश्तों में भी तकल्लुफात दिखाई दे तो शिकायत तो बनती है, हल्की सी खूबसूरत सी शिकायत ही सही है।

0: वाह वाह।
1: शिकवा कभी इल्जाम कभी कुछ गिला भी है, शिकवा कभी

0: से दें।
1: बहुत खूब बहुत खूब,
0: शुक्रिया नवाजिश आपकी।
1: और अब वक्त का तकाजा है कि हमें चलना होगा, इजाजत दीजिए साहिबा
2: और नासिर को
3: लिजा के
1: लफ्ज़ और लम्हे।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे हिल इंडिया हाइड्रो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड।
4: लिजा के लफ्ज़ और लम्हे, अभी आप सुन रहे थे ये प्रायोजित कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:35 हुए हैं। पेश कार्यक्रम संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सरदार अंजुम के लिखे इस कलाम के साथ। संगीत है जगजीत सिंह का, आवाज़ है तलत अजीज़ की।

सरदार अंजुम का लिखा कलाम अभी आपने सुना। संगीता जगजीत सिंह का आवाज़ थी तलत असीस की। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संगीत सरिता, और इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं खतील राजस्थानी का लिखा कलाम, स्वर और संगीत भूपिंदर सिंह का, एल्बम आपस की बात।

कतील राजस्थानी का लिखा कलाम अभी आपने सुना। स्वर और संगीत था भूपेंद्र सिंह का, एल्बम था आपस की बात। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संगीत सरिता। कार्यक्रम में समय है अंतराल का।

0: यादें हमारी धरोहर हैं, यादें हमारे दिलों में बसती हैं, यादों का कारवां। सुनिए आकाशवाणी सागर से हर माह के चौथे शुक्रवार को सुबह 10:05 से।
1: यादें याद आती हैं।
0: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल।

चिल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का, तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका।

कौर की आवाज़ अभी आपने सुनी। कलाम था सईद राही का, संगीत था दिलराज कौर का, एल्बम था बज़्म-ए-ख़याल। संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

0: विशाल शर्मा। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जाँच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने आज नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मलक्का जल डमरू मध्य की समुद्री सुरक्षा और स्थिरता में इंडोनेशिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली के परीक्षण के लिए भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने बैट, BMS, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नज़र बनाए हुए है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। साथियों, एक बार फिर तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष भाग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सुदर्शन फाखिर का लिखा गीत है, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। संगीत है चन्नी सिंह का। फिल्म का नाम है यलगार।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुना जाए अगला नगमा अमित कुमार और साधना सरगम की आवाजों में। गीतकार हैं अनवर साहर, संगीत है राजेश रोशन का और फिल्म का नाम है किशन कन्हैया।

गीतकार गौहर कानपुरी का लिखा गीत सुनिए, जसपाल सिंह, कल्याणी मित्रा और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है सावन को आने दो।

कार्यक्रम में अगली आवाजें हैं बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की, गीत है समीर का, संगीत है नदीम श्रावण का और फिल्म का नाम है अंदाज़।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहम्मद अजीज की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है निगाहें।

0: साथियों, कार्यक्रम तराने नए पुराने अब समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने।
0: राष्ट्रीय सेवा विविध भारती, लीजिए सुनिए झरोखा के अंतर्गत हमारे आज के शेष कार्यक्रम और कल दिन भर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं सदाबहार गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में स्वागत सभी सुनने वालों का, और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मेला फिल्म के इस गीत के साथ। इसे गाया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने, लिखा मजरूह ने, और धुन तैयार की राहुल देव बर्मन ने।

और आइए सदाबहार गीतों के कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं अनजाना फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की 4 दरें लगती हैं। 1,000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 जीएसटी है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% जीएसटी देना होगा।
1: और अब अंतराल के बाद सदाबहार गीतों के कार्यक्रम में आखिर में आपको सुनवाते हैं राजकुमार फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज में। बोले शैलेंद्र के संगीत है शंकर जयकिशन का।

इस गीत के साथ ही सदाबहार गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 6:45 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोकरंग। लोकरंग कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं ये विवाह गीत। कलाकार हैं मालती विश्वकर्मा।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है लोक रंग कार्यक्रम में। और अब कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं हल्लन भाई और साथियों के स्वर। सुनते हैं ये चौकड़िया।

0: लोकरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। 7 बजने को हैं, थोड़ी देर में होंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
2: India's position on the Indus Waters Treaty.
3: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
1: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकाले जाने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। मेलबर्न में श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता को बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के परीक्षण के लिए भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को भी स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दे दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और उनकी आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,774 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 पर दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात

ग्यारह बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: समाचारों का अनुप्रसारण किया गया आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:05 हुए हैं। आइए आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में और हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों के बारे में। पहले आज के शेष कार्यक्रम आपको बता दें, अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। इन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। लोकरंग कार्यक्रम सुनिएगा शाम 7:20 से। ग्राम सभा का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, वक्त होगा शाम 7:30 का। रात्रि 8 का समय होगा चित्रपट संगीत का, संगीत सरिता, ये कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 8:15 से। सागर संवाद, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात्रि 8:30 से। समाचार संध्या का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 8:45 से। मन चाहे गीतों का कार्यक्रम पेश किया जाएगा रात 9 से। रात 9:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिली किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हिंदी में समाचार होंगे रात्रि 11 से, अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 11:05 से। ये दोनों ही समाचार हम रिली करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की इस सभा का समापन होगा। ये तो थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम, बाकी के कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।
1: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
0: अंतराल के बाद कार्यक्रम विवरण के तहत आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह 7:05 पर कृषि संकेत कार्यक्रम में विषय होगा खरीफ में बीजों का अंकुरण परीक्षण, और विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर ए.के. त्रिपाठी। लोक संगीत के कार्यक्रम में कुछ बुंदेली लोकगीत आप सुन सकते हैं सुबह 8:15 से। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 8:30 से। सुबह 10 सुनिएगा जिले की चिट्ठी, इसे हम रेडी करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। चिट्ठी से लोकगीत, ये फरमाइशी कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 10:05 से। ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा सुबह 10:30 से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम दोपहर 2 से आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। शाम 5 होगा चित्रपट संगीत का कार्यक्रम, शाम 5:10 पर सुनिएगा प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये बात केंद्रित होगी वृक्षारोपण पर कार्य करने वाले हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल देविंदर सुरा पर केंद्रित। सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:30 से। लोकरंग कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 6:45 से। कार्यक्रमों की जानकारी कार्यक्रम विवरण के तहत प्रेषित की जाएगी शाम 7:05 से। किसान भाइयों का कार्यक्रम किसानवाणी होगा शाम 7:30 से। इस कार्यक्रम में कल का खास क्रम होगा आकाशवाणी गांव में। चित्रपट संगीत रात्रि 8 से, संगीत सरिता कार्यक्रम रात्रि 8:20 से, और मन चाहे गीत आप सुन सकते हैं रात 9 से। ये तो थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम और हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 7:10 होने को हैं, थोड़ी ही देर में होंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
2: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही आरटीआई लाइफ, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर, दोनों राज्यों को देंगे 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषक कल्याण वर्ष की समीक्षा की, सहकारी समितियों के डिजिटलाइजेशन के दिए निर्देश। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ फसलों और मानसून की समीक्षा की, 262 संवेदनशील जिलों की हुई पहचान। और भोपाल में अग्निवीर सेना भर्ती रैली की तैयारियों को लेकर समन्वय बैठक आयोजित, 25 जुलाई से 6 अगस्त तक होगी रैली। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां वे दोनों राज्यों को करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। वे जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत 100 नए एरोड्रोम विकसित किए जाएंगे, जिसके बाद बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिस पर करीब 80,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे और राजस्थान सरकार में भर्ती हुए करीब 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। शाम को वे गुजरात के साणंद पहुंचेंगे, जहां 7,500 करोड़ रुपए की लागत से बनी CGCME OST सेमीकंडक्टर सुविधा का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्रालय में कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत अब तक हुए कार्यक्रमों की समीक्षा की। डॉक्टर यादव ने कहा कि किसानों का कल्याण राज्य सरकार का कर्तव्य है और इसी उद्देश्य से वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया गया है। उन्होंने सहकारी समितियों की प्रक्रियाओं का डिजिटलाइजेशन करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल और ई पासबुक सुविधा का शुभारंभ जुलाई माह में ही किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव और संभागीय मुख्यालयों पर फूड फेस्टिवल आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में खरीफ फसलों, मानसून की स्थिति और अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि देश भर में बारिश की कमी की आशंका वाले 262 संवेदनशील जिलों की पहचान की गई है, जिनमें से 210 जिले अब भी बारिश की कमी का सामना कर रहे हैं। बैठक में बताया गया कि 2 जुलाई से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में मानसून आगे बढ़ सकता है। केंद्रीय मंत्री ने प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर कॉन्टिंजेंसी प्लान की समीक्षा करने और किसान क्रेडिट कार्ड तथा फसल बीमा कवरेज बढ़ाने के निर्देश दिए। शिवपुरी में 5 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करीब 2,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे। तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश के ऊर्जा एवं जिला प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कल कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद प्रभारी मंत्री ने शहर भ्रमण कर नागरिकों को पीले चावल भेंट करते हुए इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के श्री रामानुज संस्कृत परिसर रीवा के सशक्तिकरण और संस्थागत विकास संबंधी प्रस्तावों की समीक्षा की। बैठक में परिसर के लिए कुल 243 पदों के सृजन का प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसमें 117 शैक्षणिक, 4 प्रशासनिक और 122 गैर शैक्षणिक पद शामिल हैं। इन पदों की पूर्ति 3 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से किए जाने की योजना है। भोपाल में जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में आज अग्निवीर सेना भर्ती रैली की तैयारियों को लेकर समन्वय बैठक आयोजित की गई। ये भर्ती रैली 25 जुलाई से 6 अगस्त तक नाथू बरखेड़ा स्थित अंतर्राष्ट्रीय खेल कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी। अपर कलेक्टर महेंद्र सिंह कवचे ने सभी विभागों को समन्वय के साथ समयबद्ध व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश

0: सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश के टूरिज्म बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों के लिए पर्यटन क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसके लिए विद्यालय 25 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। जिला स्तरीय क्विज 7 अगस्त को प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित होगा, जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। प्रत्येक जिले की विजेता टीमों को प्रदेश के पर्यटन बोर्ड द्वारा निःशुल्क पर्यटन भ्रमण का उपहार दिया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद यानी बार्क को समाचार और गैर समाचार दोनों श्रेणियों में टेलीविजन रेटिंग जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा कि यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक परिषद को टेलीविजन रेटिंग नीति 2026 के तहत लाइसेंस नवीनीकरण नहीं मिल जाता। केंद्र सरकार ने सुरक्षा चिंताओं के चलते बैट BMS इपोक ION और लॉसिगी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से ही बंद करने के लिए किया जा रहा था। यह फैसला संभावित गलत इस्तेमाल और सुरक्षा जोखिम को देखते हुए लिया गया है। केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि आधार एप्लीकेशन पर ईमेल आईडी निःशुल्क अपडेट की सुविधा 1 जुलाई से शुरू होने के बाद पहले दो दिनों में 2.5 लाख से अधिक ईमेल अपडेट हुए हैं। UIDAI के अनुसार यह सेवा 6 महीने की अवधि के लिए निःशुल्क उपलब्ध है और इससे आधार केंद्र जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। अब तक 40 लाख से अधिक लोगों ने नए आधार ऐप से मोबाइल नंबर अपडेट किए हैं, वहीं लगभग 10 लाख लोगों ने अपना पता भी अपडेट किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण के लिए 24 घंटे चलने वाली महिला हेल्पलाइन 1-4-4-9-0 संचालित कर रहा है। ये टोल फ्री हेल्पलाइन हिंसा और उत्पीड़न का सामना कर रही महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने और मनोवैज्ञानिक परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराती है। इस पर महिलाएं शिकायत के साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकती हैं। हेल्पलाइन एक बार पुनः सुन लें, 1-4-4-9-0। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। ये यात्रा 57 दिनों तक चलकर 28 अगस्त तक जारी रहेगी। कड़ी सुरक्षा के बीच पहले जत्थे में कुल 4,822 श्रद्धालु जम्मू से रवाना हुए, जिसमें 2,510 श्रद्धालु नुनवान और 2,312 श्रद्धालु बालटाल आधार शिविर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री अमरनाथ यात्रा की शुरुआत पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के धुंधुआ सिहा क्षेत्र में बाघिन P652 ने 2 शावकों को जन्म दिया है। टाइगर रिजर्व के उपसंचालक वीरेंद्र पटेल ने बताया कि दोनों शावकों की उम्र लगभग 10 दिन है और माँ व शावक पूरी तरह स्वस्थ हैं। वन विभाग की विशेष टीम हाथियों और आधुनिक तकनीक की मदद से 24 घंटे उनकी निगरानी कर रही है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। 9 दिन की देरी से आया मानसून कल उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने खंडवा और हरदा के लिए इस मानसून सीजन का पहला रेड अलर्ट जारी किया है, जहां अगले 24 घंटों में 4 से 8 इंच तक बारिश की संभावना है। धार, बड़वानी, खरगोन, देवास, बुरहानपुर और बैतूल में भी अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं मौसम विभाग ने 6 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है। अब रुक करते हैं क्रिकेट का। इंग्लैंड ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। टीम ने गुरुवार की रात को सेमीफाइनल मैच में साउथ अफ्रीका को 40 रन से हराया। अब रविवार को लॉर्ड्स के मैदान पर खिताब के लिए इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। वहीं दूसरी तरफ BCCI ने भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया है। ये 2 मैचों की श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में और दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना के कोचिंग संस्थानों में न्यूनतम 2 CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जो कि सीधे पुलिस कंट्रोल रूम से जुड़ेंगे। सिंगरौली के चितरंगी में विकसित भारत जीराम जी योजना का शुभारंभ राज्य मंत्री राधा सिंह ने कार्यशाला की शुरुआत से किया। खंडवा जिला अस्पताल में OPD पंजीयन को आसान बनाने के लिए अब ई रजिस्ट्रेशन सुविधा शुरू की गई है। आगरमालवा नगर पालिका ने कंपनी गार्डन में नीम, पीपल और बरगद के 111 पौधों का रोपण किया। पन्ना में राज्य खेल अकादमियों के लिए 12 से 18 वर्ष तक के खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया आज से शुरू हुई है। मंदसौर में स्टॉप डायरिया अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों के क्लोरिनेशन और पानी की जाँच का प्रशिक्षण शुरू हुआ है। देवास ITI परिसर में 7 जुलाई को युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। छिंदवाड़ा कलेक्टर ने आकाशीय बिजली से बचाव के लिए नागरिकों से दामिनी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने की अपील की है। सीहोर के स्कूली बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए आयोजित 3 दिवसीय उमंग हेल्थ एंड वेलनेस प्रशिक्षण का आज समापन हुआ। सागर खेल परिसर के मैदान पर मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी अकादमी का चयन ट्रायल आयोजित किया गया। निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश के 3रे चरण की च्वाइस फिलिंग की शुरुआत हो गई है, जिसमें पहले से पंजीकृत अभिभावक

जुलाई तक च्वाइस अपडेट कर सकेंगे। नीमच के जावत सिविल अस्पताल सहित सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर सर्पदंश का इलाज और एंटी स्नेक वेनम 24 घंटे मुफ्त उपलब्ध है। और कटनी में रुक रुक कर हुई बारिश के बाद नगर निगम के अमले ने नालियों की सफाई कर जल भराव की स्थिति को संभाला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर, दोनों राज्यों को देंगे 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषक कल्याण वर्ष की समीक्षा की। सहकारी समितियों के डिजिटलाइजेशन के दिए निर्देश। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ फसलों और मानसून की समीक्षा की। 262 संवेदनशील जिलों की हुई पहचान। और भोपाल में अग्निवीर सेना भर्ती रैली की तैयारियों को लेकर समन्वय बैठक आयोजित। 25 जुलाई से 6 अगस्त तक होगी रैली। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

अभी समाचारों का अनुप्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:20 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोकरंग। इस कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं ये हास्य गीत। कलाकार हैं इंद्रपाल विश्वकर्मा।

अभी आप सुन रहे थे, ये हास्य गीत कलाकार थे इंद्रपाल विश्वकर्मा। और आइए कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं ये लोक भजन। कलाकार हैं सुरेश चंद्र तिवारी।

लोकरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:30 होने को हैं, थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: बुंदेली समाचार।
1: तो भैया बहनों, बुंदेली समाचारन के बाद आप सभी को पुनः स्वागत है। और जैसे कि आज शुक्रवार को हमारा कार्यक्रम आपकी पाती आपके फिल्मी गीत आपके बीच लेके हम उपस्थित हैं, और आज कार्यक्रम को पहलो पत्र हमें अपने फरमाइशी फिल्मी गीत के लाने भेजो है। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने गीत की फरमाइश करी है, जो है फिल्म केदारनाथ से, और ये गाँव है अरिजीत सिंह और निकिता गांधी ने सुनत है जो गीत।

बहनों, एक मधुर से गीत के संगे कार्यक्रम की शुरुआत भई है। और अब आप लोगों से जैसे हमने चर्चा करी है थी कि सीड नेट इंडिया, तो भैया बहनों आपको बता दें कि जब भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जावे वही अत्यंत महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस को हिस्सा है, जिसे कृषि क्षेत्रों में बीज की उपलब्धता, किस्में, डीलर और DBT लाभार्थियों के प्रबंधन को सुगम बनाओ जात है। सीड नेट इंडिया को एक सरकारी पोर्टल है जी की कछु विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो भैया बहनों आप लोगों को बता दें कि इसके माध्यम से बीजों की मांग, उत्पादन और उपलब्धता पर नजर रखी जात है। संगे संगे बीज से जुड़ी सरकारी योजनाओं और सब्सिडी को लाभ सीधे कृषकों के खाते में पहुंचे इसके लाने डेटाबेस तैयार करो जात है। ई पोर्टल पे पंजीकृत बीज डीलरों और बीज की प्रामाणिकता को संपूर्ण विवरण उपलब्ध रहते कि आप जो बीज खरीद रहे हैं वे कितने प्रामाणिक हैं और कितने अच्छे हैं। और भी अधिक जानकारी हेतु आप ई पोर्टल पे जाके जानकारी ले सकते हैं। और इन योजनाओं के बारे में जब आपको बताओ जाते हैं तो हम तो जो ही कहेंगे कि इन योजनाओं के लाने आप अधिक से अधिक जानकारी लें और इनको लाभ उठाएं, क्योंकि सरकार द्वारा चलाई गई ऐसी योजनाएं हमारे कृषक भैया बहन के लाने अत्यंत लाभकारी होते हैं। तो देखो चर्चाएं अपन करते रहे हैं और अब अगले गीत की हमें फरमाइश करी है कार्यक्रम में बकरी है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश, साक्षी मनन तानिया और संगे संगे ये गीत की फरमाइश करी है क्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम प्रोनिका प्रोनामिका उत्कर्ष नेताम ने ये गीत की फरमाइश करी है जो है फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के से, और ये गाँव है बाबुल सुप्रियो और अनुराधा पौडवाल ने।

तो भैया बहनों, एक अच्छे से गीत के संगे अब अगलो पत्र हमें भेजो है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर ने संगे संगे ई गीत की फरमाइश करी है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा ने ये गीत की फरमाइश करी है जो है फिल्म नील कमल से, और ये गाँव है मोहम्मद रफ़ी ने।

बहनों अब आगे बढ़ें और कार्यक्रम में अगलो पत्र हमें भेजो है बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा का फिर श्रीमती सविता माखीजा बेबी स्वाति माही पूजा छुटकी शरद तथा पूरे माखीजा कुटुंब ने गीत की फरमाइश करी और संगे संगे नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा मीना राना

बहनों, भैया बहनों, अब अगले गीत के लाने आगे बढ़े। आप लोगों को बता दें कि बरसात को मौसम है, तो ऐसे में अपने जो पशु हैं उनको भी खास ध्यान रखें। पशुओं के बाड़े को सूखो रखें, उनमें फट्टा बिछा दें, दीवारों से ऐसी पन्नी डाल दें ताकि उनके बाड़े में पानी ना आए। उनके जो बाड़े हैं जहाँ पशु खड़े होते हैं, उतने दवाइयों को छिड़काव करें जिसे मच्छर मक्खी ना हो, और खास करके पशु पानी से बचे रहें ऐसी व्यवस्था करें। तो देखो, अब कार्यक्रम में आगे बढ़े और अगलो पत्र हमें भेजो है कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली ने और संगे संगे ये गीत की फरमाइश करी है। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि श्रीमती शीतल।

तो भैया बहनों, ये गीत के संगे अब चलवे की बिरिया हो गई है और आशा है कि आज को कार्यक्रम आप लोगों को ज़रूर पसंद आ हुई है। तो ये चलती बिरिया आप सबसे विदा लें, आप सबको अमृता बहन की राम राम।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बजे हैं, पेश है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं देव कोहली के लिखे इस गीत के साथ। संगीत है जतिन ललित का, आवाज़ कुमार सानू की, फिल्म का नाम राजू बन गया जेंटलमैन।

कुमार सानू की आवाज़ अभी आपने सुनी। गीतकार थे देव कोहली, संगीत था जतिन ललित का, फिल्म का नाम था राजू बन गया जेंटलमैन। इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं साधना सरगम और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ें। बोल हैं समीर के, संगीत है आनंद मिलिंद का, फिल्म का नाम प्रेम कैदी।

साधना सरगम और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ें भी आपने सुनी। बोलते समीर का संगीत था आनंद मिलिंद का, फिल्म का नाम था प्रेम कैदी। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

बढ़ेगा आपका व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:15 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में स्वागत सभी सुनने वालों का। कार्यक्रम में पहले आपको सुनवाते हैं बशीर बद्र का लिखा कलाम। संगीत है जगजीत सिंह का, आवाजें जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की। एल्बम है A Sound Affair।

चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की आवाज़ें अभी आपने सुनी। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संगीत सरिता और इस कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं चंदन दास की आवाज़। एल्बम है एतबारे वफा।

संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सागर संवाद।

0: सागर संवाद। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी की इस विशेष प्रस्तुति सागर संवाद में आप सभी का आत्मीय स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जय शेखर और आज हम बात करने जा रहे हैं मौसम के सबसे खूबसूरत और रुमानी रंग की। जी हां, रिमझिम फुहारें शुरू हो चुकी हैं। बारिश सिर्फ आसमान से गिरता पानी नहीं बल्कि यादों का एक पूरा समंदर है। किसी के लिए ये गर्मा गर्म चाय और पकौड़ों का बहाना है तो किसी के लिए बचपन की कागज की कश्ती। तो आइए सुनते हैं श्रोताओं से की गई ये प्यारी सी बातचीत।
1: नमस्कार, आशीष से बात कर रहा हूँ। बीत गए जो बनकर के रफ्तार दिन, याद आते हैं वही दो चार दिन। वो किताबें खत भरी, सूखे गुलाब, इश्क चाहत आशिकी और प्यार बिन। दिल में यारों की बड़ी सी टोलियां, मुंह लगे यारों से वो दिलदार बिन। वो समोसे चाय और वो फुर्सतें, काश मिल जाएं वो फिर एक बार बिन। नब्ज थी थमती है जिनको भूल कर, वो मेरी पहचान वो किरदार बिन। रोज ये उम्मीद दिल में जागती, लौट आए काश वो एक बार दिन, लौट आए काश वो एक बार दिन। सागर की बरसात जब जब याद आती है तो मन वापस उन्हीं दिनों में, सागर की उन्हीं गलियों में, विश्वविद्यालय के उन वादियों में पहुंच जाता है जहां यारों के साथ एक स्कूटर पर तीन चार लोग हम लोग बैठा करते थे। स्कूटर का पेट्रोल हमेशा रिजर्व में होता था, चाय चंदा करके हम लोग पीते थे। कभी किसी दोस्त के घर पहुंच गए, पकौड़े मिल गए, कभी किसी दोस्त के पेरेंट्स से कुछ पैसे मिल गए, पॉकेट मनी पे हम लोग का गुजारा होता था। विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हुआ करते थे, रंगमंच करते थे तो थिएटर की प्रैक्टिस नाटक की किया करते थे। कविताएं लिखने का शौक था, शायरी का शौक था, अपने आप को बहुत बड़ा साहित्यकार हम लोग समझते थे, रंगकर्मी बहुत बड़ा अपने आप को मानते थे और बड़े दार्शनिक विषयों पर, रंगमंच पर, कविताओं पर, राजनीति पर हम लोगों की चर्चाएं हुआ करती थी। और ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी का सबसे स्वर्णिम युग वही था जो हम जी चुके हैं। सागर की वो गलियां, वो बरसातें, वो विश्वविद्यालय की सुंदर वादियां, वहां से बरसात के नजारे, बस यूं लगता है कि वापस ये दौर एक बार लौट आए, वापस जिंदगी में जाए।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा राजपूत गोपालगंज सागर से, और बारिश के बारे में कुछ यादें मेरी जो बचपन से है वो बताना चाहूंगी। कि बचपन में मुझे बारिश बहुत खराब लगती थी, मैं मुझे पसंद नहीं थी क्योंकि पूरे में कीचड़ हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब समझ में आया कि बारिश नहीं होगी तो फिर उससे फसलें नहीं होंगी, वो सूखा पड़ेगा तो वो बहुत प्रॉब्लम देगा, फिर धीरे धीरे बारिश बहुत अच्छी लगने लगी, बहुत अच्छा मौसम हो जाता है बारिश में। और फिर हम सब तकिया मिलके बारिश के दिनों में खूब हुड़दंग करते थे, सब छाते लेके कूदते थे, गंदा पानी एक दूसरे के ऊपर छालते थे, वो सब यादें आती हैं जब भी बच्चों को ऐसा करते हुए देखती हूँ तो। और उसके बाद जब शादी हुई तो हस्बैंड के साथ बाइक पे भीगना मुझे बहुत पसंद था और हम लोग अक्सर ऐसे ही मतलब लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते थे बारिश में, तो वो दिन भी हमेशा याद रहते हैं। और जैसे अब बच्चे जो घर के सामने, जब छोटे छोटे बच्चे थे घर के सामने, वो कागज की नाव बना के पानी में डालते थे, मतलब कई चीजें जैसे ही बारिश होती है तो याद आ जाती है। खाने में भी पूरे समय पकौड़े, चाय और बहुत अच्छी अच्छी डिश बनाते हैं क्योंकि बारिश में खाने का मजा ही अलग होता है। हाँ, लेकिन कुछ सावधानियां बारिश में रखना चाहिए, जहाँ पर भी पानी का भराव हो और अपनी गाड़ी वगैरह सावधानी से निकालें, जो मानते नहीं है फोर व्हीलर वगैरह निकालते हैं उससे बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं। मतलब ये चीजें बहुत ध्यान रखने वाली हैं कि आपको अपनी जान की परवाह करना चाहिए, अपने साथ साथ कई लोग जुड़े होते हैं, पूरी फैमिली रहती है, इसलिए हर चीज का थोड़ा सा ध्यान रख के और बारिश का मजा लीजिए, जिंदगी का मजा लीजिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, आराम से जिए। मुझे जो वो मंजिल फिल्म का गाना है ना, रिमझिम गिरे सावन, बहुत पसंद।

0: नमस्कार, मैं राहुल कांत दुबे। आज इस सावन भरे मौसम में, आज बारिश के मौसम में बचपन की वो यादें याद आती हैं कि जब हम छोटे हुआ करते थे और जब बारिश की पहली बूंद इस जमीन पर गिरती थी और उससे वो सौंधी सौंधी खुशबू आती थी तो मन प्रसन्न हो जाता था। और वही चीज़ आज इस मौसम में भी याद आती है कि हम अपने बचपन को याद करते हैं कि जब बारिश होती थी तो हम किस तरह से उसको आनंदित होके उल्लास के साथ उसका मजा लेते थे जब हम छोटे थे। तो आज के समय से बहुत अलग समय था, ना कोई चिंता थी, ना कोई टेंशन थी, ना किसी चीज़ की फिक्र होती थी। सिर्फ एक ही चीज़ थी कि हम उस बारिश का आनंद लें। और उस बारिश के आनंद में हमारे घर में दादी, पापा, दादाजी लोग सब लोग उस चीज़ को हम बच्चों के साथ बड़े उससे एंजॉय करवाते थे। छोटी छोटी नाव बना के हम लोगों को देते थे, घर में जितने भी बच्चे होते थे सभी को नाव बना के देते थे कि जाओ और इस नाव को ले जाओ और पानी में चलाओ। और उस नाव को हम लोग भी इतने दूर तक ले जाने की कोशिश करते थे कि बगैर किसी टेंशन के उस चीज़ को एंजॉय करते जाएं। और हम लोग सभी लोग, आस पड़ोस के सभी बच्चे उसको देखते थे कि किसकी नाव सबसे ज़्यादा आगे जा रही है। और आज के इस बारिश भरे मौसम में भी वही चीज़ याद आती है कि काश हमें वो बचपन फिर से मिल जाए। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में वो पुराने पल याद आते हैं और हम यही सोचते हैं काश हमें वो फिर से बचपन मिल जाए और हम उसी बचपन में, उस बचपन की बारिश में जाके अपना बहुत सारा मस्ती करें, बारिश की बूंदों में भीगें और उसको एंजॉय करें। और बारिश के मौसम में अपने उस बचपन की बहुत सारी चीज़ों को याद करते हैं और सोचते हैं कि काश हमारा बचपन फिर से याद आए। और बारिश के मौसम में बनने वाले घर में पकवान वो भी बहुत याद आते हैं। आज भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग उस तरीके से एंजॉय करने के साथ साथ उस चीज़ को भी याद करें और उस चीज़ का आनंद लें। घर में आज भी हम लोग पकौड़े बनवाते हैं, भजिया बनवाते हैं, चीला बनवाते हैं कि और उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। आज आप लोग भी इस बारिश के मौसम में अपने आप को हर किसी चीज़ से, टेंशन से दूर करिए और इस बारिश का आनंद लेते हुए घर में, और यदि आप घर से बाहर हैं तो उस चीज़ का, बारिश का आप आनंद लीजिए। और एक बहुत अच्छे मौसम का, बहुत अच्छे मौसम का ये बहुत अच्छा समय है आनंद लेने का कि बारिश की बहुत अच्छी बूंदें गिर रही हैं जमीन पर। और उसके साथ साथ आकाशवाणी के साथ भी इस चीज़ का मज़ा लीजिए और बहुत अच्छे अच्छे बारिश के गाने सुनिए। और मुझे जब बारिश का मौसम, जब बादल छाते हैं तो मुझे एक गाना बहुत याद आता है, मेरी दादी को बहुत बहुत पसंद भी था। वो कहती मौसम है आसी काना, ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना।
1: मैं कपिल आज यहाँ कुछ बातें करना चाहता हूँ आपसे इस मौसम में जो कि बारिश का मौसम है। बारिश का मौसम देख के हमें जब ये एक चीज़ याद आती है, जगजीत सिंह की वो गज़ल कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो हमसे हमारी जवानी, मगर हमको लौटा दो बचपन का सावन, वो बारिश और वो भीगा भीगा पानी। जब बारिश होती है और वो जो खुशबू आती है सौंधी सौंधी सी, वो हमें उन यादों में ले जाती है जब हम छोटे हुआ करते थे। दादी थी हमारी, वो हमें वो एक कागज़ की नाव बनाकर देती थी और जब घर के सामने से पानी बहता था तो हमें सिखाती थी कि नाव कैसे जाती है, जाओ नाव के साथ खेलो, और हम उस नाव के साथ दूर दूर तक कहीं कहीं चले जाते थे। और वो चीज़ हमेशा याद आती है। और जब दादी थी तो उस चीज़ को एंजॉय करते थे, आज वो नहीं है तो उनकी यादों के साथ उन बातों को याद करते हैं कि उन्होंने जो हमें सीख दी उसके कारण हम आज एक छोटे से गांव में पैदा हुए और आज हम पूरे इंडिया में उनकी उनकी आशीर्वाद से ही हम पूरे इंडिया में आज कहीं भी जाते हैं, काम करते हैं, नॉट ओनली इंडिया, इवन आउट ऑफ कंट्रीज, आई विजिटेड ऑलमोस्ट 7-8 कंट्रीज, और उन सब जगहों पे हमें वो सारी चीज़ें और जो उन्होंने सिखाया वो हमेशा हमारे साथ हमारे जहन में रहता है. बट यस, दैट इज़ वॉट इज़ अ लाइफ. एंड यदि हम आज बात करें कि बारिश के बारे में, जो आज मौसम है, आप देखिए जब भी बारिश होती है और वो सोंधी सोंधी खुशबू जो आती है तो आपको क्या याद दिलाती है कि चलिए मम्मी पकौड़े बनाइए, चलिए मम्मी कुछ भजिए बना दीजिए. और शायद कुछ लोग जानते होंगे एक और बहुत ही शानदार स्वादिष्ट एक भोजन होता था जिसका नाम था चीला. और चीले के जो स्वाद था और जिसमें वो नींबू के अचार के साथ जो खाया है लोगों ने, और आप उस चीज़ को आज भी यदि देखिए, मैं जब बात कर रहा हूँ तो मेरे मुँह में पानी आ गया है कि वाह क्या स्वाद हुआ करता था. आज भी बारिश के मौसम में आप यदि सभी जहाँ भी बैठे हैं, यदि आप बारिश के मौसम का मजे ले रहे हैं तो जाइए पकौड़े बनवाइए. यदि आप खुद बनाना जानते हैं तो आप खुद बनाइए, चीले बनाइए और खाइए. और वो पुरानी यादों को याद कीजिए, उस बचपन को याद कीजिए जब आपके पास कोई टेंशन नहीं था, कोई गम नहीं था, केवल एक ही एक चीज़ थी कि जाइए और लाइफ को एंजॉय कीजिए. आपके इसके लिए एक ही टेंशन था, क्या कल स्कूल जाना है, होमवर्क किया या नहीं, और वो होमवर्क की टेंशन थी जो सबसे बड़ी टेंशन थी. आज तो आपके पास वो नहीं है, बाकी बहुत सारी टेंशन होंगी आपकी लाइफ में, बट थोड़ी देर के लिए उन सबको भूल जाइए और जाइए और मौसम का मजा लीजिए और खाने का मजा लीजिए.
2: यादों के इस खूबसूरत सफर में आज आपने और हमने मिलकर बारिश की बूंदों को शब्दों में पिरोया. सागर संवाद के आज के इस अंक में बस इतना ही. चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि इस मानसूनी मौसम में अपना ख्याल रखिए, प्रकृति की इस अनमोल देन का आनंद लीजिए. अगले अंक में एक नए विषय के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात. तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार.
3: सागर संवाद, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे. थोड़ी देर में होंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा. सरकार ने कहा सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित. पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे. रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी. सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी. फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत. और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा. और अब समाचार विस्तार से. भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी.
5: India's position on the Indus Waters Treaty.
6: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है. पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था. पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा.
4: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं.
5: India's development assistance.
6: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है. इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है. तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं. तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे.
4: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है. भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
7: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
4: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
9: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
4: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट BMS इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली

0: कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सभी समाचारों का अनुप्रसारण किया गया आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9 बज चुके हैं। पेश है मनचाहे गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं परवरिश इस फिल्म के गीत के साथ। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह ने, लिखा मजरूह ने और धुन तैयार की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस गीत के लिए व्हाट्सएप फरमाइश में मिली कोल सिटी बरका काना से अफजल, ताज, शाहीन, सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजल मलिक की, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से ये फरमाइश है राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा की, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से ये फरमाइश है मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार की, मोहल्ला हलवाई यान शेरकोट जिला बिजनौर से ये फरमाइश है मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर की फरमाइश है। आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं, सुनते हैं परवरिश फिल्म का गीत, आवाजें मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह की।

मेरा गांव मेरा देश, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फरमाइश आप सभी की। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव की ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली। एक और फरमाइश है वारणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान इंदूरकर, तेजस्विनी चौहान, माई इंदूरकर, बेबी शौर्या, श्रेयस, अंकिता और अनिकेत चौहान की। किबले गांव पुणे से ये फरमाइश हमें मिली अंकिता काम्बले सैदापुरकर, विजय काम्बले सैदापुरकर, श्रेयस काम्बले, बेबी शौर्या की। बडिंग खेड़ा पंजाब से ये फरमाइश है मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा की। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में मेरा गांव मेरा देश, इस फिल्म का गीत।

0: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम में समय है अंतराल का।
1: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
2: सच?
1: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
2: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए
1: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
2: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
1: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम का नाम है मन चाहे गीत और इस कार्यक्रम की अगली पेशकश जुदाई फिल्म से आवाज़ें किशोर कुमार और आशा भोसले की। बोल आनंद बख्शी के संगीत लक्ष्मीकांत पैरेलाल का, फरमाइश आप सभी की। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा की ये व्हाट्सएप फरमाइश हमें मिली। सतना मध्य प्रदेश से ये फरमाइश है उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक की। दीवाना रेडियो श्रोता क्लब बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से ये फरमाइश है भाई प्रेम सिंह बड़वाल, सुखवीर काजल बड़वाल, लखवीर बड़वाल, रानू कृष्णा, श्रीमती छिंदो, प्रवीण, शीतल, नवीन, रंगीला, निशान, अनमोल, प्यारे बेटे चटकू मटकू। मेन बाजार कुंडल बाड़ी महाराष्ट्र से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली। गंगाधर ये मेकर, प्रमोद ये मेकर, प्रदीप ये मेकर और उनके तमाम साथियों की। बठिंडा रोड मणि डबवाली से ये फरमाइश है राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग और तान्या नारंग की।

और आइए कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं आंसू बन गए फूल, इस फिल्म का गीत। इसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने, गोविंद मुनीस की शब्द रचना है, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फरमाइश आप सभी की, छत्रपति संभाजी नगर से ये पत्र में मिला, राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश का। और इसी गीत के लिए व्हाट्सएप फरमाइश में मिली दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्लू की। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से ये व्हाट्सएप फरमाइश में प्राप्त हुई विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, ईशु बाबा, सपना, शिवी, सलूनी और पेंटर बाबू की। और एक और व्हाट्सएप फरमाइश में मिली ग्राम पाहरा, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से, और इसे भेजने वाले हैं पोषण बंछोर, चंद्र किरण प्रीति और छाया बंछोर। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम पेशकश, फिल्म का नाम आंसू बन गए फूल।

इस गीत के साथ ही मनचाही गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है, 9:30 होने को हैं। थोड़ी ही देर में विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रेडी किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। तब तक सुनते रहिए ये गीत।

0: जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
1: संगीतकार ओपी नैयर।
0: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ

0: स्पेशल प्रोग्राम आज के फनकार।
1: ये कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने जानी राजकुमार पर।

0: राजकुमार यानी कुलभूषण पंडित। राजकुमार फिल्मों में आने से पहले मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर थे। उस जमाने में ये ओहदा अपनी आन बान के साथ सुसज्जित करने के बाद उसी चाल से वो फिल्म इंडस्ट्री में आए। अपनी अनोखी अदाकारी और ख़ास शैली के डायलॉग डिलीवरी से अपना एक मुकाम बनाया और उसे जिस बुलंदी पर पहुंचाया, उसे छुपाना फिर किसी और की बस की बात नहीं रही। शुरुआत तो कोई धमाकेदार नहीं हुई, मगर रंगीली में उन्हें पहला मेजर ब्रेक मिला। वर्ष था 1952। उनकी नायिका थी रेहाना। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं मर्यादा फिल्म का ये गाना, जो बनी थी 1971 में।
1: कहते हैं हर दयार में आती है फिर बहार, खिलते हैं फूल भी वहां दौरे खिजां के बाद।

राजकुमार एक ऐसे अदाकार थे जिन्होंने हर भूमिका को सजीव कर दिया है, वो फिर मदर इंडिया का मजबूर किसान हो या दिल एक मंदिर का कैंसर ग्रसित मरीज हो। जिस भूमिका को कुछ भी स्कोप नहीं होता, उसमें भी वो अपनी अदाकारी व लाजवाब संवादों की अदायगी से जैसे रंग भर देते।

हीरो जैसा रंग रूप था उनका, पर फिर भी अपनी बेमिसाल अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसे पाने में हर कोई सफल नहीं होता। फूल बने अंगारे इस फिल्म में वो फौजी बने हैं। इस फिल्म के गाने भी काफ़ी पॉपुलर हुए हैं और उन्हें पर्दे पर गाया है राजकुमार ने। गाने का रोमानी अंदाज और राजकुमार की पुरकैफ अदायगी से जैसे चार चांद लग गए हैं।

1959 में उनकी तीन फिल्में आई थीं, उजाला, अर्धांगनी और शरारत। और भी कई फिल्में आती रही थीं, जैसे 1960 में दिल अपना और प्रीत पराई, दिल एक मंदिर और काजल।

0: राजकुमार अपने असली रंग में आए 1965 में बीआर फिल्म्स की प्रस्तुति मल्टी स्टारर फिल्म वक्त में। निर्देशक थे यश चोपड़ा। वास्तव में इसी फिल्म से लोगों को उनकी अनोखी संवाद अदायगी के दर्शन हुए।
1: माल आखिर खरीदार के पास ही जाता है चिनॉय सेठ।
2: माल क्या लाए?
1: आज फिर अपने आप को बेचने आया हूं।
2: ओ, कीमत?
1: चिनॉय सेठ रवि मेरा भाई है।
2: तुम्हारा भाई?
1: सगा भाई।
2: यह रात कब मालूम हुआ? तो
1: मंगनी से एक दिन पहले। उस रात जब मैं गुस्से में रवि की जान लेने की नियत से गया था, और आज वो सब खुशियां लुट गईं। मीना और रवि की मंगनी टूट गई। रवि घर छोड़कर चला गया। मित्तल रवि के बाप का नाम जानना चाहता है, वो नाम सिर्फ मैं बता सकता हूं।
2: फिर बताते क्यों नहीं?
1: इसलिए कि मेरा एक माजी है, और वो माजी सिर्फ एक आदमी जानता है।
2: और वो आदमी मैं।
1: हाँ, सौदा ये है चिनॉय सेठ कि मैं अपनी आत्मा आपके हाथ बेचता हूं। जिंदगी भर आपका गुलाम रहूंगा, जो कहेंगे आप वही करूंगा। और आप अपनी जबान बंद रखेंगे ताकि मेरे गुनाहों का साया रवि के आने वाली जिंदगी पर न पड़े।

बीआर फिल्म्स के साथ उनका रिश्ता इस प्रोडक्शंस की अगली फिल्म हमराज में भी रहा, जो आई थी 1967 में। इस फिल्म का उन पर फिल्माया गया ये गाना आज भी उतना ही पॉपुलर है।

0: चले।
1: एक साल बाद यानी 1968 में सुप्रसिद्ध उपन्यासकार गुलशन नंदा के उपन्यास पर आधारित फिल्म नीलकमल में एक पेचीदा रोल उन्हें मिला। उस रोल को भी उन्होंने अपनी अद्भुत अभिनय क्षमता से ऐसा साकार किया कि बयान करना मुश्किल।

1970 में आई फिल्म हीर रांझा अपने तरह की एक अद्भुत फिल्म है, जिसका हर किरदार डायलॉग पोएट्री के रूप में बोलता है। फिर भी कहीं पर भी नाटकीयता नजर नहीं आती। ये चेतन आनंद के निर्देशन का तो कमाल था ही, पर मेन रोल कर रहे फिल्म के रांझा यानी राजकुमार की एक्टिंग का भी लोहा हर एक को मानना ही पड़ा है।

1972 में फतेह पूर शीखरी के बैकग्राउंड पर एक ऐतिहासिक लगने वाली फिल्म बनी थी लाल पत्थर। वो भी एक जीता जागता नमूना है राजकुमार की अदाकारी का।

इसी साल यानी 1972 में रिलीज हुई थी कमाल अमरोही की यादगार फिल्म पाकीजा। हर दृष्टि से संपन्न ये फिल्म भी एक दस्तावेज है। कमाल अमरोही के कमाल के डायलॉग राजकुमार ने बाकमाल तरीके से कहे हैं कि भुलाए नहीं बनते। आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे।

0: भारतीय हवाबाजों पर चेतन आनंद ने एक फिल्म बनाई थी हिंदुस्तान की कसम। इसमें राजकुमार अपने जख्मी साथी जवान को देखकर यह ऐलान फरमाते हैं, इस जवान की कसम जवाब देने आऊंगा हिंदुस्तान की कसम।
1: हर तरफ अब

0: इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहे।
0: तो सुनिए हर रोज रात 9:30 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। जब कभी अनमनी सी होकर शाम दिन के आंचल को झटक देती है, खुद को समेट लेती है अपने खेमे में, तो क्षितिज गुनगुना कर उसे मनाता है। कोई दिलकश सा नगमा चुनकर उसके उदास मन को गुदगुदाता है।

दिल का खोना कभी आसान नहीं होता। उसकी धड़कनें बता देती हैं वो छिपा है कहाँ। हर लम्हा समंदर की लहरों की तरह उठती गिरती है, जैसे आवाज लगाती हैं, कभी देखो तो यहाँ। इन्हीं लहरों की रवानी में गूंज उठता है दिल को चुराता हुआ कोई मीठा नगमा।

ये कैसे बताए कि चंद अल्फाजों से एक गुलशन किस तरह खिल उठता है, उम्मीदों का दरख्त कैसे झूम उठता है, किस तरह उस पर फूलों की तरह दुनिया के तमाम हसी रंग सज जाते हैं, और कैसे उसकी डालों पर बैठे ख्वाबों के पंछी सरगोशियां करते हैं, गुनगुनाते हैं।

रात जब चांद अपनी ही धुन में कुछ बुझा बुझा सा हो, धुंधलाया आसमान शांत झील सा लगता हो, सितारे तैरने लगते हैं यूं जैसे बत्तखों के झुंड, और कभी कश्तियों का रूप धर लेते हैं। इन्हीं कश्तियों पर जब बैठने को मचलता है दिल, तो चांद की बेदिली खुद ब खुद मिट जाती है। भीनी भीनी चांदनी के संग वो छेड़ देता है कोई अफसाना दिलकश सा।

हर रोज कुछ ऐसा ही होता है। दिन कुछ दिल फरेब नगमे कलम बंद करता है और फिर बड़े जतन से उन्हें वक्त के आंचल में संजो देता है। देर रात की छाया में हर रोज ये सुरीले गीत जाग जाते हैं। दिन की पेशानी पर रखते हैं मीठा सा बोसा और पलकों पर सुकून सजा जाते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों

0: की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आईआईएन और लॉसिगी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जाँच जारी है और सरकार इस पर लगातार नज़र बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।